सुप्रभात, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तिथि 17, तदनुसार 8 अगस्त वर्ष 2026। प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ होता है। हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:05 हुए हैं, समय हो गया है भक्ति रचनाओं के कार्यक्रम वंदनवार का। इस कार्यक्रम के लिए आइए चलते हैं विविध भारती मुंबई।
1: विविध भारती

पहले सुनिए चिंतन। आठ अगस्त यानी आज ही के दिन 1942 को बॉम्बे के अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। गांधी जी का विचार था कि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। उन्होंने कहा, करो या मरो। ये था चिंतन। और आइए अब सुनते हैं कुछ भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, इसका 274वां भाग प्रसारित होगा। संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 6:45 और संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार गायिका शुभा मुदगल भाग 8, प्रस्तुत करता है कांचन प्रकाश संगीत। सुबह 7 आप सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी का प्रसारण समय है सुबह 8:15 और दोपहर 2 आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर। आज ये कार्यक्रम गीतकार गुलशन बावरा पर केंद्रित होगा, प्रस्तुतकर्ता है रमेश गोखले। इसी कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं रात 9:30 पर। सुबह 10 पिटारा में गीतों भरी कहानी होगी दिल की गिरह, लेखिका विनीता अस्थाना, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। दिन में 11 सुनिएगा मैटिनी शो, क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी से यूनुस खान की बातचीत का भाग 2 प्रसारित होगा, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। यादों की महफिल कार्यक्रम होगा दोपहर 12:05 पर और 1 आप सुनते हैं सुरीला सफर। दिन में 2:30 पर सदाबहार नगमे और 3 फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। नाट्य तरंग में दोपहर 3:30 पर सुनिएगा नाटक किसी एक फूल का नाम लो, इसका भाग 1 प्रसारित होगा, मूल गुजराती लेखक मधु रॉय, हिंदी रूपांतर ज्योति व्यास और निर्देशक सुशील बनर्जी। दोपहर बाद 4 पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का 1 भाग प्रसारित होगा, संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। संध्या 5 आप सुनते हैं छाया गीत का पुनः प्रसारण और 5:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। संध्या रंजन 6:35 पर और विशेष जयमाला कार्यक्रम संध्या 7 प्रसारित होगा। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगे अभिनेता निर्देशक निर्माता मनोज कुमार। जिज्ञासा का प्रसारण समय संध्या 7:45 और हवा महल में रात्रि 8 सुनो कहानी के अंतर्गत कहानी होगी पंच परमेश्वर, इसका भाग 1 प्रसारित होगा, कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, वाचक स्वर अमरकांत दुबे का और प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। रात्रि 9 आप सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए और आज रात 10 छाया गीत सुनिएगा, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता है राघवेंद्र सिंह नेगी। रात्रि 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 मैटिनी शो का पुनः प्रसारण। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, आज इसका भाग 274।

वानर सम्राट सुग्रीव की अपने चरणों में भक्ति और समर्पण देख श्रीराम ने उन्हें भरत की भांति अपना लिया और उनसे वे सभी उपाय करने का आग्रह किया जिससे सीता का समाचार प्राप्त किया जा सके। सुग्रीव के आदेश पर वानरों की विशाल सेना एकत्र हो गई। पार्वती को यह कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, वानरों की वो सेना मैंने देखी थी। उनकी संख्या इतनी थी जिसकी गिनती करने वाले को मूर्ख ही कहा जा सकता है। सभी वानर श्रीराम के सम्मुख आकर सिर झुकाते हैं। प्रत्येक वानर से श्रीराम उसकी कुशलक्षेम पूछकर उसे कृतार्थ कर देते हैं। सुग्रीव ने असंख्य वानरों की विशाल सेना को सभी दिशाओं में जाकर सीता जी को ढूंढने का आदेश दिया और इस काम के लिए एक माह का समय दिया। अपने राजा के सामने एक बार फिर सिर नवाकर वानर श्रीराम का स्मरण करते हुए विभिन्न दिशाओं में चल दिए। सबके अंत में जब पवन सुत हनुमान ने सिर नवाया तो श्रीराम ने उन्हें अपने पास बुलाकर अपने कर कमलों से उनका सिर स्पर्श किया तथा अपना अनन्य सेवक जानकर उन्हें अपनी अंगूठी उतार कर दी। बोले, सभी प्रकार से सीता को समझा बुझाकर शीघ्र लौट आना।

0: कथा कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान आज आप सुन रहे थे भाग 274।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में वर्षा चौमासा को लेकर आज हम पुनः उपस्थित हैं। शुभा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टूडियो में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। और आप ही की ओर देखे जा रही हूँ, सुनने के लिए उत्सुक हूँ, आपने आज कौन सा राग चुना है, किस बंदिश के लिए आपका मन बना है?
1: वैसे तो हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि राग मल्हार जो है उसके विभिन्न प्रकार हैं। आज सोच रही हूँ कि ऐसे दो मल्हार के प्रकार सुनाऊं, आम शायद सुनने को ना मिलते हों। वैसे तो इतने प्रकार हैं और अलग अलग गुणीजन वो सुनाते ही हैं, मीराबाई की मल्हार, धूलिया मल्हार इत्यादि,
0: चरजू की मल्हार, रामदासी मल्हार,
1: जी वो बहुत हैं रचनाएं। लेकिन दो मल्हार के प्रकार मैंने गुरुजी से सीखे भी और सुने भी, तो एक का नाम है चंद्र मल्हार। तो इस राग की थोड़ी सी विशेषता बता दूं कि ये बिलावल थाट का उन्होंने बताया है और पूर्वांग में इसमें केदार उसका उसके कुछ स्वर समुदाय मिलते हैं और जो उत्तरांग में बिलावल
0: जी,
1: तो और उसकी फिर एक विशेष स्वर संगति है जो कि इस राग में मिलती है केवल
0: जी।
1: तो वो आपको मैं जरा सा गा के सुनाती हूँ
0: जी।

0: ये तो केदार का
1: जी ये है।
0: और पनी धनी सारा पमा ये बिलावल का अंग हो गया। और इसकी जो अपनी विशेष एक स्वर संगति है वो मा प धनी धा पमा ये चंद्र मल्हार की संगति मानी गई है जी। तो ये इन स्वर संगतियों को मिला के चंद्र मल्हार राग तैयार किया गया
1: जी। ये नाम भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसकी बंदिश जिसमें हम वर्षा ऋतु से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली या जो गीत रचना है उसके बारे में भी तो बताएंगे ना आप
0: जी। बंदिश के बोल इस तरह हैं, बरखा न भावे उन बिनरी, शीतल पवन लागे दहन। तो पवन तो ठंडा चल रही है लेकिन वो हमें जला रही है विरह में, विरह व्यथा में जलती नायिका को और भी उसको आग जैसा जैसी महसूस हो रही है। कारी कारी घटा देख डर लागे, वो उधर तो उत्सव मनता है लेकिन यहाँ काली घटा देख के एक दुख।
1: तो शीतल पवन जहाँ दाहक हो गई तो यहाँ तो काली घटा तो डराएगी ही।
0: कारी कारी घटा देख डर लागे, दामिनी दमक मुरला बोलन। ये इसका
1: मुरला मतलब मोर
0: जी। हाँ जी
1: आप सुनाएंगे
0: जी जरूर।

0: श्रोता मित्रों, अभी हमने ये सुना राग चंद्रमल्हार। चंद्रमल्हार की ये बंदिश बहुत ही खूबसूरत थी। शुभा जी, आप एक और दूसरे मल्हार का भी जिक्र कर रही थी, वो
1: जी ये भी एक अलग अलग रागों को जोड़ के एक ये राग बना है, अरुण मल्हार
0: मिश्रण।
1: जी
0: हाँ
1: जी, जी है, मिश्रण है। और इसमें कुछ स्वर संगतियां तो गौड़ की दिखती हैं, कुछ स्वर संगतियां दिखती हैं बिलावल की, और इसमें तिलंग का भी एक अंश आता है, एक टुकड़ा ऐसा है जो कि तिलंग की याद दिलाता है
0: जी।
1: तो ये अरुण मल्हार है, और इसकी मुख्य रूप से मैं बता देती हूँ कि क्या चलन बताया गया है मुझे।
2: रे गामा गामा सा रे गामा गामा,
1: ये गौड़।
2: मा रे पा,
1: विशेष मल्हार की स्वर संगति।

0: आज हमने दो मल्हार के दो प्रकार सुने, एक तो चंद्र मल्हार और अरुण मल्हार। प्रतीक्षा करते हैं कल की और आज लेते हैं आज्ञा। कल फिर भेंट होगी। नमस्कार।
1: संगीत चरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला।

0: हम विविध भारती से बोल रही हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज ऐतिहासिक आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है, तो इस अवसर पर इस कार्यक्रम में हमने आज आपके लिए कुछ खास गीत चुने हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: Durango, Durango, Durango, Durango.
1: अनिल विश्वास की संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे कवि प्रदीप की ये रचना। गाने वाले कलाकार थे अमीरबाई कर्नाटकी, प्रदीप और साथी। फिल्म का नाम था किस्मत। और आइए अब सुनते हैं फिल्म जागृति का गीत, आवाज प्रदीप की। गीत को लिखा है प्रदीप ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है क...

कार्यक्रम का अगला गीत सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में प्रदीप का लिखा हुआ हमने चुना है। आवाजें हैं हेमंत कुमार, सविता चौधरी और साथियों की। फिल्म का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस।

0: फिल्म माँ चोर का दो गाना अभी आप सुन रहे थे। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
0: और आइए अब सुनते हैं खयाम साहब के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी के बोल, युगल स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम त्रिशूल।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने गौहर कानपुरी का चुना है। इसे संगीत में ढाला है बप्पी लाहिड़ी ने। आवाज़ें उषा मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम है फिर जन्म लेंगे हम।

0: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ

0: चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा हुजूर।
5: फिल्म रंगीला रतन का युगल गान सुनिए, स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर के, शब्दकार गुलशन बावरा और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

0: द्विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। वंदे सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी के बोल, आवाजी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था लैला मजनू।

ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, राहुल देव बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी की रचना, आशा भोंसले और किशोर कुमार के युगल स्वर। फिल्म का नाम है ढोंगी।

और इसी के साथ अब आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आपको ले चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली हिंदी में समाचारों के लिए। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित। और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
3: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने

0: कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
1: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्री ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
0: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
2: UPI के जरिए लेन देन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए UPI सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। PCI ने कहा है कि UPI देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेन देन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी UPI उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमेरिकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
3: We have seen the comments.
4: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
3: Regulate the flow of foreign funds.
0: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं।
4: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
0: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में JPSC और GSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ओग्राहम के नाम

0: पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
3: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथानामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
4: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान क्यूआर कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर ओपीडी रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
5: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से

0: आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जलभराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। और अब समय हो गया है कार्यक्रम त्रिवेणी का।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

0: त्रिवेणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 8 अगस्त की तारीख कैलेंडर की कोई आम तारीख लग सकती है, लेकिन भारत के इतिहास में ये तारीख सुनहरे अक्षरों से लिखी हुई है। भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था, क्रिप्स मिशन नाकाम हो चुका था, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन जारी था जहां महात्मा गांधी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इस तरह से भारत की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान आज भी भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति की याद दिलाता है। जन जन में रोष था, आक्रोश था और ऊर्जा थी, बुलंदी थी कि किसी भी तरह से अब देश को आजाद करना ही है। मुंबई से जो लहर शुरू हुई थी उसने धीरे धीरे पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया। अब गांव गांव, शहर शहर बस एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो

भारत छोड़ो आंदोलन का सिनेमा पर क्या असर पड़ा, इसकी एक मिसाल ये गाना है जो अभी आपने सुना। कवि प्रदीप ने जब ये गाना लिखा तो उन्हें अंग्रेज सरकार ने तलब किया और आरोप लगाया कि ये गाना ब्रिटिश विरोधी गाना है, पर उन्होंने बड़ी चतुराई से तर्क दिया कि ये गाना ब्रिटिश विरोधी नहीं बल्कि ब्रिटिश समर्थक गाना है। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। टॉकीज़ों में फिल्म को रोक रोक कर नौजवान बार बार इस गाने को दिखाने का अनुरोध करते थे। ये गाना जनमानस पर छा गया था। पूरे देश में अंग्रेजों का बहिष्कार किया जा रहा था, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, बच्चे हों या नौजवान या बुजुर्ग। भारत के कोने कोने से लोग सड़क पर निकल आए थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर बस ये तय कर लिया था कि अंग्रेजों को खदेड़ कर ही दम लेंगे। और इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आजादी का आखिरी बड़ा आंदोलन बना जिसने इस देश की बुनियाद रखी, जिसने इस देश को तरक्की के रास्ते पर लाया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आजादी बहुत ही मुश्किल से, त्याग से, बलिदान से और बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद हमें हासिल हुई है। इस आजादी का मोल हर पीढ़ी को समझना होगा।

आजादी का आखिरी बड़ा आंदोलन बना जिसने इस देश की बुनियाद रखी, जिसने इस देश को तरक्की के रास्ते पर लाया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आजादी बहुत ही मुश्किल से, त्याग से, बलिदान से और बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद हमें हासिल हुई है। इस आजादी का मूल हर पीढ़ी को समझना होगा।

0: संभाल के।
1: कोई भी देश अपनी सीमाओं से नहीं बनता, अपनी ऐतिहासिक इमारतों से नहीं बनता, अपने इतिहास से भी नहीं बनता। देश बनता है जनमानस से, उसकी जनता से और उसकी जनता की चेतना से। अगर हम सचेत रहें, जागरूक रहें, देश के प्रति जिम्मेदार रहें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें, खासकर अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह करते रहें, तो ये माना जाएगा कि हम अपने आजादी का मोल समझ रहे हैं, हम अपनी आजादी की कीमत चुका रहे हैं, हम देश के प्रति अपनी निष्ठा को ठीक तरीके से निभा रहे हैं। हम बहुत छोटे छोटे काम बहुत निष्ठा के साथ कर सकते हैं, जैसे हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बिजली और पानी को व्यर्थ ना जाने दें, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसे बहुत छोटे छोटे काम हैं जो हम करें तो देश के लिए एक बड़ा योगदान हो सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन की याद के इस दिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रति जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है।
2: ये

8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और आज त्रिवेणी में हमने आपको याद दिलाया कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या है और ये आजादी इतनी अनमोल क्यों है। तो अब इजाजत दीजिए, यूनुस खान को नमस्कार।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8:30 हुए हैं। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
3: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास।
4: HP TDC के प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
3: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
4: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
3: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
4: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
3: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
5: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू। SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। एक बार फिर मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, न तो थके थे कदम, न ही हिम्मत हारी थी। आज से यानी आज 8 अगस्त 1942 की उस उमस भरी शाम, बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान से उठी थी एक ऐसी हुंकार जिसने हिला दी थी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव। जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के उस महानायक अध्याय को, जहां हर हिंदुस्तानी की जुबान पर एक ही मंत्र था, करो या मरो। ये आजादी की वो आवाज है जिसे न तो सलाखें रोक पाई और न ही ब्रिटिश सेंसरशिप का पहरा। इतिहास के पन्नों से गूंजती वही धड़कन, वही संकल्प लेकर हम हाजिर हैं आज इस विशेष दिन पर, और तरोताजा करते हैं दीवानों की यादें जिन्होंने अपने लहू से लिखा था स्वाधीनता का मुकद्दर। और हम सभी जानते हैं 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से है, अधिवेशन में ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था और महात्मा गांधी का आह्वान था, करो या मरो। उन्होंने ये अमर मंत्र दे दिया था और बिना नेतृत्व के भी देश के कोने कोने में छात्रों, महिलाओं और आम जनता का सड़कों पर उतरना वाकई बहुत ही एक अलग किस्म का आंदोलन। और इस जन आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी, जिसके बाद भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ।

0: यह आवाज थी अरिजीत सिंह की और फिल्म का नाम था भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। गीतकार थे मनोज मुंतशिर और संगीत दिया था आरको ने।
1: एक आवाज जिसमें है जोश जुनून।

0: आ रही हैं विविध भारती पर।
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: हाय हाय
3: निशात खान का संगीत, स्वानंद किरकिरे के बोल, शिल्पा राव और जावेद अली की आवाजी, फिल्म का नाम ये साली जिंदगी।

0: शिल्पा राव और जावेद अली को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था ये साली जिंदगी।
1: द्विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। वंदे सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
2: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
1: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
0: और अब वक्त है एक अंतराल का।

तय नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि इस बात पर तय होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, है ना? तो आज एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए, आज किसी की छोटी छोटी गलतियों को आप नजरअंदाज कर देंगे, खुद मुस्कुराएंगे और दूसरों को भी हंसने का मौका देंगे, और बेकार की बातों को भुलाकर जीने का जो मजा है ना, वो दोगुना हो जाता है। हाँ, हम तो आपसे ये जरूर कहेंगे कि विविध भारती को हमेशा याद रखिए।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा आज यानी आज का पूरा दिन कैसे बीतेगा, है ना? कभी कभी ऐसा लगता है। क्या आपको पता है कि हमारा आज का दिन इस बात पर

0: संगीत हल्दीपुर और रोशनी बैपटिस की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म मर्डर 2 का गीत। गीतकार सईद कादरी थे और संगीत दिया था संगीत और सिद्धार्थ हल्दीपुर ने।
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950633224।

0: से मुक्ति पाएं।
1: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: होना और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: विविध भारती पर
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
2: तनु वेट्स मनु, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना। गाने वाले कलाकार मोहित चौहान और उज्जैनी। इसे राजशेखर ने लिखा और धुन बनाई है कृष्णा ने।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हैं और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। परेशान हूं मैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
1: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंत।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगर आप इस वक्त भी सुस्ती महसूस कर रहे हैं, हालांकि सुबह का वक्त है और इस समय तो हम बहुत ज्यादा उत्साही होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फिर भी कहीं अगर सुस्त हैं तो आइए हमसे जुड़िए और जोश भरे जो गीत हम इस वक्त आपको सुनवा रहे हैं उनके साथ जुड़कर निसंदेह आप भी बिल्कुल जोशीले हो सकते हैं। आइए सुनते हैं सिंघम फिल्म का गाना। श्रेया घोषाल और अजय की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, अजय अतुल की धुन है।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म रॉकस्टार का गाना सुनिए, आवाजें मोहित चौहान और ए आर रहमान की, गीत इरशाद कामिल का, संगीत ए आर रहमान का।

0: फिल्म रॉक स्टार का गाना था ये, आवाजें मोहित चौहान और A.R. रहमान की थी। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में अन्विता दत्त का लिखा गीत सुनिए, स्वर है शफकत अमानत अली का और फिल्म का नाम पटियाला हाउस। दोस्तों सुबह का समय है, नए गाने विविध भारती पर चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं और हम समझ सकते हैं कि नए गानों का आप मजा ले रहे हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं, है ना?

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं संदेश शांडिल्य के संगीत निर्देशन में मनोज मुंतशिर की रचना, आवाजें विजय प्रकाश और गायत्री गांजावाला की। फिल्म का नाम है लव यू मिस्टर कलाकार।

तो हम उम्मीद करते हैं आज के ये सभी गाने आपको बेहद पसंद आए होंगे। पूरे कार्यक्रम में विविध भारती के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब समय हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, विविध भारती से जुड़े रहिएगा। तो अपनी रेडियो दोस्त मंदाकिनी जोशी को दें आप इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
4: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
5: अच्छा बच्चियों, तो हनु सारे नु पता है ना 10 अगस्त नु स्कूल आना क्यों जरूरी है?
6: हाँ जी मैडम जी, क्योंकि उस दिन पेट दे कीड़ियां तो राष्ट्रीय मुक्ति दिवस है। ते सानु आन दे कीड़ियां नु खत्म करन लई दवाई दित्ती जाएगी।
5: ते जेड़े बच्चे रह जानगे उन्हां नु 17 अगस्त नु मॉप अप दिवस दे दिन दवाई दित्ती जाएगी।
6: अच्छा मैडम जी।
5: हाँ जी, दवाई दे नाल नाल आंत दे कीड़ियां तो बचन लई ध्यान रखो के खुले च कदी भी शौच ना जाओ। खाना खान तो पहला अते शौच जान तो बाद हमेशा हाथ साबण नाल धोवो। अपने हाथ दे नाखून छोटे रखो अते आस पास सफाई रखो। याद रखो, जेड़े बच्चे दे आंत विच कीड़े हुंदे ने ओ जो भी खांदा है उस दे शरीर नु नहीं लगदा, इस करके बच्चा कमजोर रह जांदा है। बच्चियो, ये सारियां गल्लां याद रहनगियां ना तुहानू?
6: हां जी मैडम जी।
7: आंत दे कीड़ियां तो छुटकारा, होवे सेहतमंद भविख साडा। नेशनल हेल्थ मिशन सेहत ते परिवार भलाई विभाग पंजाब वल्लों जनहित विच जारी।
1: अपनी रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, अब समय है हमारे कार्यक्रम आज का अखबार का।
8: आज का अखबार।

कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी। दोस्तों कैसे हैं आप? भाई मौसम के साथ साथ हम चाहते हैं जैसे मौसम खुशगवार हो गया है, वैसे आप लोग भी हमेशा खुश रहें। और खुशी की परिभाषा जो है वो कोई एक नहीं है, हर किसी को अलग अलग चीज़ से खुशी मिलती है। किसी को दूसरों को खुश करके खुशी मिलती है, किसी के चेहरे पर छोटी सी एक स्माइल अगर हमारी वजह से आ जाए तो भी दिल को खुशी मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। और कई बार कुछ लोग दूसरों की खुशी के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी पूरा जीवन खपा देते हैं दूसरों की खुशी के लिए। आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने एक ऐसा काम किया है जिसकी तारीफ उस क्षेत्र के सभी लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज की अखबार में भी उनके बारे में ये खबर आई है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के धौलपुर में आईएएस अधिकारी निवृत्ति अवहद सोमनाथ जी की। जी हां, अवहद सोमनाथ जी की पहल ने 78 जर्जर सरकारी इमारतों को डिजिटल संविधान घर में बदल दिया है। यहां पर अब करीब 5000 छात्र मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तैयारी वहां पर करवाई जा रही है। और आपको बता दें कि ये जो केंद्र है इनमें कंप्यूटर भी है, स्मार्ट टीवी है, इंटरनेट है, क्यूआर कोड वाली लाइब्रेरी जैसी मॉडर्न सुविधाएं भी हैं। और इस पहल की शुरुआत उन्होंने की थी 2024 में। सोमनाथ जी ने अपने दौरे के दौरान देखा कि कई जो गवर्नमेंट सरकारी भवन है, यानी कि गवर्नमेंट जितनी भी पुरानी इमारतें हैं वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं और उनको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और उन्होंने अपना मन बना लिया और इन्हें पढ़ाई के केंद्र में बदलने का फैसला किया। शुरुआत उन्होंने की एक गांव से, बस उसके बाद यह अभियान पूरे जिले में फैल गया। सबसे अच्छी बात यह है कि हर केंद्र का संचालन गांव की संविधान सखी करती है, यानी कि एक लड़की, लड़कियों को मुखिया बनाया और इससे लड़कियों के लिए माहौल भी सुरक्षित बन गया। और ये पहल अब 70 से अधिक गांव पंचायतों तक पहुंच चुकी है। तो देखिए, शहरों में तो बहुत कुछ होता है, जब किसी को अगर किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी हो वो जाकर कोचिंग सेंटर्स में जा सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं, 10 तरह की काउंसलिंग ले सकते हैं, लेकिन गांव में जाकर कोई इस तरह का काम कर रहा है और वो भी 70 से अधिक पंचायतें इस नई अनूठी पहल के साथ जुड़ चुकी हैं, इसके लिए हमारा सैल्यूट है। जो अवहद सोमनाथ जी काम कर रहे हैं वो बेहद काबिले तारीफ है और ऐसे ही लोग हमें चाहिए जो हमारी युवा शक्ति को आगे लेकर जाएं, हमारे देश को आगे लेकर जाएं। आपको बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से अवहद सोमनाथ जी, आप बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
3: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
2: पहला,

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: इस समय आप हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के साथ FM 107.2 MHz पर और ये कार्यक्रम है आज का अखबार।

पहले राष्ट्रीय समाचार। इस सप्ताह भी संसद ठप, राजग के नए साथी सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। भारत ने अमेरिकी सांसद की आलोचनाओं को किया खारिज, कहा विदेशी चंदा कानून हमारा आंतरिक मामला।

ग्राहकों के लिए मुफ्त रहेंगे यूपीआई भुगतान। भारत और चीन ने की एलएसी पर स्थिति की समीक्षा।

मेटा पर 5,400 करोड़ रुपए जुर्माना। कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया की लत उपद्रव जैसी बच्चों किशोरों की मानसिक सेहत बिगाड़ी।

नीट, सीबीएसई, यूजीसी, नेट जैसे नतीजों में इस बार रिकॉर्ड देरी, सत्र आगे खिसके। लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी, देश के 502 जिलों के भूजल में नाइट्रेट खतरनाक स्तर पर।

और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच मक्का रक्षा समझौता, एक देश पर हमला तीनों पर माना जाएगा।

और अमेरिका में रूसी तेल खरीदने पर भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ बिल पास, सेनेट में 86 सांसदों की पक्ष में हुई वोटिंग। तो ये थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार और अब बारी आ गई है आपके एंटरटेनमेंट की, तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: एड्स HIV ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

आज का अखबार कार्यक्रम में अब बारी आ गई है लोकल और रीजनल हेडलाइंस की। पहले खबरें ट्राई सिटी से। एसआईआर सत्यापन के बाद 2 लाख वोटरों के नाम बाहर, वोट बचाने केंद्रों पर पहुंचे लोग। कारबूजी सेंटर में 20 करोड़ से बनेगा डिजिटल म्यूजियम, हेरिटेज कमेटी ने दी मंजूरी।

बारिश से सुहाना हुआ चंडीगढ़ का मौसम, 24 घंटे में 12.8 मिलीमीटर बरसे बादल। और अब बारी आ गई है क्षेत्रीय समाचारों की। प्रधानमंत्री मोदी से मिले सुखबीर बादल, पंजाब में शियत भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। ओपीएस और डीए की मांग पर पंजाब के कर्मियों ने किया प्रदर्शन। जंतर मंतर षड्यंत्र पर टिप्पणी विवाद के बाद अमृतसर के पुलिस कमिश्नर का तबादला। कुरुक्षेत्र में दंपत्ति को बंधक बनाकर डिजिटल लॉकर खुलवाया, 3.15 करोड़ का सामान ले गए। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में आज 8,00,000 विद्यार्थी लिखेंगे सैनिकों को पत्र। हरियाणा में 17 आईएएस और 7 एचसीएस के विभागों में हुआ फेरबदल। और हिमाचल में 162 सड़कें बंद, किन्नर कैलाश यात्रा रुकी, हरियाणा में 2 लोगों की मौत। तो ये थी लोकल और रीजनल हेडलाइंस। और चलिए अब फिर से बढ़ते हैं एक गीत की ओर।

चल चल चल चल चलत चलत जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: तो दोस्तों, ये मस्ती जो इस गीत में थी, हम चाहते हैं कि आप भी ऐसे मस्त रहें और खुश रहें, और इसी दुआ के साथ अब आज का कार्यक्रम होता है यहीं पर संपन्न। शालिनी को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बजने को है। अब हिंदी में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईआईटी दिल्ली ने अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस अग्रणी संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान के प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करेंगे। इनमें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं।
1: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
0: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री शाह निगम के नवनिर्मित कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन BSE इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इसमें शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी महासंघों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और अन्य संबंधित

0: पक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और देश में आत्मनिर्भर सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल रात शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि बैठक में मंत्रालय के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उन्होंने इन कार्यक्रमों को समय से और प्रभावी ढंग से पूरा करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जाँच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की अपनी मांग दोहराई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। अमरीकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल सकती है। लिंडसे ओ ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक के समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में लोग कवि, दार्शनिक, संगीतकार और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर सफर सुरीला सा। ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950633224।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ और अब समय है उस कार्यक्रम का जिसका नाम है सफर सुरीला सा। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को शालिनी का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं दो बेहद सुरीली आवाजों के साथ, के और सुनिधि चौहान के युगल स्वरों में ये गीत अक्सर फिल्म से।

और अब लीजिए सुनिए अलका याग्निक और शान की आवाजों में ये गीत कल हो ना हो फिल्म से, संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: वास्तव फिल्म का गीत अभी आपने सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में सुना। समीर अंजान का लिखा गीत था और संगीत था जतिन ललित का।
1: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास
2: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
3: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
2: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
3: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
2: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
3: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: आप तय कर रहे हैं सुरों का सफर, कार्यक्रम सफर सुरीला से में, और ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है. कार्यक्रम में अब बारी आ गई है अभिजीत के गाए इस गीत को सुनने की, जिसे हमने लिया है दिल ही दिल में फिल्म से. संगीत दिया है AR रहमान ने.

सफर सुरीला सा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश खामोशी द म्यूजिकल फिल्म से, आवाजें हरिहरन अलका याग्निक की हैं, गीत है मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत जतिन ललित का।

0: खामोशी फिल्म के इसी गीत के साथ आज का सफर सुरीला सा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। शालिनी को दीजिए अनुमति, नमस्कार। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 260180।

0: 46।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है कार्यक्रम पॉप टाइम।

0: पॉप टाइम प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार।
1: हेलो मेरे सोने पाजी।
0: हेलो पिंके, और सुनाओ क्या हाल चाल है? आज शन्नो जी नहीं आई?
1: पाजी आपको कहीं देख रही हैं? चली शन्नो जी।
0: नहीं पिंके,
1: आई ही नहीं तो दिखेंगी क्या टीडी टी करके?
0: पिंके बड़े खुश हो आज? ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, आज शन्नो जी नहीं आई इसीलिए बड़े खुश हो?
1: पाजी आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही टीडी टी करके।
0: नहीं नहीं पिंके, तुम गलत समझ रहे हो।
1: पाजी सब समझता हूँ मैं। हाँ
0: पर
1: पाजी पार नहीं लगे मुझे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं यार टीडी टी करके?
0: ओहो पिंके मुझे माफ करो,
1: पहले अपनी गलती बताओ फिर माफ भी कर देंगे टीडी टी करके।
0: पिंके वही तो पता नहीं कि आज मैंने ऐसी क्या गलती की है जो तुम मुझे इतना सता रहे हो।
1: पाजी आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे आपने बैंक से बड़ा तगड़ा कर्जा ले लिया है और आपसे किस्तें नहीं तारी जा रही टीडी टी करके।
0: पिंके सुधर जाओ सुधर।
1: पाजी अब मुझे बाद में सुधारना, पहले दोस्तों को गाना सुना दो नहीं तो फिर कहेंगे बातें ही करते रहते हैं बातें ही करते रहते हैं, गाना तो सुनाते नहीं टीडी टी करके।

0: पिंके, वो तुम्हारे पास लिफाफा सा क्या पड़ा है?
1: पूंडी भाजी की दुकान की जलेबियां हैं, जलेबियां।
0: अच्छा, मेरे लिए?
1: आए भाजी, आ गया ना मुंह में पानी जलेबियों की खुशबू सूंघ के। वैसे ना आपकी नाक भी बड़ी तेज है, जलेबियों की खुशबू दूर दूर से सूंघ लेती है, टीडी टी करके।
0: क्या मतलब?
1: अब कुछ नहीं भाजी, आप कितने तंदुरुस्त हैं, है ना? भाजी लो, इसी खुशी में ये पूंडी भाजी की दुकान की जलेबियां खाओ, टीडी टी करके।
0: हाँ हाँ पिंके, वाह क्या स्वाद है
1: भाजी। ये और खाओ ना, शर्माते क्यों हो? आपके खाते में ही लिखवा के आया हूँ इन जलेबियों के पैसे।
0: अच्छा तो लाओ पिंके।
1: लो लो खाओ ना।
0: हाँ हाँ पिंके दो। ये क्या, नमकीन जलेबी?

0: पिंके, ये तुमने क्या हाल बना रखा है?
1: क्यों भाई, अब क्या हुआ?
0: तुम आजकल सैर नहीं करते, देखो कितने मोटे होते जा रहे हो।
1: आए, भाजी, आपको मेरे मोटापे का बिल आ रहा है टीडी टी करके।
0: पिंके, तुम्हें पता है ये मोटापा कई बीमारियों की जड़ है।
1: वैसे भाजी, आप कभी पार्क में गए हैं?
0: हाँ हाँ।
1: आजकल तो पार्कों में आप जैसे बरसाती डड्डू ही दिखाई देते हैं टीडी टी करके।
0: क्या मतलब?
1: पहले तो अपनी सेहत का वो लोग ध्यान नहीं देते, पिज्जा खा, बर्गर खा, ये खा, वो खा, और जब तोंद इतनी बड़ी हो जाए कि संभालनी मुश्किल हो जाए, और फिर शुगर, ब्लड प्रेशर और गैस जैसी बीमारियां घेर लें, तो फिर ऐसे लोग पार्कों में आजकल नजर आते हैं टीडी टी करके, और वहां इतनी तेज तेज चलने का ड्रामा करते हैं जैसे इनमें शताब्दी गड्डी की रूह आ गई हो टीडी टी करके।

0: वैसे पिंके, मैं तो यही कहूंगा कि सैर करना सेहत के लिए हमेशा जरूरी है, सेहत के लिए अच्छा है।
1: बिल्कुल पाजी, देखो ना, पहले तो कई लोग सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते, खोल के हंसते नहीं। या यूं कह ले, लोगों के पास हंसने का भी टाइम नहीं, वो तो सवेरे सवेरे 5-6 बजे 25-30 बंदे पार्कों में इकट्ठे हो गए ना, रावणों की तरह हंसते हैं। मेरे वर्गा बंदा जिनके घर के पास पार्क हो, वो बेचारा डर के बिस्तरे से नीचे गिर पड़ता है। आ, पूत पूत।

0: वैसे पाजी आप क्या समझते हैं कि पार्क सिर्फ सैर के लिए ही होते हैं टीडी टी करके?
1: बिल्कुल पिंके, पार्क तो सैर करने के लिए ही बनाए गए हैं ताकि नागरिक सैर करें, उनकी सेहत ठीक रहे।
0: लो कर लो बात पाजी, वहाँ पे आजकल तो सैर कम होती है और सास बहु की, बहु सास की, एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन की और ऐसे ही कई तरह की चुगलियों पर तेज चालें होती हैं टीडी टी करके। और तो और कई लोग तो सुबह

0: सवेरे ऐसे मेकअप करके त्यार श्यार हो के आते हैं जैसे बारात में आए हो, और फिर तेज चाल ऐसे चलेंगे जैसे बारात की रोटी खत्म होने वाली है। ओ जल्दी जल्दी रोटी खा लो नहीं तो खत्म हो जाएगी।
1: पिंके तुम भी पता नहीं कहां कहां से बातें बनाते हो।
0: लो कर लो बात पाजी, मेरी कोई बातों की फैक्ट्री है। ये लोग बात करने का मौका देते हैं तभी तो मुझे बातें आती हैं। हाँ अब देखे ना, सुबह सवेरे की तो पार्कों की बात कर ली, अब शाम की बात बताऊंगा तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ शाम को तो वारी होती है लल्ला मजनुओं की सैर करने की, और फिर मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि पिंका बहुत बोलता है टीडी टी करके।
1: पिंके तुम जो चाहे कहो पर मेरी तो तुमसे ये सलाह है कि सैर किया करो।
0: पाजी रब दा वास्ते चुप कर जाओ, कहीं शन्नो जी ने सुन लिया तो फिर मुझे तड़के उठा के डाबरमैन के साथ सैर पे भेज देंगी टीडी टी करके। और पता ही नहीं लगेगा कि मैं डाबरमैन को सैर करवाने जा रहा हूँ या डाबरमैन मुझे टीरी टी करके।

0: मेथी भाजी अब मैं जाऊं, चन्नो जी के बगैर मेरा दिल उदास हो गया है, टीड़ी टी करके।
1: हाँ हाँ पिंके जरूर।
0: अच्छा भाजी ओके बाय।
1: बाय पिंके। श्रोताओ आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपनी राय जरूर दें। अब आज का पॉप टाइम प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पॉप टाइम।
2: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पॉप टाइम।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस।
4: म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
2: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ अगले एक घंटे रहूंगी मैं शालिनी। हाजिर हैं लेकर आपकी फरमाइशें जिन्हें आपने भेज दिया है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर। और आज भी हमेशा की तरह बहुत से गीत, बहुत सी फरमाइशें हम तक पहुंची हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और बहुत सारी प्यार भरी बातें भी हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमें अपनी फरमाइशें भेज देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम में गीतों का सिलसिला जो कि है आप ही की फरमाइश पर। पहला गीत दो बदन फिल्म से सुनने की फरमाइश हमें आई है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठा और अलका मिठा की। और साथ ही आज हमें मैसेज आया है हमारे रेडियो दोस्त परवेज अहमद का।

0: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
1: कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से, और सुनने की फरमाइश हमें भेजी है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने। आप सभी के लिए भेज रहे हैं ये गीत।

0: वेश साय तू ए क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

और ये गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है लक्ष्य जी ने, जिन्होंने अपना एड्रेस नहीं लिखा है। साथ ही आज हमें फरमाइश मिली है विजय तंवर और ममता की मुंडी खरड़ से। विश्वात्मा फिल्म का गीत आप सभी के लिए सुनवा रही हैं।

आप आनंद ले रहे हैं अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस। और आप अपनी फरमाइशें हमें लगातार भेज रहे हैं हमारे इंस्टा फेस पर, यानी कि इंस्टाग्राम आईडी पर। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो कि हमें मिली है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की। आपने सुनना चाहा है हीरा पन्ना फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर किशोर कुमार के युगल स्वरों में आपके लिए ये गीत।

0: और लीजिए, अब सुनिए आपकी कसम फिल्म का गीत किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजों में। सुनने की फरमाइश आई है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना की।
1: जय जय शिव शंकर।

और ये गीत सावन को आने दो फिल्म से सुनने की फरमाइश हमें भेजी है सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, देवांशु गुलाटी, चित्रांशु गुलाटी और दीपांशु गुलाटी ने। साथ ही आज हमें मैसेज मिला है सेक्टर 18 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी का भी।

0: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर, और ये कार्यक्रम है म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। आप तक पहुंचा रहे हैं आपके द्वारा पसंद किए गीत जो आपने हमें भेज दिए हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आपकी फरमाइश के बाकी गीत लेकर जल्दी से हाजिर होते हैं।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन 50 लाख रुपए तक का तुरंत। डिजिटल अप्रूवल 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश आज हमें भेजी है एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंभई, तहसील सिलौड़, जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से। भेजने वाले हैं अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के। और साथ ही आज हमें सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका का भी मैसेज आया है कि किसी भी गीत में उनका नाम शामिल करें। तो लीजिए, हमने कर लिया शामिल और अब आइए सुनते हैं ये गीत।

म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम में अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें बड़ी दूर से आई है और देश का मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर से आज हमें फरमाइश भेजी है सलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन नजाम उद्दीन और कैसर उद्दीन ने। आपने कन्यादान फिल्म का गीत सुनना चाहा है और साथ ही साथ आज हमें फरमाइश आई है मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ की। तो आपको सुनवाते हैं कन्यादान फिल्म का ये गीत, उम्मीद है कश्मीर तक साफ साफ पहुंचेगा।

श्रोताओं, बहुत सारे मैसेजेस आप हमें भेज रहे हैं और तहे दिल से आपका शुक्रिया इन मैसेजेस के लिए। और आपको बता दें कि कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो सिर्फ ही मैसेज में अपना नाम लिखकर भेज रहे हैं, लेकिन कोई फरमाइश नहीं है, तो उनके नाम हम साथ साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राम तंगौरी, जिला मोहाली, पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगौरी, जसबीर कौर, महिकप्रीत कौर और सहज प्रीत सिंह का मैसेज आज हमें मिला है। साथ ही गांव हांडी, खेड़ा, जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, इनका भी मैसेज आज हमें आया है। नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मुरहेकर, आपका मैसेज भी आज हमें मिला है। और रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, आप सभी को सुनवा रहे हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गीत।

और श्रोताओं, अब जो गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं वो है याराना फिल्म से। सुनने की फरमाइश भेजी है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी ने पींगा वाला चौक गोराया जालंधर से।

म्यूजिक हैश टैग इंस्टा फेस कार्यक्रम में अगली फरमाइश जो आई है वो है कोहिनूर फिल्म का गीत सुनने के लिए। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह, साथ ही फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह का भी आज हमें मैसेज मिला है कि इनका नाम हम किसी भी गीत में शामिल कर सकते हैं। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज भेज रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आज हमें मैसेज मिला है सेक्टर 21 पंचकुला से

मोहम्मद अनस मोहम्मद अरहान का। इन्होंने भी आज हमें मैसेज किया है, आपका भी कार्यक्रम में मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, आपका भी मैसेज हमें मिला है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आइए सुनते हैं कोहिनूर फिल्म का ये गीत।

और इस क्लासिक नंबर के बाद अब फिर से चलते हैं आपकी फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमें आई है परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर की। आपने सुनना चाहा है घर फिल्म का गीत और साथ ही और नाम शामिल कर रहे हैं जिन्होंने हमें फरमाइश तो भेजी थी लेकिन समय की कमी की वजह से उनके

मात्र हम नाम ही शामिल कर पाएंगे। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छींपा, कपिल छींपा, ईशान छींपा और पूजा परिहार का आज हमें मैसेज मिला है। साथ ही पवन कनौजिया, वंदना कनौजिया, गरिमा कनौजिया श्री आनंदपुर साहिब से, इन्होंने आज हमें मैसेज किया है। केशव गर्ग, रविकांत गर्ग और कल्पना शर्मा गोविंद एनक्लेव ग्रीन एक्सटेंशन 1 सेक्टर 126 मोहाली के हमारे श्रोता हैं। इनका भी हमें आज मैसेज जो है वो आया है और साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि छह और नाम ले ले। जी, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष, इनका भी मैसेज आया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्टो, रोजी डिकैस्टो, पर्ल डिकैस्टो, विलिस डिकैस्टो का भी मैसेज आज हमें मिला है। और धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू और भी मैसेज बहुत सारे आए हैं। सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव और अभिषेक नामदेव। तो चलिए अब घर फिल्म का गीत सुन लिया जाए।

आसाम से मैसेज मिला है हमें हितेंद्र दास जी का, आपका शुक्रिया। सुखचैन सिंह पवार सनौर से, और साथ ही जोबनप्रीत सिंह और हरमनजोत सिंह और मनजोत कौर ने भी आज हमें मैसेज किया है गीत सुनाने के लिए।

0: और दोस्तों, म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अपनी दोस्त शालिनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। 12 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक

0: साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए IED, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के 30वें दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेमेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 12:05 हुए हैं, समय हो गया है कार्यक्रम यादों की महफिल का। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनिए यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इस गाने से शुरुआत करते हैं। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन, शोले।

0: आ रही हैं विविध भारती पर।
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे दिन के 12:11:35 और अगर आपके शहर में बारिश है तो ये गाना आपके लिए।

0: दो ना
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन थोड़ी देर है
0: कब आएगा अरे अरे अरे

0: जो झूठ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में था। एमजी हशमत के बोल थे।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे

यादों की महफिल में अब गूंज रही है किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम है वारंट। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हैं और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। परेशान हूं मैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
1: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाएं हम?
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा,
0: किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम साहिब बहादुर। राजेंद्र कृष्ण की बोल मदन मोहन की तर्ज।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अन्य

आ रही हैं महबूबा महबूबा महबूबा विविध भारती पर सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थीं। फिल्म का नाम जूली, आनंद बख्शी, राजेश रोशन। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आ रही है किशोर कुमार की ही आवाज में। अमित खन्ना के बोल, राजेश रोशन की तर्ज है। फिल्म का नाम है देश

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के।

0: 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनिए
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार आप शाम को भी सुन सकते हैं शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा दिन में 2 बजे। 2:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत होगा दोपहर 3 बजे। नाट्य तरंग कार्यक्रम में दोपहर 3:30 पर नाटक सुनिए किसी एक फूल का नाम लो। मूल गुजराती लेखक हैं मधु राय, रूपांतरकार हैं ज्योति व्यास और निर्देशक सुशील बैनर्जी। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज। आज इस कार्यक्रम में कोरियोग्राफर शबीना खान से बातचीत सुनवाई जाएगी। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे प्रसारित किया जाएगा शाम 5:20 पर। शाम 5:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। आज इस कार्यक्रम में मेजर प्रिया झिंगन से अनिल पुंज की बातचीत सुनवाई जाएगी। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 पर, रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। शाम 6:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए ऑर्गन इंडिया। अभिनेता निर्माता निर्देशक मनोज कुमार द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला सुनिए शाम 7 बजे। हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे सुनो कहानी के अंतर्गत आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का पहला भाग प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम चित्रलोक सुनिए रात 8:15। रात 9 बजे कार्यक्रम होगा आपके लिए। आज के फनकार ये कार्यक्रम होगा रात 9:30 पर और आज का ये कार्यक्रम गीतकार गुलशन बावरा पर केंद्रित रहेगा। और रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत।

0: FM 107 .2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू है। भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ने सभी पक्षों से नागरिक बुनियादी ढांचा, जहाजों और नाविकों को निशाना नहीं बनाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। कुरुक्षेत्र में 10 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने आज कुरुक्षेत्र में बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा शाम 3 बजे पूजा मॉडल स्कूल से शुरू होकर शहीद स्मारक पर संपन्न होगी। श्री सुभाष सुधा ने शहरवासियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें।
2: ये तिरंगा यात्रा दिल को छूने वाली यात्रा होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी ठीक 3 बजे तिरंगा यात्रा शुभारंभ करेंगे। हजारों की तादाद में लोग उसके अंदर आएंगे। क्षेत्र के निवासियों से अपील करूंगा कि देश के शहीदों के लिए आप सब तिरंगा यात्रा में आए।
1: स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पलवल जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद ने बताया कि इस बार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जिले में तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनी, संगीत कार्यक्रम, सरकारी भवनों पर तिरंगा रोशनी और विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को 15 सितंबर तक चलने वाली राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। श्री उत्सव आनंद ने आम नागरिकों सहित जिला के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से हर घर तिरंगा अभियान में प्रतिभागिता करते हुए सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में बिजली यूनियन द्वारा 11 से 13 अगस्त तक की जाने वाली हड़ताल को लेकर उनके साथ बातचीत जारी है और उन्हें पूरा विश्वास है कि बिजली कर्मचारियों को हड़ताल पर न जाने के लिए मना लिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में श्री विज ने कहा कि गत दिनों बिजली कर्मचारियों की बिजली विभाग के विभिन्न संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया गया था। मुख्य तौर पर उनकी 3 मांगें थीं, जिनमें पहली बिजली वितरण का समांतर लाइसेंस देकर निजीकरण न करने को लेकर थी। उन्हें बताया गया था कि यह मामला हरियाणा विद्युत नियामक आयोग में आया है और वह एक स्वायत्त संस्था है जो बिजली विभाग के तहत काम नहीं करती। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमने यूनियन पदाधिकारियों को बताया है कि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग में सरकार ने निजीकरण का विरोध किया है। सुनवाई के दौरान जो हमारे अधिकारी उपस्थित हुए वे वहीं बोले जिन दस्तावेजों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। दूसरी बात जो यूनियन ने रखी कि स्मार्ट मीटर बंद किए जाएं, जिस पर विष ने कहा कि अभी इसके टेंडर ही नहीं हुए, उसकी फाइल चल रही है। श्री विष ने कहा कि यूनियन की तीसरी मांग थी कि एग्री डिस्कॉम बनाया जाए। इस संबंध में श्री विष ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में विधानसभा में बात की है, लेकिन अभी उनकी और मुख्यमंत्री की आपस में बात नहीं हुई, इसलिए इसका आगे क्या एजेंडा होगा इस पर अभी बताया नहीं जा सकता। अमेरिका के यूजिन में चल रही

विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने अपने तीसरे प्रयास में 74 मीटर 9 सेंटीमीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पंजाब ते नवी दिल्ली विच योजनाबद्ध हमलियां विच वरतों लई भारत पाकिस्तान सरहद पार एक इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस ID हथियार ते हेरोइन दी कथित तस्करी नाल संबंधित सरहद पार दहशतगर्द साजिश ते दो मुलजमां विरुद्ध चार्जशीट दायर कीती है। NIA दी मोहाली स्थित विशेष अदालत विच कल दायर कीती गई चार्जशीट विच शुभम कुमार जिसनू गिरफ्तार कीता गया अते जसवीर चौधरी जो कि फरार है दे नां शामिल ने। इस साल फरवरी विच अमृतसर स्थित स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल वल्लों कुमार नू एक जिंदा ID एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस एक विदेशी पिस्तौल ते जिंदा कारतूस अते हिरन समेत गिरफ्तार करन तो बाद NIA ने पंजाब पुलिस तो जांच अपने हथ विच लै ली सी। पाकिस्तान आधारित हैंडलरां अते उन्हां दे सहयोगियां समेत कथित सरहद पार दहशतगर्दी नैटवर्क दे होर मैंबरां दी पछाण करन अते उन्हां नू फड़न लई होर जांच जारी है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सरहद पारों नशा ते गैर कानूनी हथियारां दी तस्करी वाले मॉड्यूल दा पर्दाफाश करदिआं 5 व्यक्तियां नू 21 किलोग्राम तो वध हीरोइन 970 ग्राम आइस 0.30 बोर गैर कानूनी पिस्तौल ते 4 जिंदा कारतूसां समेत गिरफ्तार कीता है। ये जानकारी दिंदिआं पंजाब पुलिस दे डायरैक्टर जनरल DGP गौरव यादव ने दस्सिआ कि गिरफ्तार कीते गए व्यक्तियों की पछाण कर ली गई है। उन्होंने दस्सिआ कि मुढ़ली जांच तो पता लग्या कि मुख मुलजम विदेश आधारित तस्कर के सीधे संपर्क में सी जिसने अंतरराष्ट्रीय सरहद पार हेरोइन ते गैर कानूनी हथियारों की तस्करी विच मदद की सी जो अगे सप्लाई किए जाने सन। सरहद पारले इस तस्करी नैटवर्क के संबंधों का पता लाने इस नैटवर्क न जुड़े सारे व्यक्तियों की पछाण लई अगलेरी जांच जारी है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बीते कल मोहाली विच प्रसिद्ध नाटक हमारे राम दे उद्घाटनी मंचन नूं देखण लई दर्शकां नाल शामिल होए। इस नाटक जो कि एक राजव्यापी सभ्याचारक पहलकदमी दी शुरुआत है विच प्रसिद्ध अदाकार आतुशोष राणा ने एक शक्तिशाली मुख भूमिका निभाई। इस पहलकदमी तहत पंजाब सरकार अगस्त ते सितंबर दौरान 12 शहरां जिन्हां च जलंधर मोहाली बठिंडा फिरोजपुर हुशियारपुर अमृतसर पठानकोट गुरदासपुर पटियाला लुधियाणा अते खन्ना शामिल ने विच इस नाटक दे 41 मुफ्त मंचन कराएगी। इस पहलकदमी राही सूबा सरकार दा उद्देश पंजाब दे अमीर सभ्याचारक विरसे ते रवायती कदरां कीमतां नूं उत्साहित करना है। जलंधर मकसूदा शाहरा ते अज सवेरे एक सड़क हादसे विच उस समय 3 नौजवानों की मौत हो गई जदों उन्हां दी कार दी इक खड़े ट्रक नाल टक्कर हो गई। स्टेशन हाउस अफसर डिवीजन 1 सब इंस्पैक्टर राकेश कुमार ने दस्सिया कि पीड़ितों दी लाशां नूं जलंधर सिविल अस्पताल भेज दिता गया। उन्हां कहा कि पुलिस उन्हां दी शनाख्त लई काम कर रही है। ट्रक ड्राइवर फरार है ते पुलिस ट्रक दे रजिस्ट्रेशन नंबर राही उसका पता लाने की कोशिश कर रही है। पंजाब दे प्रवासी भारतीय मामलों बारे मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कैनेडा विच पंजाबी विद्यार्थियों नूं पढ़ाई तो बाद दे वर्क परमिटा संबंधी आ रही मुश्किलों ते गंभीर चिंता प्रगट की अते जोर दे के कहा कि पंजाब सरकार उन्हां दे हितां दी राखी लई हर संभव यतन कर रही है। बीते कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं अते उस तों पहलां पंजाब विधानसभा विच बोलदिआं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि करीब 1500 विद्यार्थी चल रहे संकट तों प्रभावित होए ने अते पंजाब सरकार उन्हां दीआं चिंतावां नूं बेहतर ढंग नाल समझण अते उन्हां दी सहायता प्रभावशाली कदम चुकण लई स्थिति ते नेड़े नजर रख रही है। डॉ. रवजोत सिंह ने यह भी कहा कि वड्डी गिणती विच प्रभावित विद्यार्थियों ने सहायता लई सीधे तौर ते उन्हां कोल पहुंच कीती है। उन्हां कहा कि बहुत सारे विद्यार्थी पहला ही कैनेडा दी संघी अदालत सामने कानूनी कार्रवाई शुरू कर चुके ने, जेकर लोड़ पई तां पंजाब सरकार ढुकवे कानूनी सलाहकार नूं शामिल करके प्रभावित विद्यार्थियों लई सांझे कानूनी प्रतिनिधता दी सहूलत दी संभावना दी भी पड़चोल करेगी जिस नाल उन्हां ते माली बोझ घटेगा। भारतीय भुगतान कौंसल ने कहा है कि UPI राही किए जाने वाले डिजिटल भुगतान खपतकारां लई मुफ्त रहेंगे। व्यापारियों ते डिजिटल भुगतान स्वीकार करने लई भी कोई फीस

0: नहीं ली जाएगी। कौंसल ने स्पष्ट किया है कि खपतकारा नूं व्यापारियों ते भुगतान सेवा मुहैया करन वाले विचकार कोई व्यापारक फीस अदा करन दी कोई लोड़ नहीं होगी। यूपीआई की वरतों करके लैण देण लई खर्चियां दीआं खबरां ने खपतकारा ते छोटे दुकानदारा विच चिंता पैदा कर दित्ती सी। इस उलझन नूं दूर करदे होए भारतीय भुगतान कौंसल सीसीआई ने स्पष्ट किया कि यूपीआई सेवावां गाहकां लई पूरी तरह मुफ्त रहणगीआं। इस दे नाल ही प्रादेशिक खबरां खत्म होईआं। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुणोगे दोपहर बाद 1:40 ते। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं लोफर फिल्म के गीत से। आवाज है लता मंगेशकर की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कालीचरण फिल्म में लता मंगेशकर को।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं धर्मवीर फिल्म में मोहम्मद रफी को। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास।
2: HPTDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
0: HPTDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
2: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
0: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
2: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
0: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
3: अच्छा बच्चियों, तो हनु सारे नु पता है ना 10 अगस्त नु स्कूल आना क्यों जरूरी है?
4: हाँ जी मैडम जी, क्योंकि उस दिन पेट दे कीड़ियां तो राष्ट्रीय मुक्ति दिवस है। ते सानू आन दे कीड़ियां नु खत्म करन लई दवाई दित्ती जाएगी।
3: ते जेड़े बच्चे रह जानगे उना नु 17 अगस्त नु मॉपअप दिवस दे दिन दवाई दित्ती जाएगी।
4: अच्छा मैडम जी।
3: हाँ जी, दवाई दे नाल नाल आंत दे कीड़ियां तो बचन लई ध्यान रखो के खुले च कदी भी शौच ना जाओ। खाना खान तो पहला अते शौच जान तो बाद हमेशा हाथ साबण नाल धोवो। अपने हाथ दे नाखून छोटे रखो अते आस पास सफाई रखो। याद रखो, जेड़े बच्चे दे आंत विच कीड़े हुंदे ने ओ जो भी खांदा है उस दे शरीर नु नहीं लगदा, इस करके बच्चा कमजोर रह जांदा है। बच्चियो, ए सारियां गल्लां याद रहणगियां ना तुहानू?
4: हां जी मैडम जी।
5: आंत दे कीड़ियां तो छुटकारा, होवे सेहतमंद भविख साडा। नेशनल हेल्थ मिशन सेहत ते परिवार भलाई विभाग पंजाब वल्लों जनहित विच जारी।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
2: एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं, आज कार्यक्रम छूटता हुआ लग रहा था पर हमने छोड़ा नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लास्ट पीरियड कई बार बंक किया, प्रिंसिपल से डांट खाई और एक बार फिल्म देखी ठिकाना और पापा से भी डांट खाई। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि भागकर तो नहीं पर दोस्तों के साथ एक बार गई थी, मम्मी को फिल्मों का बहुत शौक है तो मम्मी और पड़ोस की चाची और बहनों और उनकी बेटियों, मतलब उन्होंने पूरी टोली का लिखा है कि इन सब के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टी के बाद मैं और मेरे दोस्त अपनी साइकिलें कॉलेज में ही छोड़कर पास के सिनेमा हॉल में नूरी फिल्म देखने चले गए थे, बाद में प्रिंसिपल ने हमें बहुत डांटा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ट्रेन से सफ़र करके कॉलेज जाते थे, एक दिन ट्रेन काफ़ी लेट पहुंची, बारिश भी बहुत थी, तब चिच्चोर फिल्म का बोर्ड एक जगह देखा था, मैं और मेरी सहेली फिल्म देखने चले गए लेकिन अंदर जाकर देखा कि अपने पराए फिल्म लगी थी, हमने जो है वो पुराना पोस्टर देख लिया था। तो ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की हैं और अब चूंकि माहौल उस तरह के गानों का है तो एक और गाना आ रहा है और हेमंत कुमार की ये आवाज़ पूरी दिल में उतर जाएगी। हेमंत कुमार की आवाज़ के बारे में अपनी राय, अपनी बात कहिए।

हेमंत कुमार की आवाज में अनुपमा फिल्म का ये गाना है। एक श्रोता लिखती हैं कि हेमंत कुमार की आवाज बिल्कुल अलग है, वो अच्छे गायक ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि कभी ये गाना शायद ही कभी मुझे भावनाओं से आंसुओं तक लाने में नाकाम रहता होगा, जब भी सुनते हैं आंखें भर आती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि इस गाने में धर्मेंद्र कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि हम स्कूल से भी सिनेमा घर ले जाए गए थे, बच्चों की फिल्म थी तो स्कूल ने हमें फिल्म दिखाने का फैसला किया था। इसके अलावा एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप कमेंट पढ़ने में सेंचुरी मार रहे हो भैया, शुक्रिया। एक और श्रोता है अनुपमा फिल्म का ये जो भावुक कर देने वाला गाना है, ये एक बात, और मेरे पिताजी का पसंदीदा गाना था, ये एक श्रोता की कमेंट है हेमंत की। हेमंता की आवाज़ में जैसे विषाद का स्वर घुला है, ये भी एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि कॉलेज से भागकर फिल्में देखना, ये तो मैं उस जमाने में सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए मुझे खुद बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाकर खर्चा निकालना होता था, इसलिए मैं अपनी क्लासेस कभी मिस नहीं करता था। बहुत ही सुंदर प्यारी बात आपने कही है भाई। आज यानी इस शनिवार 8 अगस्त के दिन हम बातें कर रहे हैं और पूरा एक हफ्ता 15 अगस्त को बचा है, तो चलिए बचपन की यादों की तरफ जाते हैं।

0: स्कूल के दिनों में 15 अगस्त की तैयारियां आप किस तरह से करते थे, ये जरूर बताइएगा। कुछ लोग होंगे जो नाटक तैयार करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो कविताएं और गाने तैयार करते होंगे। एक जमाना था स्कूलों में 15 अगस्त को जिस तरह से मनाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस को मनाने का बचपन का जो उत्साह है वो बहुत ही कमाल का रहा करता था। तो हम चाहते हैं कि आप वो यादें हमारे साथ बांटें। ठीक, एक हफ्ता बचाए 15 अगस्त के लिए और हम ये यादें बांट रहे हैं। तब तक चलते हैं त्रिशूल फिल्म के एक ऐसे गाने की तरफ जो बहस करता है कि मोहब्बत काम की चीज है या नहीं है। आप क्या कहते हैं, आपका मोहब्बत पर भरोसा है या नहीं है, या आप ये कहते हैं कि ये बेकार बेदाम की चीज है, या आप ये कहते हैं
1: ओ

SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.

0: प्रिंसिपल थी, इसलिए 15 अगस्त से काफी पहले गतिविधियां शुरू हो जाती थी। नाट्य गीत, नृत्य कहानी, सभी की प्रैक्टिस हुआ करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी ने मोहब्बत के बारे में इस गाने में अच्छा भी लिखा है और बुरा भी लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज आपको आना था और हमें बिल्कुल मिस नहीं करना था, बच्चे आ गए और हम थोड़ा बिजी हो गए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो अमिताभ बच्चन के पक्ष में हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ नहीं मिलती तब तक वो बड़ी अनमोल होती है, मिल जाने पर वो बेमोल हो जाती है। बचपन के 15 अगस्त की तैयारियां क्या खूब हुआ करती थी, कई दिनों पहले से ही मन में तिरंगा लहराने लगता था। स्कूल की सफाई, रंग बिरंगे कागजों से सजावट, प्रभात फेरी की तैयारी और हाथ में थामे छोटे से झंडे का गर्व, बिल्कुल अलग तरह का उत्साह होता था। एक और श्रोता, बचपन में 15 अगस्त की बड़ी भोर को अगल बगल के घरों से फूल तोड़कर जमा करके स्कूल ले जाते थे ताकि तिरंगे में बांधे जा सकें। राष्ट्रगान के पश्चात मैं वीर रस गाने में मूल गायन करता था, हेडमास्टर से शाबाशी मिलती थी। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो सवाल आपने पूछा है, बहुत उत्साह से तैयारी करते थे, आज भी याद है। अपना स्कूल ड्रेस, शूज सभी को धोकर तैयार करके हैंगर पर टांग कर रख देते थे, कब सुबह हो और जल्दी से तैयार होकर जाएं। और बूंदी के जो लड्डू मिलते थे, यूं लगता था कि खजाना मिल गया है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि 15 अगस्त को देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता होती थी और हम बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक और श्रोता कह रही हैं कि सुबह से इस गाने को याद कर रही थी पर यह याद नहीं आ रहा था। एक और श्रोता का कहना है कि 15 अगस्त के दिन नृत्य की प्रैक्टिस किया करते थे और मोतीचूर के लड्डू आज भी उन्हें याद आते हैं। इसके अलावा साहिर लुधियानवी के बोलों की तारीफ हमारे कई श्रोताओं ने कही है और इस गाने में एक ऐसी तपिश है जो दिल को पिघला देती है। एक और श्रोता शिकायत करती हैं कि भाई हर रोज़ हमारे काम करने का जो वक्त है वो मुकर्रर होता है, लेकिन जिस दिन आप आते हैं सुरीला सफ़र कार्यक्रम में, हमारा पूरा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। भाई माफ़ी चाहते हैं लेकिन सुरीला सफ़र में आना छोड़ नहीं सकते हम, आप अपना टाइम टेबल पूरी तरह से बिगाड़ कर रखिएगा और हम आते रहेंगे। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि हेमंत कुमार की आवाज़ गंभीरता और मिठास लिए हुए हैं और 15 अगस्त की तैयारियों के बारे में तो बस श्रोताओं के कमेंट लगातार चले आ रहे हैं और बहुत ही उमंग और उत्साह की बात। एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल अलग तरह का कमेंट लिखा है, वो कहते हैं कि बारिश और ठंडी ठंडी सुबह होती थी तो 15 अगस्त के दिन नहाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखिए ये क्या हुआ,
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ।
0: क्या आप आम जिंदगी में इस गाने का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से, कब, जरा हमें बताइए।

एक श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत ईश्वर का खूबसूरत तोहफा है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं, बस नीरसता रहेगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत एक सुंदर एहसास है जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मोहब्बत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मेरी तो माही

0: की इबारत में से उन्होंने बहुत सारा अंदाज़ा लगा रखा था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत बार जब सोचते कुछ और होता कुछ और है तो हम कहते हैं ये क्या हुआ। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब कोई चीज़ गुम जाती है तो मैं अक्सर गाता हूँ ये क्या हुआ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इस धरती के अनमोल रत्न से विभूषित किशोर कुमार, भाई किशोर कुमार की तारीफ करें। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ये क्या हुआ गाना बज रहा है, बादल छाए बस बारिश होने वाली है। एक और श्रोता एनसीसी में थी और वो कह रही हैं कि जो खाने का पैकेट मिलता था वो बहुत ही शानदार होता था। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई ये तो हमारा तकिया कलाम है, ये क्या हुआ जब तब हमारी जबान से ये निकल जाता है। और इसके अलावा कुछ और श्रोताएं 15 अगस्त की यादें, वो समूह गान, सब कुछ याद आ गया है। और एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे स्कूल में परेड होती थी और हजरतगंज तक पैदल ही हम सब परेड में भाग लेते थे। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत यादें अपनी बांटी हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि एक दिन पहले ही सुबह 3 बजे नींद खुल जाती थी कि कल बूंदी वाले लड्डू मिलेंगे। भाई हाईलाइट है ये, बूंदी वाले लड्डू जो हैं ये सबके लिए एकदम कॉमन बात है। कितनी सारी यादें श्रोताओं ने साझा की हैं। और अब देखिए क्या प्यारा गाना साहिर लुधियानवी का।
1: खुद पे
0: क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहृदयता, संवेदना कम होती जा रही है?

ये लिखती हैं कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, ये गाना जमाने की हकीकत को दर्शाता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज अगर संवेदना

कम होती चली जा रही है, तो उसकी एक वजह मोबाइल फोन है। और इसका एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि भाई सचमुच आज संवेदनाएं बहुत कम होती चली जा रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सहानुभूति होती तो है पर आज के लोग उसे व्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप में इतने गुम रहते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि आज का वक्त ऐसा है कि किसी को किसी के पास वक्त नहीं है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संवेदनाओं में 100% की कमी आई है। तो बहुत सारे श्रोता ये मानते हैं कि आज संवेदनाओं में लगातार कमी आती चली गई है। एक और श्रोता है जिन्होंने 15 अगस्त की सुहानी याद के बारे में अपनी बात ये लिखी है कि मैं कक्षा छठी में थी और मुझे भाषण देने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन उस दिन मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया और मैं तो रो पड़ी थी। भाई देखिए, ये भी एक याद जो है वो उभर कर सामने आ गई। एक बहुत ही जज्बाती गाना अब आपके लिए, आपको बताना है कि हमने ये किस फिल्म से लिया है।

लता मंगेशकर की आवाज बहू बेगम फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात पहचान ली है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज किसी की खुशी या परेशानी में रील बनाना लोगों को ज्यादा पसंद आता है। और इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आज लगातार जज्बात की कमी होती चली जा रही है। आखिरी गाना ये रहा मदन मोहन और लता मंगेशकर के कॉम्बिनेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये बताइए।

भाई आज के कार्यक्रम का वक्त यहीं खत्म हो रहा है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में साथ निभाया और सवालों के जवाब दिए, कमेंट्स किए, गाने सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन की इस भागदौड़ में जहाँ कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग बने रहिए, क्योंकि विविध भारती देश की सुरीली धड़कन है। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: त्रिवेणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 8 अगस्त की तारीख कैलेंडर की कोई आम तारीख लग सकती है, लेकिन भारत के इतिहास में ये तारीख सुनहरे अक्षरों से लिखी हुई है। भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था, क्रिप्स मिशन नाकाम हो चुका था, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन जारी था जहां महात्मा गांधी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इस तरह से भारत की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान। आज भी भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति की याद दिलाता है। जन जन में रोष था, आक्रोश था और ऊर्जा थी, बुलंदी थी कि किसी भी तरह से अब देश को आजाद करना ही है। मुंबई से जो लहर शुरू हुई थी उसने धीरे धीरे पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया। अब गांव-गांव, शहर-शहर बस एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर।

0: Durango, Durango, Durango, Durango.
1: भारत छोड़ो आंदोलन का सिनेमा पर क्या असर पड़ा, इसकी एक मिसाल ये गाना है जो अभी आपने सुना। कवि प्रदीप ने जब ये गाना लिखा तो उन्हें अंग्रेज सरकार ने तलब किया और आरोप लगाया कि ये गाना ब्रिटिश विरोधी गाना है, पर उन्होंने बड़ी चतुराई से तर्क दिया कि ये गाना ब्रिटिश विरोधी नहीं बल्कि ब्रिटिश समर्थक गाना है। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। टॉकीज़ों में फिल्म को रोक रोक कर नौजवान बार बार इस गाने को दिखाने का अनुरोध करते थे। ये गाना जनमानस पर छा गया था। पूरे देश में अंग्रेजों का बहिष्कार किया जा रहा था, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, बच्चे हों या नौजवान या बुजुर्ग। भारत के कोने कोने से लोग सड़क पर निकल आए थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर बस ये तय कर लिया था कि अंग्रेजों को खदेड़ कर ही दम लेंगे। और इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आजादी का आखिरी बड़ा आंदोलन बना, जिसने इस देश की बुनियाद रखी, जिसने इस देश को तरक्की के रास्ते पर लाया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आजादी बहुत ही मुश्किल से, त्याग से, बलिदान से और बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद हमें हासिल हुई है। इस आजादी का मोल हर पीढ़ी को समझना होगा।
2: हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना।

0: संभाल के।
1: कोई भी देश अपनी सीमाओं से नहीं बनता, अपनी ऐतिहासिक इमारतों से नहीं बनता, अपने इतिहास से भी नहीं बनता। देश बनता है जनमानस से, उसकी जनता से और उसकी जनता की चेतना से। अगर हम सचेत रहें, जागरूक रहें, देश के प्रति जिम्मेदार रहें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें, खासकर अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह करते रहें, तो ये माना जाएगा कि हम अपने आजादी का मोल समझ रहे हैं, हम अपनी आजादी की कीमत चुका रहे हैं, हम देश के प्रति अपनी निष्ठा को ठीक तरीके से निभा रहे हैं। हम बहुत छोटे छोटे काम बहुत निष्ठा के साथ कर सकते हैं।

जैसे हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बिजली और पानी को व्यर्थ ना जाने दें, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसे बहुत छोटे छोटे काम हैं जो हम करें तो देश के लिए एक बड़ा योगदान हो सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन की याद के इस दिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रति जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है।

8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और आज त्रिवेणी में हमने आपको याद दिलाया कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या है और ये आजादी इतनी अनमोल क्यों है। तो अब इजाजत दीजिए, यूनुस खान को नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा

0: हमारी संवाददाता से।
1: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
3: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार GI टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर

ने खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4

0: मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
2: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम्पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के 3rd दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2rd स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ 2rd दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। SH बिहारी के बोल ओपी ने फिल्म है ये रात फिर ना आएगी।

0: खुद से सुनी है, नहीं उदास बस ये।
1: गुलजार के बोल हेमंत कुमार की तर्ज, उन्हीं की आवाज, सन्नाटा फिल्म का ये गाना था। इससे पहले सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज थी, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर की तर्ज थी। एक आवाज जिसमें है जोश जुन...

मेरे साया फिल्म का ये गीत आपने सुना, आशा भोसले की आवाज में था। राजा मेहदी अली खां की बोल थी, मदन मोहन की तर्ज थी।

0: फिल्म का नाम था दुल्हन एक रात की। ये गाना अभी आपने सुना और ये आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश थी।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
2: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।

0: चाहेगी।
1: मन चाहेगी। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
0: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
0: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है मिस्टर नटवरलाल फिल्म के गाने से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें और फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी, पलोमा और डॉक्टर ईशानी। और ये चिट्ठी लखी श्रीवास्तव, दिशा, दिव्यांश और रूही की है, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा ये खत है चेतन शामतकर और ज्योति शामतकर और पुरुषोत्तम शामतकर का, उल्हासनगर से। और इसी गाने की फरमाइश करने वाले ये श्रोता हैं गुजरात भावनगर से राहुल ओझा, दीपल और ये नाम कुछ प्राप्तक ओझा जैसा कुछ नाम लिखा हुआ है। और ये कर्नाटक से चिट्ठी है चिन्ना तिरुपति से श्यामला, प्रकाश, अश्विनी, रमेश, आनंद और मनवित की। आप सभी सुनिए ये गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार। गीत आनंद बख्शी, संगीत राजेश रोशन।

कार्यक्रम का अगला गीत जमाने को दिखाना है फिल्म से है और इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने गाया है। आपको बता दें कि मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत आरडी बर्मन ने कंपोज किया और चिट्ठी लिखी घड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे संदीप अमूल्य और वैशाली बाठे ने। इसी गाने के लिए राजकोट से मधुसूदन भट्ट आरती जासमीन और प्रयागराज का खत है और ये चिट्ठी है रवि भाई सिसोदिया मुन्ना भाई सिसोदिया गीताबा सिसोदिया धर्मराज करणराज और पूरे सिसोदिया परिवार की केदारनाथ सोसाइटी से। वामन मगरे मराठवाड़ा नांदेड़ से इन्होंने चिट्ठी लिखी है और वारंगा फाटा जिला हिंगोली से कुंडलीक मोरे पांडुरंग मोरे अश्विनी मोरे और वैष्णवी मोरे ने चिट्ठी लिखी और दिलचस्प ये है कि केदारनाथ सोसाइटी वाले हमारे श्रोताओं ने अपना नाम नहीं लिखा, वो नाम अपने शहर का नाम लिखना भूल गए। आपके लिए ये गाना

विविध भारती पर आप मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और अब जो गाना आ रहा है उसके लिए आप सभी के खत मिले हैं। अल्लिया नगर केंड गांव से भाऊ साहिब नवथर अक्षय चंदन जय कुमार चंदन रुचिता चंदन और इनका परिवार। ये चिट्ठी है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक कुमार श्याम कुमार प्रमिला चीनू आसमा दीपक अनुश्री और पूरे श्याम कुंवर परिवार की और बहुत ही रंग बिरंगी चिट्ठी राजेश वाघमारे प्रिया वाघमारे रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे की जूना तारफेल अकोला महाराष्ट्र से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल नफीसा और ये पूरा परिवार हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गाने को सुनना चाहता है। उदयपुर से फरमाइश आई है अशरफ खान जब्बार मोहम्मद तजीब खान मंजू और निम्मी की। आप सभी की फरमाइश पर सौतन फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें गीत सावन कुमार संगीत उषा खन्ना।

0: बिल्कुल नहीं।
1: हाँ।
0: तेरी कसम आऊंगा।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम, और मनचाही गीत कार्यक्रम में देश भर से हमारे श्रोता लिखते हैं चिट्ठियां और इंतजार करते हैं अपनी चिट्ठियां शामिल होने का और अपने गानों का। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता, ग्राम खकल तहसील कौंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, अंशराज गुर्जर और इनका पूरा परिवार, रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और बाबू भाई महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं, और गणेश पेट पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या श्लोक और भैया, और ये श्रोता हैं सिंधी कैंप पक्की खोली अकोला महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा संतानी, नैन्सी संतानी और सुमित संतानी, ये सभी सुनना चाहते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है, फिल्म है मशाल।

और अब मंचाई गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बहू बेगम फिल्म का गीत साहिर लुधियानवी के बोल रोशन की तर्ज और आप सभी की फरमाइश है चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया और बीबी आरजू जाजोरिया वरुण जऊलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे निखिल साखरकर रोहित सुनीता अरविंद साखरकर और पूरा परिवार मालेगांव जिला वाशिम से और कबीर रेडियो श्रोत्रा संग बालोद छत्तीसगढ़ से डॉली बेबी पूजा तमूरिया राधिका प्रभा देवी अजय देव देव शंकर तुषार देव तमूरिया और इनका पूरा परिवार ये गाना आप सभी की फरमाइश पर फिल्म का नाम है बहू बेगम माशा भोसले और मोहम्मद रफी

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
2: मन चाहेगी।

0: ओफो केशव कहाँ चला गया? केशव केशव वो तीसरी घंटी हो गई और केशव से कहोगे अनाउंस करे। हाँ है ये लेकर कि तुम केशव ठाकर माइक्रोफोन तो ये रहा।
1: सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब, माइक रहा ऊंची करो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मीन नमस्कार देवियों और सज्जनों। हाँ तो नाट्य मंच अपने नए नाटक के प्रथम प्रदर्शन के अवसर पर आप सबका सहर्ष स्वागत करता है और आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है हास्य प्रधान नाटक किसी एक फूल का नाम लो। सज्जनों सज्जनों शांत, इसके लेखक हैं केशव ठाकर और निर्देशक जगन्नाथ पाठक। सज्जनों सज्जनों सुनिए सुनिए, कलाकारों का भूमिकाओं सहित परिचय इस प्रकार है। कांता कामनी देसाई, प्रमोद जगन्नाथ पाठक, भाभी स्वाति सोनी। सज्जनों शान और सुनिए, नंदलाल प्रीतम सोनी, निरंजन सुंदर देसाई और देश पांडे केशव ठाकर। हाँ सज्जनों, तो अब प्रस्तुत है नाट्य मंच का ये नाटक किसी एक फूल का नाम लो।

0: नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधु राय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। तो सुनिए नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग।
1: केशव केशव।

0: कांता मान लो कि
1: प्रबोध, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम अपनी जिद छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी,
0: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है। ओह कितनी देर हो गई।
1: दफ्तर जा रहे हो प्रमोद? जाओ।

0: हेलो, कौन? नंदलाल भाई? हाँ, मैं कांता बोल रही हूँ। सुनिए, प्रमोद आज फिर झगड़ा करके दफ्तर चला गया है। हाँ, आज रात अगर आप हमारे यहाँ आ सकें ज्योत्सना भाभी को लेकर तो ठीक रहेगा। हाँ, प्रमोद को खुद फोन करके बता दे, निरंजन को मैं बता दूंगी। अच्छा, रात को जरूर आइएगा। बाय।
1: कहो मेरी जान।
0: ओह, तुम आ गए निरंजन। आज रात को फैसला हो जाएगा। मैंने नंदलाल भाई और भाभी को बुलाया है।
1: सच मेरी कांता?
0: करते रहो कि फिर सब आ गए। आओ, सब आ जाओ। आज मेरी अर्थी उठ रही है, रोने वालों की जरूरत होगी। नंदलाल भाई आओ, ज्योत्सना भाभी आओ, निरंजन तुम भी आओ।
2: आखिर हुआ क्या कांता?
3: अरे नंदलाल, मैं बताती हूँ। असल में कांता और निरंजन
4: नहीं, ये बात झूठ है। हम प्रेमी नहीं है।
2: प्रमोद, तुम ये क्या टाइप कर रहे हो?
5: आज जहाँ दंगा होने वाला है नंदलाल भाई, उसी को खत्म करने के लिए मैंने अपना यह घोषणा पत्र तैयार किया है। तो सुनो, आई प्रमोद पटेल, हस्बैंड ऑफ माय मोस्ट बिलवड वाइफ कांता पटेल, मैडम नेम कांता गोस्वामी, डू हियर बाय डिक्लेयर।
3: अरे प्रमोद भाई सुनिए ना, मैं तुरंत अनुवाद कर सकती हूँ। लाइए अपना कागज, मुझे दीजिए, मैं पढ़ती हूँ।
5: ठीक है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
3: अच्छा, तो प्रमोद भाई कहते हैं, मैं प्रमोद पटेल, कांता पटेल का स्वामी, घोषणा करता हूँ कि मेरी किसी समय प्यारी पत्नी कांता मेरे विश्वास पात्र दोस्त निरंजन को चाहती है। इसलिए आज फला साल के फला महीने की फला तारीख को अपनी मर्जी से, अपनी अक्ल से, मैंने अपनी जान देने की घोषणा की है।

0: मुझसे सुनो मेरी घोषणा।
1: मैं प्रमोद पटेल अपनी सारी ताकत जुटाकर कांता के छिपाए हुए पिस्तौल से आत्महत्या करता हूँ। अलविदा अलविदा।
2: मुझे विश्वास हो गया है कि।
1: कैसा विश्वास?
2: कि तुम मुझे प्यार करते हो।
1: फिर भी मैं अपनी घोषणा पर अटल हूँ।
2: प्रमोद रुक जाओ।
1: दो।
2: इस पिस्तौल से मैं ही मरूंगी। लाओ पिस्तौल मुझे दो।
1: कांता ये पिस्तौल मुझे दो। तुम्हारा संसार उजड़ने के पहले मैं ही इस पिस्तौल से।
2: खबरदार निरंजन, तुम मेरे जीवन में तो आए पर अब मेरे और मेरे पति के बीच में मत आना वरना अभी इस पिस्तौल से।
1: ठीक है पहले मुझे मार डालो, मेरी दुखी आत्मा को शांति दो। कांता कांता मुझे गोली मार दो वरना मैं तुम्हारे हाथ से पिस्तौल लेकर आत्महत्या कर लूंगा।
2: सच तुम मुझे इतना प्यार करते हो निरंजन?
1: कांता कांता तुम मुझे ही मार डालो, मुझे ही मार डालो या पिस्तौल मुझे दो, मैं अपने आप ही मर जाऊंगा। तुम दोनों प्रेमी जियो और खुश रहो।
3: सुनो प्रमोद, तुम्हारी पत्नी यदि दूसरे को चाहती है तो इसमें मरने की कोई जरूरत नहीं। मुझसे शादी करने से पहले मेरी इस पत्नी ज्योत्सना को किसी दूसरे से प्यार था।
4: हैं? नंदलाल, इस रहस्य का तुम्हें पता था?
3: तुम्हारा प्रेमी देश पांडे थोड़े दिन हुए वो मेरे पास आया था पैसों के लिए।
0: कैसे पैसे?
3: ब्लैकमेल के पैसे।
4: लेकिन ब्लैकमेल किस लिए?
3: उसके पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं।
4: है?
0: कितने रुपए मांगता है वो?
3: सौदा आज पक्का होगा, वो आता ही होगा यहाँ।
0: यहाँ?
3: हाँ, मैंने देश पांडे को यही का पता दिया है और अब प्रमोद कांता और निरंजन तीनों से मेरी प्रार्थना है देश पांडे यही आ रहा है। तुम में से जो भी मरना चाहता है वो उसे मारने के बाद मरे तो मैं उसका एहसान मानूंगा।
1: प्रमोद तुम्हारा इरादा मुझे मारने का हो तो रुक जाओ, मैं देश पांडे का खून करूंगा और इस तरह फांसी पर लटक कर तुम्हारी और नंदलाल की दुनिया आबाद कर जाऊंगा।
0: शायद देश पांडे आ गया, मैं दरवाजा खोलता।
2: नहीं तुम यहीं रुको प्रमोद, तुम्हारा शायद भागने का इरादा है, दरवाजा मैं ही खोलूंगी।
4: कांता अपना पिस्तौल मुझे देती जाओ, उस चांडाल का मैं खून करूंगी।
1: ये मेरा घर, मैं ही उसका खून करूंगा। तुम्हें करना हो तो उसे अपने घर ले जाओ।
0: लो वो आ गया।
5: आप सबको नमस्कार, माफ कीजिए, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन।
3: गुड इवनिंग मिस्टर देश पांडे। ये सब मेरे मित्र हैं। ज्योत्सना तुम तो इन्हें मिस्टर देश पांडे को जानती हो?
4: हाँ हाँ।
3: और प्रमोद कांता निरंजन ये हैं मिस्टर देश पांडे जिनका खून कौन करे इस बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। हैं? सब लोग एक पंक्ति में क्यों बैठ गए?
1: आखिर बात क्या है नंदलाल?
3: तुम्हें नहीं, मैं इस थिएटर हॉल में बैठे हुए दर्शकों को सब बताता हूं। देवियों और सज्जनों, अभी थोड़ी देर पहले प्रमोद कांता और निरंजन एक दूसरे के लिए आत्महत्या करना चाहते थे, एक दूसरे से अपना खून कराने के लिए जोर दे रहे थे और अब सवाल है मिस्टर देश पांडे के खून का। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि ये रहस्य नाटक है, इस नाटक के सभी पात्र यहां मौजूद हैं। आप विद्वानों में से कोई भी ये बता दे कि किसका खून होगा और कौन खून करेगा तो उसकी अक्ल की मैं दाद दूंगा। आपको बस इतना बता दूं कि खून इनमें से ही किसी एक का होने वाला है और इनमें से ही कोई करेगा भी।
4: नंदलाल मेरे हाथ में ये पिस्तौल देख रहे हो ना, मैं तुम्हारी तिकड़मों से तंग आ चुकी हूँ। अरे हम सबको कठपुतली की तरह नचाने वाले, मैं तुम्हारा खून करती हूँ।
3: अरे ज्योत्सना ये क्या कर रही हो?
4: भाभी
3: ये पिस्तौल असल है,
4: मेरे पास
3: असली
4: दो।
2: भाभी ये पिस्तौल मुझे दो।
4: अरे ये क्या कर रही हो तुम?
2: हट जाओ भाभी। शेखर खोसला, शेखर खोसला,
6: खून
2: खोसला
7: कौन था?
8: गोली चलने वाली वो एक्टर।

0: अरे वो लड़की मशहूर है फिर कामनी देसाई थी, कामनी देसाई।
1: कामनी देसाई?
0: हाँ।
1: अरे अरे अरे अरे वो कांता कर वो जो कर रही थी भाई।
2: बोले
3: मैं सच कहूंगा, पूरा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
2: आपका नाम? उम्र? काम?
3: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, उम्र 33 साल, काम नाटकों में अभिनय करना।
2: सरकारी वकील अब दवा से गिरा कर सकते हैं।
4: थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर पाठक, आप मुलजिमा कामिनी देसाई को जानते हैं?
3: जी हाँ, हमने कई नाटकों में एक साथ अभिनय किया है।
4: कुछ और?
3: मतलब?
4: कामिनी देसाई आपकी प्रेमिका है?
3: जी जी हाँ, कामिनी देसाई मेरी प्रेमिका है।
4: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, क्या यह भी सही है कि आप दोनों अगले महीने की 15 तारीख को शादी करने वाले थे?
3: जी जी हाँ।
4: 15 को ही क्यों?
3: वो हम लोग एक नया नाटक तैयार कर रहे थे और उम्मीद थी कि नाटक सफल होगा और उसकी आमदनी में से हम हनीमून के लिए कुछ पैसे बचा सकेंगे।
4: ये नाटक कब हुआ?
3: पिछले महीने की 1 तारीख को।
4: नाटक का नाम क्या था?
3: किसी एक फूल का नाम लो।
4: उस नाटक में आप दोनों के अलावा और किन किन लोगों ने काम किया था?
3: प्रीतम सोनी, स्वाति सोनी, सुंदर देसाई और
5: केशव ठाकर का नाम लेते लेते रुक क्यों गए? उसके नाम को लेकर उस दिन कामनी से तुम्हारी जो बातचीत हुई थी वो क्या भूल गए हो?
6: हम दोनों प्रीतम, स्वाति और सुंदर, ये तो नाटक के पात्र पक्के हो गए, लेकिन छठे पात्र के लिए कोई नहीं मिल रहा।
3: छठे पात्र के लिए सुनो, छठे पात्र के लिए केशव ठाकर।
6: केशव ठाकर? वो लेखक?
3: इसमें हंसने की क्या बात है, छोटा सा रोल है, बहुत मजा आएगा। हाँ,
6: सुंदर से पूछ ले।
3: आता ही होगा सुंदर भी।
7: जी, मेरा नाम सुंदर देसाई, उम्र 30 साल, काम नाटकों में अभिनय करना। मुलजिमा कामनी देसाई, उसको मैं जन्म से जानता हूँ सर। हम सब नाटकों में काम करते हैं। किसी एक फूल का नाम लो नाटक में हम सब ने काम किया था। कामनी देसाई मेरी सगी बहन है सर, सगी बहन।
4: आप दोनों साथ रहते हैं?
7: जी हाँ, मैं, कामनी और मेरी माँ तीनों साथ रहते हैं।
4: तीनों साथ रहते हैं? कामिनी ने जिसका खून किया उसके बारे में आप क्या जानते हैं?
7: जी नहीं, उसके बारे में मैं पहले कुछ नहीं जानता था। उसके मरने के बाद जाना कि उसका नाम शेखर खोसला था और वो किसी बड़ी फर्म का मालिक था।
4: उस नाटक में हत्या की घटना थी और उसमें एक पिस्तौल की जरूरत थी, ठीक है?
7: जी हाँ, लेकिन पिस्तौल में गोली नकली भरनी थी।
4: जगन्नाथ पाठक और कामनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये आप जानते हैं?
7: जी हाँ, पाठक मेरा पुराना दोस्त है, हमने बहुत से नाटकों में एक साथ काम किया है। कामनी और पाठक ज्यादातर नायक नायिका का काम करते थे और जाहिर है।
5: सच सच कह दूं ना कि तुम्हें अपनी बहन कामनी और पाठक की शादी की बात पसंद नहीं थी?
7: जाहिर है, तुम दोनों में प्यार है और तुम शादी करोगे।
6: सुंदर, पाठक का कहना है कि मेरा इससे शादी करना तुम्हें पसंद ना होगा।
7: बिल्कुल पसंद नहीं होगा।
8: सुन लिया कामनी?
7: अरे वो तुम्हारा प्रीतम लाल नहीं आया?
8: तुम उसे प्रीतम लाल क्यों कहते हो?
9: अरे लगता है प्रीतम सोनी आ रहा है।
6: लेकिन वो

0: अकेला ही आ रहा है?
1: प्रीतम, स्वाति सोने कहाँ है?
2: आती होगी, वो सीधी आने वाली थी।
3: अजी, स्वाति जरूर आएगी ना।
4: सुंदर,
3: अरे पाठक यार, डांटते क्यों हो? मान लिया तुम इस नाटक के डायरेक्टर हो, लेकिन
1: रिहर्सल में अनुशासन जरूरी है। I want discipline, I say.
3: अरे यार, मैं स्वाति से शादी का प्रस्ताव नहीं करने वाला हूँ।
5: जी, मेरा नाम प्रीतम लाल, कंचनलाल सोनी, उम्र 42 साल, काम अभिनय। जी, कामनी को मैं 7-8 साल से जानता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मरने वाला कौन था। मेरा ख्याल है कामनी पाठक के प्यार में।
1: आपने ये कैसे मान लिया?
5: कामनी ने मुझसे कहा था कि पाठक उससे शादी नहीं करेगा तो वो आत्महत्या कर लेगी।
1: अच्छा, पिस्तौल चलाने की बात नाटक में लिखी हुई है क्या?
5: जी हाँ, नाटक में नंदलाल ये कहता है कि
1: मिस्टर प्रीतम, अच्छा ये बतलाइए कि पिस्तौल में असली गोली कैसे आई?
5: जी जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कामनी भोली होने के कारण कई बार उत्तेजित होती, पर किसी को उससे बैर हो या उसे किसी से बैर हो, ये नहीं माना जा सकता।
1: आपकी पत्नी स्वाति सोनी और
5: जी
6: मैं स्वाति सोनी हूँ। पति का नाम प्रीतम सोनी, उम्र 37 साल, व्यवसाय गृहिणी का, और कभी कभी अपने पति प्रीतम के साथ नाटक में काम करने का। कामनी मेरी पक्की सहेली है। लगता है किसी ने उसे फंसाया है। मैं तो मान भी नहीं सकती कि उसने ऐसा किया होगा। इसमें जरूर कोई धोखा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती।
7: रोने की जरूरत नहीं। सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए। क्या ये सच है कि कामिनी और पाठक के बीच प्यार था?
6: जी हाँ।
1: कामिनी को किसी और से भी प्यार था?
6: जी हाँ।
1: हाँ या ना?
6: जी, इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकूंगी।
7: क्या मतलब?
6: कामिनी एक सफल अभिनेत्री है, उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं, वो एक भावुक स्त्री है, और स्त्री का हृदय।
1: बस बस, ठीक से सोचकर जवाब दीजिए। आप बता सकती हैं पाठक और कामिनी की शादी करने पर क्या किसी को एतराज था? पाठक की कामिनी के सिवाय कोई दूसरी प्रेमिका थी या नहीं, और कामिनी का पाठक के सिवाय कोई दूसरा प्रेमी था या नहीं?
6: मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ।
1: याद रखिए, आपने हल्फ उठाया है।
6: हाँ, जानती हूँ, मैंने हल्फ उठाया है, पर मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कह सकती।
1: एक सवाल, आप मृत शेखर खोसला के बारे में कुछ जानती हैं?
6: जी नहीं, मैं शेखर खोसला या किसी के बारे में कुछ नहीं जानती।
1: आप कुछ छुपा रहे हैं।
6: आप क्या कहना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? मुझसे क्या कबूल करवाना चाहते हैं आप?
8: कामनी जी भाई, सुंदर के साथ तुम्हारा जो संबंध है वो कबूल कर लो ना। अपने पति प्रीतम से छिप छिप कर उससे मिलती हो और कहती हो कि
9: सुंदर, तुम बेकार इतनी कड़वाहट लाते हो, हमें कभी मुश्किल से तो ऐसा ही कौन मिलता है।
3: ये तुम सोचती हो प्रीतम को पता नहीं चलेगा?
9: प्रीतम बहुत सीधा है, उसने मुझसे कभी कुछ भी नहीं पूछा।
8: लेकिन कोई और जानता है।
3: कोई और जानता है? कौन?
8: केशव ठाकर,
3: वो बुद्धू लेखक।
9: हाँ, वो बुद्धू लेखक, वो मूर्ख बना फिरता है, शायद है भी, लेकिन उसकी नजर बड़ी तेज है।
10: जी, मेरा नाम केशव ठाकर नहीं, मेरा मतलब है केशव लाल पुरुषोत्तम ठाकर, पेशा नाट्य लेखन।
1: तो आपने उस नाटक में देशपांडे का पाठ किया?
10: जी हाँ, मैंने देशपांडे का पाठ किया।
1: आप किस नाटक मंडली के लोगों से जान पहचान कैसे हुई?
10: वो बात यह है कि वो सुंदर देसाई है ना, उसके साथ एक बार अचानक मुलाकात हो गई थी। जी हाँ।

0: वही मुझे अपनी मंडली में ले गया।
1: अच्छा वो नाटक किसी एक फूल का नाम लो आपने लिखा था?
0: जहाँ जहाँ मैंने लिखा था।
1: उसमें पिस्तौल की जरूरत थी?
0: जहाँ जहाँ।
1: आप कामिनी देसाई के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो इस खून के मसले पर रोशनी डाल सके?
0: वकील साहब अजी आप सवाल पूछिए मैं जवाब दूंगा।
1: कामिनी देसाई का पाठक के सिवा कोई दूसरा प्रेमी भी था?
0: जी
1: मैं पूछ रहा हूँ कामिनी का कोई दूसरा प्रेमी भी था?
0: जहाँ जहाँ उसका एक दूसरा प्रेमी भी था।
2: तो अब ये भी बता दो कि कैसे तुमने कामनी के ही कारण नाटक लिखा, कैसे कामनी के निकट रहने के लिए तुमने उस नाटक में छोटा सा पार्ट करना स्वीकार किया, और कैसे नाटक के रिहर्सल में तुम हर तरह का अपमान सह लेते थे, और उस दिन रिहर्सल में कामनी को सम्मुख पाकर तुम इतने नर्वस हुए कि सिगरेट का जलता हुआ सिरा मुंह में डाल दिया और मुंह चला लिया।
3: तुम कामनी को ये दीवानों की तरह दिखो रहे?
0: कुछ नहीं कुछ नहीं, वो जरा
4: अनशन हो गया।
3: अच्छा ठीक है ठीक है,
5: ये पाठक भी आज कुछ
3: बस बस आप रिहर्सल शुरू करें। कामनी तुम ठाकर के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई? इसके कंधे पर हाथ रखकर क्या कह रही हो? उससे
6: कह रही हूँ पाठक क्यों बेकार ईर्ष्या करते हो?
3: स्टॉप इट।
6: रिहर्सल शुरू करो ना, तुम प्रमोद का डायलॉग बोलो तो मैं कांता का डायलॉग बोलूं।
3: कांता मान लो
6: मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्रमोद तुम अपनी सीट छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी।
3: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है।
0: जी जी हाँ, कामनी का दूसरा प्रेमी था, और वो मैं खुद था, यानी केशवलाल पुरुषोत्तम ठाकर।
1: कामिनी भी आपसे प्रेम करती थी?
0: जी जी नहीं, वो तो मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन मैं मनी मन उससे प्रेम करता था और अब भी करता हूँ। कामनी जी जमीन पर चले उसे मैं चूमने को तैयार हूँ, और जो वो कहे।
1: मतलब आप मन ही मन कामिनी से प्रेम करते थे?
0: जी जी हाँ, और उसके सामने मैं नर्वस आ जाता, यानी कि घबरा जाता।
1: अच्छा मरने वाले के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?
0: जी उसका नाम शेखर खोसला था।
1: सवाल ये है कि शेखर खोसला के बारे में आपके पास कोई खास जानकारी है?
0: आज देखिए ना वकील साहब, इस दुनिया में कौन किसी को जान सका है?
3: हाँ या ना में जवाब दीजिए।
0: किस बात का जवाब?
1: शेखर खोसला को आप उसकी मौत से पहले जानते थे?
0: अजी इंसान को देखिए ना, दो तरह से जाना जाता है, एक उसे प्यार करके और दूसरे उससे नफरत करके। भाई हमारी जानकारी हमारी समझ से बनती है। अजी मैं तो न तो शेखर खोसला से प्यार करता था न नफरत।
3: बेकार की बात मत कीजिए।
1: अगर सीधा जवाब न दिया तो अदालत के अपमान के जुर्म में सजा होगी, और झूठा जवाब दिया तो जेल।
0: अब देखिए वकील साहब, आप तो खामखा डरवा रहे हैं। अजी क्या सच क्या झूठ इसका फैसला कर सकूं? जी इतना विद्वान तो मैं नहीं।
1: आप शेखर खोसला को जानते थे?
0: जी,
1: हाँ या ना?
0: जी जी कुछ नहीं याद नहीं।
1: याद कीजिए, आपने उसे 1000 रुपए दिए थे, ये सच है?
0: जी क्या बात करते हैं वकील साहब, जी बहुत लोगों ने मुझे कई बार 1000 रुपए दे दिए होंगे। अब देखिए ना, अब उस सब का हिसाब तो मुझे याद नहीं।
1: ठीक, दूसरा सवाल, नाटक में जिस पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ और जिससे खून हुआ उसमें असली गोली किसने भरी थी, आप बता सकते हैं?
0: जी नहीं।
1: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
0: कुछ नहीं।
1: ठीक से याद कीजिए।
0: जी वो जी मेरी याददाश्त कुछ अच्छी नहीं।
1: ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला से आपने 1000 रुपए लिए और ये नाटक लिखा जिसमें शेखर खोसला का खून हुआ। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था? मिस्टर केशव ठाकर चुप क्यों है, बताइए शेखर खोसला कौन था?
2: छिपा क्यों रहे हो? बता दो ना। अच्छा तो तुम कामनी और पाठक की वो बात बता दो

0: दिन तुमने ओट में छिपकर सुनी थी, किस दिन? मैं तो प्राय रोज ही छिपकर कामनी को देखा करता था।
1: अरे उस दिन रिहर्सल के बाद जब तुम कामनी से मिले थे और फिर ओट में छिप गए थे।
2: कामनी, रिहर्सल के बाद केशव ठाकुर तुमसे क्या कह रहा था?
3: कुछ भी तो नहीं कुछ भी तो नहीं, बेचारा सिर्फ बॉडम है, मेरी तारीफ कर रहा था।
2: सच बताओ कामनी।
3: पाठक, कितने शक्की हो तुम। तुम सोचते हो मैं उस फंटूश को प्यार करती हूँ।
2: नहीं, लेकिन लेकिन ये जरूर सोचता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो।
3: मान लो छिपा रही हूँ, फिर
2: तो फिर हमारे संबंध का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, सीधी सादी बात।
3: धमकी देते हो?
2: सफाई चाहता हूँ।
3: कैसी सफाई? ओह, इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। शक्की अंधे फोंदू पति की तरह पूछे जा रहे हो। फिर भी मैं तुम्हारी कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी झूठी कसम खा ही नहीं सकती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
2: यानी कि तुम कुछ छिपा रही हो?
3: हाँ, मैं कुछ छिपा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकती। विश्वास कर सको तो करो कि जो कुछ मैं छिपा रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है, धोखा देने के इरादे से नहीं।
2: यह चरित्र की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं कि तुम जो छिपा रही हो वो चाहे जितना भी डरावना क्यों ना हो, मैं उसे छेड़ लूंगा। ऐसा क्यों समझते हो कि मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं रहूंगा?
4: मिस्टर केशव ठाकुर
1: जी,
4: क्या सोच रहे हैं बताइए। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था?
1: जी जी, वो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा वकील साहब। मेरा मतलब है, शेखर खोसला के बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
5: सरकारी वकील अपनी जिरह बंद करें, अब अदालत खुद पांचों गवाहों से सवाल करेगी। केशव ठाकुर
1: जी,
5: शेखर खोसला कौन था?
1: जी जी, कहा ना हुजूर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
5: स्वाति सोनी, शेखर खोसला कौन था?
3: जी जी, कैसे समझाऊं आपको, मैं कैसे समझाऊं एक स्त्री के दिल की बात, मैं कैसे कहूं शेखर खोसला कौन था? मैं शेखर खोसला को जानती हूँ, या कि शेखर खोसला को नहीं जानती।
5: प्रीतम सोनी, शेखर खोसला कौन था?
6: जी जी जी नहीं, मैं शेखर खोसला को नहीं जानता। इसके बारे में मुझे मुझे कुछ पता नहीं।
5: सुंदर देसाई, आपकी बहन कामनी जिसका खून किया, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं?
6: जी जी, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बात ये थी सर कि थिएटर हॉल में औरों की तरह वो भी निमंत्रित था, और निमंत्रण पत्र उसी संस्था ने भेजे थे जिसने हमें नाटक खेलने के लिए बुलाया था। मैं इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
5: जगन्नाथ पाठक, शेखर खोसला के बारे में क्या आप जानते हैं?
6: जी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
7: किसी एक फूल का नाम लो, इस नाटक का पहला भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी, प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की थी। इस नाटक का दूसरा भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।
2: प्रेम

0: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान, इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, आज स्वागत कर रहे हैं हम सभी उनका, जिनके इशारों पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे थिरके हैं। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, महेश बाबू, आयुष्मान खुराना, अनुपम खेर और लगभग 30 से अधिक दिग्गज अभिनेताओं को अपनी कोरियोग्राफी से नया अंदाज देने वाली, वहीं माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, जूही चावला, अमीषा पटेल, अंतरा माली और अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के यादगार गीतों को अपनी कल्पना और सृजनशीलता से जीवंत बनाने वाली बड़ी प्यारी सी कोरियोग्राफर। आज की बातचीत केवल फिल्मों तक नहीं, आज हम जानेंगे एक कलाकार के संघर्ष की कहानी, सफलता के पीछे छिपी मेहनत, शूटिंग के अनसुने किस्से और सितारों के साथ काम करने का अनुभव और उस सफर को जिसने इन्हें भारतीय फिल्म जगत के अग्रणी कोरियोग्राफरों में स्थापित किया है। चलिए बिना किसी देर के विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में पूरे आत्मीय स्वागत और हार्दिक अभिनंदन के साथ हिंदी फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध, सम्मानित और बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
1: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
2: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
1: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो ये जो कोरियोग्राफी है या डांस का चस्का जिसे कहते हैं, ये लगा कब, ऐसा कब मन हुआ कि अब मुझे कर लेना चाहिए?
2: सो बेसिकली चस्का तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि जिस उम्र में मैंने काम शुरू किया
1: जी,
2: उसमें हमें चस्के नहीं पता चलते हैं। अच्छा। बहुत छोटी थी मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रही थी।
1: ओके।
2: तो हुआ यूं कि घर की जरूरतें होती है ना, तो उस उम्र से ही मुझे एहसास बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे एहसास, मोहब्बत, प्यार, तबीयत, इसकी बहुत वैल्यू है। तो वो वैल्यू में एहसास हुआ कि घर में जरूरत है। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होती थी एक मधुमती एकेडमी। मधुमति जी वो है जो हेलन जैसी लगती थी, सोलो डांस करती
1: जी,
2: थी
1: जी, जी,
2: उनके हस्बैंड और वो सिखाते थे। वहाँ पे एक छोटा सा काम कर रही थी मैं उस उम्र में।
1: क्या उम्र होगी वो? लगभग
2: 7th स्टैंडर्ड में होंगी। तो मेरी बहन और मैं, हम दोनों घर में बहुत डांस करते थे। बिल्डिंग में 31st नाइट में जब प्रोग्राम्स होते थे तो हम दोनों को बुलाते थे। अच्छा, कि आप कंपटीशन में आ जाओ। तो मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा चंचल थी और वो हमेशा से चाइल्ड आर्टिस्ट स्टेज पे काम करती थी। मैं पढ़ रही थी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी।
1: अच्छा।
2: तो जरूरत तब हुई जब लगा के फीस भरना है, छोटे भाई बहन है, हम 5 भाई बहन है, तो लगा कि चलो कुछ काम भी किया जाए। ट्यूशन देती थी, फिर लगा कि अच्छा डांस अच्छा करते, तो मधुमती मैम ने देखा और मम्मी से कहा कि आप छोड़ो अपनी बेटियों को, मैं उनको सिखाती हूँ।
1: अच्छा, और वहाँ
2: पे मैं, हाँ, एक हाथ मिल गया। और वहाँ पे मैं उर्दू डिक्शन सिखाने लगी अंकल के साथ बैठ के। उनके जो शौहर थे वो पुराने एक्टर थे बहुत बड़े, तो वो उर्दू सिखाते थे सारे बच्चों को। तो मैं उनके साथ डिक्शन, क्योंकि हमारे घर में एक चलन है कि उर्दू सिखाया जाता है, तो वो मैं सिखा रही थी उनके साथ। एक्टिंग भी सिखाने लगी वो हमें। अम्मी को बुला के एक दिन बोला कि तुम्हारी बेटियां बहुत टैलेंटेड है।
1: अच्छा।
2: तो मैं इनको एक्टिंग भी सिखा रही हूँ। अम्मी ने कहा कि ठीक है मैम, अपने साथ रख के आप देखिए कैसे। तो स्कूल के बाद हम 2-3 घंटे वहां जाते थे और पता नहीं था कि वो चीज कब जाके जिंदगी में काम आ जाएगी। अम्मी हमेशा सिखाती थी कि बेटा जिंदगी का एक फ्लो होता है, जो ऊपर वाले की मर्जी है वो फ्लो चलता है, फ्लो के साथ चलो
1: जी।
2: और एक हमारी तरबियत को नहीं भूलना है।
1: क्या बात,
2: अपनी तरबियत जो मैंने तुम्हें दी है उसको हाथ में रख के आपने काम करना है।
1: मतलब नदी जैसे बाहर ये बहते जाओ, लेकिन अपने जो उसूल हैं उनको छोड़ना नहीं है।
2: जी, बिल्कुल,
1: बहुत बढ़िया बात।
2: बहुत ज्यादा ऊपर जाके छलकना भी नहीं है कि पानी तुम्हारा सूखी घास में

0: मिलके वहाँ चला जाए,
1: जी
0: समेटते हुए आगे बढ़ना है। उनकी तरबियत है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। वहाँ से फिर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से स्टेज शोज़ के ऑफ़र आने लगे, तो गणेश हेगड़े जी
1: जी
0: जो बहुत
1: बहुत
0: बड़े
1: बढ़िया
0: कोरियोग्राफर है,
1: कोरियोग्राफर
0: उन्होंने
1: हैं।
0: मुझे और मेरी बहन को लॉलीपॉप गणेश
1: हाँ
0: हेगड़े, ये उस वक्त के दिग्गज स्टेज
1: बिल्कुल
0: के कोरियोग्राफर्स हैं,
1: जी
0: तो पता चला कि एक शो किया जाएगा तो हमें इतना अमाउंट मिलेगा। तो
1: हाँ,
0: अम्मी मेरी
1: तो
0: हमेशा साथ होती थी।
1: अमाउंट के लालच में आप काम
0: अमाउंट ये
1: कीजिए।
0: था हाँ कि एक इतना अमाउंट आएगा, तो दिमाग सोचने लगा कि
1: हाँ
0: अगर ये पैसा आता है तो महीना गुजर जाएगा। तो मधुमति मैम
1: कैलकुलेशंस
0: ने,
1: चालू हो
0: हाँ
1: गए।
0: मधुमति मैम ने बोला बेटा करो, बुरा नहीं है।
1: हाँ
0: अम्मी को बोला कि आप साथ रहो बच्चों के,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो एक सिलसिला शुरू हुआ वहाँ से। और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी,
1: तो आप उस
0: मुझे
1: समय बैकग्राउंड डांसर्स के फॉर्म में
0: नहीं
1: कर रही
0: बिल्कुल
1: थी
0: नहीं
1: या लीड डांसर्स थी?
0: नहीं मैं स्टेज पे डांस कर रही थी उनके ट्रुप के साथ। तो
1: अच्छा
0: उनके अपने अपने ट्रुप होते थे, तो
1: जी
0: पहले गणेश हेगड़े लॉलीपॉप इन्हीं का ट्रुप चलता था।
1: जी
0: उनके एक ट्रुप में 8 लड़कियां 12 लड़कियां ऐसे होती है। उसमें मेरे परफॉर्मेंस बेसिस पे मुझे जल्दी चांस मिल गया। पोनी वर्मा उनकी मेन असिस्टेंट होती थी जो अभी कोरियोग्राफर है,
1: जी
0: तो पोनी वर्मा ने यू नो शी गॉट इन्वॉल्व एंड शी गॉट मी। तो स्टेज शुरू हुआ, स्टेज से वो रास्ता मिलने लगा। गणेश आचार्य जी ने देखा मुझे डांस करते हुए कि लड़की तो एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि एक्टिंग बैकग्राउंड से आती थी मैं, तो ग्रेस और क्लासिकल डांस सीखो तो आपको एक ग्रेस अलग लेवल का मिलता है।
1: वो चीज़ हम अभी भी देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, जब आप डांसेस डालती हैं तो
0: हाँ
1: चेहरा अलग
0: तो
1: दिखता है,
0: क्योंकि आप
1: चमकता हुआ।
0: क्लासिकल डांस सीख के आते हो, जैसे क्लासिकल सिंगिंग भी उतनी ही, जो क्लासिकल सिंगिंग सीख के आते हैं वो एक अलग लेवल के सिंगर बनते हैं,
1: जी
0: उसी तरह आप जब क्लासिकल डांस सीख कर आते हो तो आपके परफॉर्मेंस की लेवल अलग हो जाती है। और फिर मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हूँ
1: जी
0: तो एक्टर मेरे अंदर घुसा हुआ है
1: घुसा
0: बचपन
1: हुआ
0: से,
1: जी।
0: तो वो जो एक एबिलिटी है मेरी एक्टिंग और क्लासिकल डांस की, उसने मुझे बहुत सहारा दिया। तो जब गणेश आचार्य जी जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे देखा परफॉर्म करते हैं, उस वक्त वो एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे, तो
1: जी
0: मैं कभी बैकग्राउंड डांसर फिल्मों में नहीं बनी, मैं स्टेज से डायरेक्ट गणेश आचार्य जी के यहाँ पर आई।
1: अरे
0: उन्होंने अम्मी
1: वाह
0: से बात की, उन्होंने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती, मुझे एक ऐसी ही असिस्टेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अब उनका काम बढ़ रहा था
1: तो उन्हें
0: काफ़ी
1: एक
0: उस
1: और
0: वक्त।
1: हाथ चाहिए था जी।
0: तो फिर उस तरह से माई मदर यूज़ टू बी देयर विथ मी ऑलवेज, शी नेवर लेफ्ट मी अलोन टू टेक डिसीजंस, क्योंकि मैं थी बहुत छोटी। तब तक मैं यहाँ पहुँची 8 9 स्टैंडर्ड में आ चुकी थी,
1: बहुत छोटे थे
0: स्टिल
1: आप,
0: स्कूल में थी,
1: बहुत
0: तो वो
1: छोटे थे।
0: मम्मी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, असिस्टेंट बनी उनकी, उनके साथ 3 4 साल काम किया, बड़ी यहीं पर हुई हूँ, समझते समझते सीखते सीखते। फिर प्रभु देवा जी के साथ काम करने का
1: क्या
0: मौका
1: बात
0: मिला।
1: है,
0: फिर एक, मैं सरोज जी की बहुत बड़ी फ़ैन थी,
1: बिल्कुल
0: मैं
1: सब
0: काम बहुत बड़ी फ़ैन, मतलब
1: है
0: मैं
1: मास्टर जी के फैन सब है
0: सब है। जब
1: जी।
0: मैं असिस्टेंट थी उनके गाने देख देख कर, उनकी जो लचक, उनका ये उनका वो कहते हैं ना कि एक आप होते हो एक लव्य, काम यहाँ किया लेकिन मैं उनकी एक लव्य बन गई।
1: क्या बात है
0: आज भी जब कोरियोग्राफी करने खड़ी होती हूँ इंडियन डांस, और ऐसा लगता है मेरे अंदर सरोजी समा गई, अपने आप ऐसा लगता है वो मेरे अंदर समा गए।
1: जी।
0: तो वो एक, उनके साथ मेरा एक इनडायरेक्ट एक लव्य वाला एक रिलेशन शुरू हो गया। उन्हें दूर से देख देख कर, निहार निहार के मैंने अपने काम को संवारा।
1: आपने अपने आप को इतना सारा संवार लिया है, तो जिसने इतना संवारा है यानी शबीना जी, तो शबीना जी को गाने तो बहुत पसंद होंगे, है ना?
0: बहुत ज्यादा
1: तो कोई एक गाना जो आपका हो या आपका नहीं भी हो लेकिन आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल को सुकून देता हो, ऐसा लगे कि बस अब यही सुनना है।
0: मैं पुराने गानों की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी
1: तो
0: फैन
1: हमारे
0: हूँ
1: विविध भारती के श्रोता आपको बहुत प्यार करेंगे।
0: बहुत। आप जैसे देखो, मैंने कल इंस्टाग्राम पे डाला, आजा पिया तो हे प्यार दूं,
1: क्या
0: गोरी
1: खूबसूरत
0: बैया तो
1: गीत
0: पे
1: है
0: वार
1: जी
0: दूं।
1: जी जी जी
0: एक
1: गाइड
0: तो
1: फिल्म
0: जो
1: का ये गाना
0: अल्फाज
1: जी।
0: जो लिखाई होती थी उस वक्त की लिरिक्स लता जी जब गाती थी, तो कौन है जो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, आप मुझे बताइए।
1: जी
0: तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ पुराने गानों की। आज भी जब मुझे अगर गाड़ी में कोई गाने सुनने हैं तो मैं पुराने गाने सुनती हूँ जो
1: तो
0: मुझे
1: फिर उनमें से
0: सुकून
1: कोई
0: देते
1: एक
0: हैं।
1: हीरा जो आप बता दें तो हम हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
0: एक तो पहले सुनाइए आजा पिया तो हे प्यार दो, गोरी बैया तो पे वार दो,
1: चलिए
0: उसके बाद
1: जी,
0: हाँ
1: उसके
0: ये
1: बाद की
0: गाना, उसके
1: भी
0: बाद लग जा गले
1: अच्छा
0: के फिर ये हंसी रात हो ना हो।
1: बड़ी बढ़िया सी फरमाइश है आपकी, पर
0: बहुत
1: हम
0: ज्यादा
1: आपके तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गाना जो है आजा पिया तो है प्यार दूं, गाइड फिल्म
0: प्लीज
1: का गाना है, सुनते
0: प्लीज
1: हैं ये गीत।
0: प्लीज सुनाइए।

0: तो शबीना जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। गाना आपकी पसंद का हमने सुनवा दिया, लग जा गले ड्यू रहा, थोड़ी देर बाद
1: बिल्कुल
0: हमारे श्रोताओं तक जरूर
1: प्लीज
0: पहुंचाएंगे। अब
1: प्लीज।
0: मुझे ये पूछना है कि कोरियोग्राफ तो आपने किया है, छोटी सी शबीना जो है वो बड़ी हो रही हैं, 9वीं 10वीं की उम्र में आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि उस समय की बेटियों में इतनी समझदारी होती थी, मतलब कई चीज़ें तो हम जानते ही नहीं थे। और कई सारे लोग बोले, बरन बरन के लोग मिलते थे, अलग अलग तरीके के लोग आपको मिला करते होंगे। आपकी माँ आपके साथ रहती थी तो आप मैनेज कर पा रही थी। पहला गाना कौन सा था जो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने कोरियोग्राफ किया था और आपको ऐसा लगा था, हाय ये मैंने कर दिया?
1: सी, जब हम असिस्टेंट होते हैं तो हम कोरियोग्राफी नहीं करते, उस वक्त की
0: अच्छा
1: बात है।
0: अच्छा
1: आजकल अलग माहौल है।
0: जी
1: जब मैं असिस्टेंट थी तो मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे
0: जी
1: मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है।
0: जी जी
1: तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा,
0: जी
1: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है,
0: जी
1: उस लेवल पे करना है। वहाँ पे असिस्टेंट कोरियोग्राफर की ड्यूटी सामने
0: शुरू हो
1: आती है,
0: जाती है जी।
1: शुरू हो जाती है। कई मास्टर होते हैं जो खुद डांस नहीं करते, जो खड़े रह के आपको दर्शाते हैं और आपको करके दिखाना है। मेरे जो मास्टर थे गणेश आचार्य जी, वो खुद बहुत अच्छे
0: इज
1: डांसर
0: अ
1: थे,
0: वेरी गुड डांसर।
1: वेरी
0: यस
1: ग्रेसफुल।
0: यस यस
1: उनका
0: यस
1: ग्रेस उनके मास्टर से आता है, जो कमल मास्टर जी थे।
0: जी,
1: और
0: वो भी
1: कमल
0: बहुत
1: मास्टर जी
0: अच्छे,
1: बहुत कमाल,
0: बहुत
1: उन्होंने
0: जी
1: एक ट्रेंड, जिसे कहते हैं कि हमें ये मालूम है भगवान दादा का डांस होता था,
0: जी
1: भोली सूरत दिल के, जो वो हाथ का
0: वो
1: स्टेप
0: सब
1: था,
0: कमल जी का
1: वो
0: दिया होगा।
1: कमल
0: जी
1: जी
0: जी
1: उसमें माहिर थे। उनके असिस्टेंट थे गणेश आचार्य जी,
0: जी
1: उनके असिस्टेंट हूँ मैं।
0: बड़ी अच्छी परिपाटी से चली आ रही
1: बिल्कुल,
0: है।
1: वो अपने मास्टर की कहानियां हमें सुनाते थे
0: हाँ
1: कि कमल मास्टर जी खड़े खड़े भी अगर पूरा गाना कर ले तो आपकी नजर नहीं हटेगी। और वही मास्टर जी करते थे, गणेश मास्टर जी। वही मैंने उनसे सीखा कि ग्रेस जान जाए बट ग्रेस ना जाए।
0: क्या डायलॉग
1: हाँ, मेरे लिए
0: है।
1: वो बहुत जरूरी है कि बिना ग्रेस के तो मैं बात भी नहीं कर सकती।
0: जी
1: तो ग्रेस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम गणेश आचार्य जी, जो उनके अंदर कूट कूट के
0: जी
1: भरा हुआ है। तो उनकी असिस्टेंट जब आप बनती हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है
0: बिल्कुल।
1: कि आपका मास्टर सेट पे एक हीरो होता है, हीरोइन होती है। तो आप किसी जेंट्स मास्टर की जब असिस्टेंट होती हो तो आपकी जिम्मेदारी दुगना हो जाती है, क्योंकि आप फीमेल, आपको ही देख रही है। जो हीरोइन है वो आपको देखकर, वो सुन तो रही है मेरा मास्टर ये बोल रहा है, बट आपको देख रही है। तो
0: हाँ, क्योंकि
1: इसलिए
0: एक्सप्रेशंस उसको आपसे मिलेंगे,
1: बिल्कुल
0: फीमेल वाले
1: अदायगी
0: एक्सप्रेशंस
1: मुझसे
0: आप ही
1: मिलेगी।
0: दोगे।
1: डुएट सॉन्ग
0: बिल्कुल
1: है, जैसे मैं बहुत फेमस गाना अगर गणेश मास्टर जी का बताऊं,
0: हाँ,
1: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज, मैं
0: ओके
1: असिस्टेंट थी
0: जी
1: मास्टर जी के साथ, मैं कर रही हूँ, गोविंदा और करिश्मा को दिखा रहे, तो करिश्मा मुझे देख रही है। तो
0: हाँ
1: मेरे अंदर मुझे वो कला लानी है जो मेरे मास्टर के अंदर बचपन से है। बस वही दिमाग हमारा होता था उस वक्त, घोड़े का चश्मा लगा कर अपने मास्टर को कॉपी करना
0: जी
1: और करके दिखाना।
0: जी
1: तो वहां पे हमारे, आप जितने फेमस गाने उठा लो 90s के,
0: जी
1: जुड़वा के गाने, सारे सलमान खान के गाने।

0: सारे गोविंदा के गाने, सारे सनी देओल के गाने, संजय दत्त के गाने, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, ये जितनी करीना कपूर, रानी मुखर्जी, ये सारे गाने, उनकी सारी फिल्में उठाओ गणेश मास्टर ने की है।
1: और गणेश
0: और उन
1: मास्टर जी के साथ खड़ी थी शबीना खान।
0: शबीना खान। तो अब जब मैं कोरियोग्राफी करने निकली तो लोग बोलते, अरे रानी आपकी तरह डांस कर रही थी, कभी कभी तो करिश्मा आपकी तरह कर रही थी। तो ये जो
1: मैं ही सिखा रही थी
0: मैं
1: उस
0: ही,
1: समय।
0: हाँ उसी वक्त, क्योंकि वो लोग भी बहुत, उस वक्त के स्टार्स भी वैसे ही थे, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको सुनते थे, आपको करते। तो वो वाला एक एरा से हम आते हैं,
1: तो
0: यू नो।
1: फिर उन गानों में से कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो, हालांकि काश कि हम रेडियो पे वो डांस दिखा सकते हैं। अभी हम रेडियो पे वो डांस तो नहीं दिखा सकते आपका, पर हम चाहते हैं कि वो कोई एक गीत जो उस समय का, उस इरा का, जो आपने किया हो और आपको बहुत मजा आया हो कि यार असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बाद भी बड़ा मजेदार कर दिया
0: मैं
1: मैंने
0: मजेदार
1: असिस्टेंट
0: बताऊं, थोड़े
1: कोरियोग्राफ।
0: से लोग जो आज भी उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, पीपल से दैट हमें शबीना दिखती है उसमें,
1: जी
0: वो है रानी मुखर्जी का एक गाना था, कुड़ी कवारी तेरे
1: है,
0: पीछे
1: क्या
0: पीछे
1: बढ़िया
0: पीछे
1: गाना
0: पीछे।
1: है।
0: उसमें मैं असिस्टेंट थी, और जितने लोग मुझे अब देखते हैं,
1: जी
0: जिन्होंने देखा है, बोलते यार रानी लगता है शबीना तुम कर रही हो, बिकॉज वो सांझेदारी होती
1: नहीं,
0: थी।
1: आपका चेहरा भी काफी मिलता है और आवाज भी बहुत मिलती है रानी जी से
0: उस वक्त
1: तो।
0: काफी लोग रानी और मुझे कहते भी थे, और वी वर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ आप एक दूसरे को पसंद करके एक अच्छा गाना डिलीवर करते हो।
1: जी
0: तो वो गाना अगर आप देखोगे या आप प्ले कर पाओ,
1: बिल्कुल, ये
0: आपकी
1: गाना
0: मर्जी
1: हम
0: है।
1: जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत सा गीत है और शायद जसपिंदर नरूला जी
0: हाँ
1: ने
0: जी,
1: गाया हुआ
0: हाँ
1: ये
0: जी,
1: गाना है और बड़ा खूबसूरत, वो बुलंद आवाज के साथ, उस
0: बिल्कुल
1: बुलंदी के साथ जो किया गया है तो बेहतरीन है। तो ये गीत जरूर हम हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसमें रानी मुखर्जी दिख रही हैं, लेकिन रानी मुखर्जी को दिखाने के लिए शबीना खान पूरा डांस दिखा रही हैं, और जो रानी मुखर्जी हैं उस डांस को कर रही हैं। तो आपकी ये बेहतरीन असिस्टेंट कोरियोग्राफी डायरेक्शन, खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से।
0: ठीक।

0: ये गीत तो बड़ा प्यारा है। हम तो स्टूडियो में बैठे हैं कुर्सी पे, तो हम नाच नहीं सकते, लेकिन जरूर से इस गीत पे मुझे विश्वास है कि हमारे सारे श्रोता जो हैं वो डांस कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। रानी मुखर्जी की बात आई तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा रानी मुखर्जी से मिलता है, और आपसे बात होते होते आपने मुझे ये बात कही भी थी कि एक गाने में बहुत सारी जगह रानी को पैर में चोट लगी थी, वो किस्सा अगर आप खुद बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा।
1: सो ऐसे इंसिडेंट तो 2-3 बार हुए हैं।
0: जी
1: जैसे एक गाना मैं बताऊं अगर आपको, जिसमें टाइटल सॉन्ग है, जिसमें ऐसे दिखाना है कि मैं डांस कर रही हूं
0: हाँ
1: और अरबाज खान को
0: हाँ
1: रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दिखाई देती है,
0: अच्छा
1: तो सलमान भाई ने कहा कि हु बेटर देन शबीना।
0: हाँ
1: सो बहुत कम लोगों को मालूम है, अभी आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे वो वापस जाके यूट्यूब पे देखेंगे तब समझ आएगा, लेकिन लोगों को देखकर भी समझ नहीं आया था। आज भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि दो लड़कियां थी वहां।

0: मुझे भी समझ नहीं आया था उस
1: हाँ आप
0: गाने में
1: देखिए,
0: जी।
1: गाना शुरू मुझसे होता है, सेम कपड़े सेम हेयर स्टाइल एवरीथिंग सेम, मैं डांस करना शुरू करती हूँ, हेलो ब्रदर, दैट सॉन्ग, ब्रदर हेलो ब्रदर,
0: उसमें दोनों जगह पे आप हैं
1: मैं
0: बट
1: हूँ, और फिर वो चेंज होता है अरबाज खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रानी आती है,
0: ओ
1: तो वो जब हम कहते हैं तब पता चलता है कि अच्छा वो लड़की दूसरी थी क्या, बहुत लोगों को लगता था, इवन ऑन द सेट रानी मुखर्जी का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो घूम के मेरे पास आके मेरा मेकअप कर रहे हैं, तो ऐसे दादा मैं हूँ शबीना रानी, तो हमारी हाइट
0: जी जी
1: पर्सनालिटी
0: जी
1: बाल काफी कुछ मिलता था उस वक्त।
0: जी
1: और फिर एक गाना था काली नागिन की जैसी जुल्फें
0: ब्यूटीफुल
1: तेरी काली
0: सॉन्ग।
1: काली, मैं
0: यस
1: असिस्टेंट थी और उसमें काफी वाइड शॉर्ट्स और मिड वाइड में हमें गाना जल्दी
0: जी
1: खत्म करना था, शायद पता नहीं रानी को भी ये बात पता है कि नहीं, तो वो आने से पहले काफी शॉर्ट्स मेरे साथ और आमिर जी
0: हो
1: के
0: गए
1: साथ
0: थे।
1: हो
0: अच्छा
1: जाते थे, तो वो एक गाना था। उसके बाद में चांदी की डाल पर सोने
0: वो
1: का
0: मटकी
1: मोल,
0: फोड़ने वाला
1: मटकी
0: गाना
1: फोड़ने वाला गाना,
0: जी।
1: वहां पे भी मैं असिस्टेंट थी और काफी वक्त ऐसे वाइड शॉट, तो काफी ऐसी फिल्में थी जहाँ पे लगे अच्छा जल्दी करना है, सनलाइट को संभालना है, तो आजा शबीना तू कर ले,
0: जी
1: तो आई यूज टू डू इट।
0: मतलब मजे मजे में जिंदगी में बड़े सारे काम कर लिए, मतलब जरूरत पड़ी तो हम खुद ही मेकअप करके उतर गए और डांस करके
1: हाँ
0: आ
1: बिल्कुल
0: गए।
1: बिल्कुल, यही अदायगी होती है।
0: जी। अभी आप असिस्टेंट कोरियोग्राफर असिस्टेंट डायरेक्टर आप काम करते जा रही हैं, तो इसमें आपने बहुत सारी फिल्मों में और भी काम किया होगा उस समय
1: बहुत सारे
0: जी। उसके बाद आपने अपना खुद का जो पड़ाव है या बोलना चाहिए मेरा कदम, वो कब लिया और कैसे लिया
1: सो असिस्टेंट पीरियड की एक बात जो मैं जरूर मेंशन करना
0: जी।
1: चाहूंगी ताकि जो आपके सुनने वाले हैं लड़कियां
0: जी
1: है वो समझे इस बात को, कि मेरी अम्मी ने एक शर्त रखी थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी तुमने,
0: पढ़ाई नहीं छोड़नी है जी, बहुत
1: तो
0: बढ़िया
1: मेरे
0: बात है।
1: असिस्टेंट पीरियड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10th कंप्लीट की,
0: हाँ
1: कॉलेज जाना शुरू किया,
0: ओके
1: काम भी कर रही हूँ, कॉलेज भी जा रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ, अपने बहन भाइयों की
0: आप
1: पढ़ाई भी,
0: कॉलेज में क्या विषय पढ़ रहे थे उस समय?
1: मैंने 2 साल साइंस लिया था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी,
0: आप कोरियोग्राफी के साथ
1: हाँ तो क्योंकि मैं
0: मेडिकल
1: कोरियोग्राफर
0: की पढ़ाई
1: कभी
0: कर रहे हैं
1: बनना नहीं चाह रही थी, मैंने
0: जी।
1: काम शुरू ही एक सोच के किया था, अम्मी और मेरी ये सोच थी कि हमने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना है और मैंने डॉक्टर बनना है,
0: जी
1: क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, 100% मार्क्स स्कोर करती थी स्कूल में, मैंने 1 साल पहला साइंस लिया, बहुत डिफिकल्टी से पढ़ाई भी की काम भी किया, 2nd ईयर फिर मुझे इसको स्किप करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त तक भाई बहन बड़े हो रहे थे,
0: पैसों की भी
1: पैसों की भी ज़रूरत थी, और पढ़ाई अगर करके मार्क्स कम आए तो मुझे
0: हारे
1: वो गवारा नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी भर मैंने 100% स्कोर किया था,
0: तो कभी नहीं थे।
1: कभी हारे नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने वहाँ से छोड़कर कॉमर्स में आ गई मैं, कि कोई
0: अच्छा
1: बात नहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट करते फिर देखते क्या होता है, तो पढ़ाई साथ साथ चलती रही मेरी।
0: मतलब आपने जो भी पढ़ा अच्छा कठिन ही पढ़ा,
1: हाँ
0: 11th 12th भी अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या फिर आप बायो की लाइन में पढ़ रहे हैं तो इतने सारे
1: बहुत
0: बायोटेक्निकल
1: कुछ
0: नेम्स और बहुत सारी
1: बहुत
0: चीज़ें
1: कुछ,
0: होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे
1: तो
0: बड़ा
1: ऐसा
0: तो
1: होता
0: मुझे
1: था कि
0: लगता है आपने
1: असिस्टेंट
0: पढ़ा।
1: डेज में मेरी किताबें मेरे साथ होती थी, अम्मी साथ होते थे, किताबें साथ होती थी, पढ़ाई भी कर रही होती थी,
0: ये
1: और
0: बहुत बड़ी बात है और शायद ये प्रेरणा वाली बात है हमारे उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एक साथ पढ़ाई के साथ कुछ और नहीं कर
1: बिल्कुल यही मैं
0: सकते
1: चाहती थी कि आपके
0: जी।
1: जरिए पता
0: तो
1: चले
0: हमारे
1: लोगों को।
0: कितने सारे श्रोताओं में जो कितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे उनको कितनी ही अच्छी बात पता पड़ रही है कि आप काम भी कर रही हैं कमाई भी कर रही हैं, दोनों चीज़ें हो रही हैं,
1: बिल्कुल
0: प्लस पढ़ाई भी हो रही है वो भी साइंस की,
1: जी
0: बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये
1: बिल्कुल
0: तीनों बहुत हैवी सब्जेक्ट हैं, तीनों में बहुत पढ़ना याद करना,
1: बिल्कुल
0: फिजिक्स की मैथ्स भी होती है।
1: बिल्कुल, इसलिए
0: और
1: जब 2nd ईयर पे आई तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी,
0: बट कॉमर्स भी इजी नहीं
1: हाँ
0: है
1: बीके में मास्टर थी मैं अपनी क्लास
0: जी।
1: की, मतलब मैं
0: क्या
1: खुद,
0: बात है, बुक
1: हाँ
0: कीपिंग
1: पढ़ाई में
0: अरे
1: अच्छी, हाँ तो बुक कीपिंग वॉज वेरी गुड विच इज़ हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो, तो जो
0: हाँ
1: पढ़ाई है वो मेरी ज़िंदगी में आज भी मेरे बहुत सपोर्ट में है, जो मैं सिस्टमेटिकली अपने करियर को संभाल पाई हूँ वो सिर्फ
0: जी
1: एक नॉलेज था पढ़ाई का, डिसिप्लिन का,
0: जी
1: और आप एक स्टूडेंट होते हो तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो कि आपको जल्दी सोना है जल्दी उठना है,
0: जी
1: वो आज
0: बिल्कुल
1: भी मेरी लाइफ में है, इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक मैं करना चाहती हूँ आपके साथ, कि आप कर सकते हो जब आपके दिल दिमाग में ये टारगेट बैठ जाता है कि आपको ये करना है,
0: यानी उस समय नींद कम होगी, पढ़ाई और मेहनत ज़्यादा होगी और वो
1: बिल्कुल
0: सब करके आप हर फील्ड में आप जीती।
1: बिल्कुल, और एक इंसान को अच्छे खासे दिमाग वाले इंसान को 4 घंटे की नींद बहुत है, बहुत है,
0: जी
1: ये जो 6 घंटा 8 घंटा है वो एक्टरों के लिए ठीक है जिन्हें अच्छे दिखना है सुंदर दिखना है, लेकिन अगर आपको आपका करियर बनाना है तो
0: जी
1: आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए, शाहरुख खान साहब बहुत अच्छा कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती और आपको भूख नहीं लगती और आप बेचैन हो तो
0: हाँ
1: मतलब आप बहुत बड़े बनोगे आगे जाके,
0: क्या बात है।
1: आप सुकून

0: की नींद, सो गए तो खत्म।
1: सुकून की नींद नहीं, पेट भर
0: बिल्कुल
1: के भूख नहीं,
0: बिल्कुल,
1: और एक अलग
0: ये
1: बेचैनी।
0: बिल्कुल मैं अपने आप
1: इसके
0: को
1: लिए
0: आज
1: डॉक्टर के पास नहीं जाना है, काम
0: नहीं जा,
1: करने के लिए लग जाना
0: चार
1: है।
0: घंटे की नींद काफी होती है दिमाग को और तंदुरुस्ती को
1: जी,
0: कायम रखने के लिए।
1: कई बार लोग इसे कह देते हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं या हमें कोई और समस्या हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दे लो, आपके अंदर कुछ पनप रहा है,
0: बिल्कुल,
1: कुछ जाग
0: ये
1: रहा है।
0: बेचैनी जो है एक नए कल की शुरुआत है।
1: जी
0: हमेशा
1: जी
0: हिमेश रेशमिया ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, हम जब प्रेम रतन धन पायो कर रहे थे, कहते हैं, मैंने कहा सर कितना खूबसूरत गाना बनाया आपने, तो ही सेड रोटी की भूख मुझे आज भी है,
1: इतना होने के बाद
0: ये भूख ही मुझसे करवाती है। तो मैं
1: और
0: सर
1: उसके बाद वो लोग रोटी नहीं खाते मेंटेन करने के लिए।
0: बिल्कुल, तो अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ कि
1: जी
0: ये कब हुआ, जब कोरियोग्राफी शुरू की।
1: जी
0: मैं कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ अलग बनना चाहती, लेकिन जिंदगी का मकसद कुछ और होता है, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहती है ना, फ्लो के साथ चलो। एक फ्लो आया जब मैं प्रभु देवा जी को असिस्ट कर रही थी, चेन्नई में थी मैं, गणेश मास्टर जी के साथ अब काम छोड़ दिया 4-5 साल के बाद, और अब लगा कि ठीक है दिशा बदलनी चाहिए, तो
1: जी
0: मैंने प्रभु देवा जी को ज्वाइन किया।

0: मैं कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ अलग बनना, लेकिन जिंदगी का मकसद कुछ और होता है, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहती है ना, फ्लो के साथ चलो। एक फ्लो आया जब मैं प्रभु देवा जी को असिस्ट कर रही थी, चेन्नई में थी मैं, गणेश मास्टर जी के साथ अब काम छोड़ दिया 4-5 साल के बाद, और अब लगा कि ठीक है दिशा बदलनी चाहिए, तो मैंने प्रभु देवा जी को ज्वाइन किया। मैं चेन्नई में शूट कर रही थी और मुझे बॉम्बे में राम गोपाल वर्मा जी ढूंढ रहे थे।
1: अच्छा,
0: हाँ जी। तो असिस्टेंट डेज में जिनको भी साथ मैंने काम किया उनको एक चीज वो नहीं भूल पाए कि एक लड़की है जो ऐसा परफॉर्म करती है लगता है माधुरी दीक्षित नाच रही है। तो वो जो मेरा परफॉर्मेंस था लोग भूल नहीं पाए। हर इंसान, मतलब असिस्टेंट डेज में भी ऐसा होता था कि ऐश्वर्या राय गाना कर रही है हमारा दिल आपके पास, और वो पूछ रही है कि गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट शबीना है ना अभी भी।
1: अच्छा, प्रश्न ही होता था शबीना आएगी
0: शबीना
1: ना
0: है
1: सिखाने
0: ना,
1: के लिए। हाँ
0: तो उन्होंने पूछा शबीना है ना, हाँ हाँ शबीना है, उनका वीजा नहीं लगा अमेरिका का, तो अनिल कपूर और बोनी कपूर चले जाते वीजा लगवाने मेरा।
1: मतलब आपने इतना अच्छा काम किया कि आपके लिए अनिल कपूर
0: हाँ
1: जाके वीजा लगवा रहे
0: वीजा, और मुझे कॉल आता है कि भैया तुम्हारा 10 साल का वीजा लग गया है, समझ रही हो तुम, अनिल कपूर बोल रहा हूँ शबीना, मतलब वो लेवल का। शाहरुख भाई ने एक बार बोल दिया कि अगर असिस्टेंट्स को अवार्ड होता तो मैं शबीना को अवार्ड दिलवा
1: क्या
0: देता,
1: बात है।
0: जब मैं उनके साथ मैं तो हूँ पागल सॉन्ग कर रही थी, जब मैं परफॉर्म भी
1: हाँ,
0: कर
1: क्या
0: रही
1: खूबसूरत
0: थी।
1: गाना है।
0: तब तो मैंने बिल्कुल ज्वाइन पूरी तरह से किया नहीं था, मैं पढ़ ही
1: जी
0: रही
1: जी
0: थी,
1: जी
0: असिस्टेंट डेज की बात है।

0: कैमरे के पीछे क्या होता है। तो मुझे बनना ही नहीं था, इसलिए मैंने सीखा ही नहीं। मुझे एक ही बात आती है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है। ही सेड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। ही सेड मैंने सरोज जी को साइन कर लिया है, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम करो अंतरा के साथ ये फिल्म। अंतरा माली हीरोइन थी
1: जी
0: उसकी, चंदन अरोरा जी उनके डायरेक्टर थे जो बहुत बड़े एडिटर थे उस वक्त भी। तो
1: जी
0: सर मुझे कुछ नहीं आता, इसे चंदन है तुम्हारे साथ, तुम्हें बता देगा, एक गाना करो, मजा आया तो आगे करना।
1: वो
0: फिर
1: गाना कौन सा था, पहला वाला?
0: तुमसे मिली नजर तो असर हुआ
1: हाँ,
0: है आज
1: वो भी
0: ये
1: बहुत
0: दिल,
1: अच्छा किया था अंतरा वाली जी ने,
0: आहा, आहा,
1: बढ़िया किया था
0: बहुत
1: जी।
0: फेमस हुआ था वो गाना। ही सेड मैंने ऑडिशन किया है काफी लड़कियों को, बट तुम जाओ अंतरा से मिलो और देखो क्या होता है। मैं
1: जी
0: गई, अंतरा ने मुझे दो गाने दिए, इस पे कल आप परफॉर्म करके दिखा देना। मैंने किया, वो गाना था एक दो तीन और हमको आज कल है इंतजार, माधुरी
1: मुझे
0: दीक्षित का।
1: अभी अंतरा जी दिखाई दे रही हैं, अंतरा माली की, वो उस गेटअप में खड़ी हैं स्टेज पे और वो उसको परफॉर्म कर रही हैं
0: बिल्कुल,
1: जी।
0: तब वो गाना मैंने उनको परफॉर्म करके दिखाया, एंड शी जस्ट स्टूड अप एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड तुम ही करोगी मेरे गाने।
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि मैम मुझे आता नहीं है बिहाइंड द, तो चंदन अरोरा साथ में कर लेंगे, मेरी भी पहली पिक्चर है। सच अ
1: सीख लेंगे
0: ग्रेसफुल डायरेक्टर, सच अ गुड एडिटर इज,
1: जी।
0: उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई। उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम शॉट मुझे ऐसे बताना, गर्दन का मूवमेंट है तो यहाँ पे हाथ रखना गर्दन के नीचे, कमर का मूवमेंट है तो कमर की तरफ हाथ रख के बताना, पूरा फुल फिगर है तो बताना कि मुझे पूरा देखना है। इतनी सादी अल्फाज में उन्होंने मुझे एक कोरियोग्राफी सिखा दी, और फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ। और जब पहला गाना एडिट
1: कोई
0: करके,
1: टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे
0: ये सर
1: इसमें
0: तुमने यही सीखना, और फिर जो सीखोगे अपने काम से सीखो, काम करते करते सीखो।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: राम गोपाल वर्मा इज माई फर्स्ट टीचर एंड चंदन अरोरा इज माई सेकेंड टीचर, आई टेक इट लाइक दैट। एंड अंतरा माली इज माई फर्स्ट स्टार हु, उस दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल साथ में करते हैं।
1: जी
0: तो वो फिल्म मैंने की और मुझे बहुत मजा आया, और फिर लगा कि ओ माई गॉड ये मेरा क्रिएशन है। जब 70 mm के पर्दे पे मैंने पहली बार अपनी रचना देखी, तो मुझे लगा कि स्टेप्स भी मेरे हैं,
1: जी,
0: लाइट्स भी मैंने बताई है, एंगल भी मेरे, ये मैंने क्रिएट किया है।
1: ये मेरा बच्चा है।
0: हाँ, तब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे ये करना है। मम्मी बोले करो बेटा।
1: एक्चुअली में जब आप कुछ सजाते हो तो सजाने के पहले भी आप एक अकेले कमरे में बैठ के शायद उस
0: आप
1: डांस
0: उसको
1: को
0: जीते हो,
1: जी रहे होगे, उसके
0: बिल्कुल
1: साथ कुछ सपने भी बुन रहे होगे
0: बिल्कुल।
1: और उसको आपने एक जीवन दे दिया।
0: मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि हम रिहर्सल हॉल के अंदर बैठ के गाना एडिट तक देख लेते हैं, एडिटिंग तक। पहला प्रोसेस होता है, गाना आता है, कोरियोग्राफी होती है, डायरेक्टर को दिखाते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं। तो पहले प्रोसेस में बैठ के हम एडिटिंग रूम के अंदर गाना देख लेते हैं। ये इतनी खूबसूरत रचना है जिसको आप रचने जा रहे होते हो। तब मुझे वहाँ पे मज़ा आया और मैंने कहा कि अब यही करना है मुझे। फिर ज़िंदगी का मोड़ मुझे कोरियोग्राफी की तरफ ले आया, और वहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई।
1: आपको सुन के ना इतना मजा आ रहा है कि जिंदगी में आप एक 20 मिनट आधा घंटा किसी को सुन रहे हो और सुनते सुनते आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीवन में काम आ जाएंगी, ऐसी मिलती जा रही हैं।
0: बिल्कुल
1: तो आपसे बात करके शबीना जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हमारे श्रोताओं को हमें कोई गीत तो सुनाना पड़ेगा, और आपके गीतों में से कोई गीत सुनाना है या पुराना सुनाना है हम आप पे बिल्कुल छोड़ देते हैं। आज आपकी पसंद हमारे श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए, जितनी भी जाएगी वो।
0: मेरा एक गाना है मेरी अपनी फिल्म का जो मेरा अपना फेवरेट है,
1: जी
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म
1: हाय
0: से है,
1: हाय,
0: गाना है जलते दिए।
1: बहुत खूबसूरत गीत है
0: उसमें मुझे वो आत्मा दिखती है जो पुराने गानों में दिखती थी,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: आप सुनेंगे या आप देखेंगे तब
1: जी
0: भी आपको लगेगा कि ये गाना रूह को टच करके जाता है।
1: इसके साथ एक प्रश्न आ रहा है मन में, वो जो बीच बीच में जो दिए जल रहे हैं और
0: जी
1: वो बीच में से जो आपकी अभिनेत्री नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते यहाँ से वहाँ जा रही हैं, तो इस चीज़ के लिए भी विशेष सुरक्षा कुछ की जाती होगी कि
0: बिल्कुल।
1: कैसे वो कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो हम गाना
0: सो
1: सुना
0: अगर
1: दें।
0: आप गाना देखेंगे आपके जरिए जो इतने लोग
1: सुनेंगे और बाद
0: हिंदुस्तान
1: में
0: के
1: देखेंगे भी
0: देखेंगे और सुनेंगे,
1: जी
0: तो ये जो दिए देख रहे थे आप, क्योंकि गाना था जलते दिए,
1: जी
0: तो हमारे जो सूरज बड़जात्या जी है उनके तो
1: जी
0: सब जानते हैं,
1: जी
0: सबके दिलों की धड़कन है वो,
1: जी
0: तो वो बहुत ही रियल लाइफ में जीते हैं अपनी।
1: बिल्कुल, बहुत
0: उनसे मैंने,
1: सरल
0: वो
1: है
0: मेरे एक मेंटोर है, मेरे टीचर है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ।
1: जी।
0: जब ये गाना आया उन्होंने कहा कि हम दिए खुद जलाएंगे,
1: खुद जलाएंगे यानी,
0: नकली दिए भी मिलते हैं जो
1: हाँ
0: आप
1: वो,
0: ऑन करके डाल
1: हाँ
0: दो।
1: एलईडी वाले
0: ही
1: जी।
0: सेड नहीं, उन्होंने अपने डीओपी को बोला, मणिकंदन हमारे डीओपी थे, ही सेड मैं चाहता हूँ कि हम दिए जलाएं, जितनी
1: असली दिए
0: दिए
1: जलाएं।
0: दिख रहे हैं हम
1: हाँ
0: जलाएंगे, भले 50-100 लोग भागे शॉट के पहले दिए जलाए और बाहर आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है
1: ये
0: इस
1: बढ़
0: गाने।
1: जाती

0: वो वाले माहौल में राम गोपाल वर्मा मुझे ढूंढ रहे हैं मुंबई में, और वो कहते हैं कि एक लड़की थी जो गणेश आचार्य जी के साथ परफॉर्म करके दिखाया था उसने मुझे एक गाना,
1: जी
0: वो लड़की को ढूंढो उसको ब्रेक देते हैं, वो बिल्कुल माधुरी की तरह नाचती है, और फिल्म का नाम था जिसके लिए वो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ,
1: 2003 की ये फिल्म है।
0: बिल्कुल, और वो ढूंढ रहे हैं मुझे। फिर वहां से मुझे ढूंढा गया, चेन्नई से बुलाया गया और अपनी ऑफिस में बुलाया, अम्मी और मैं बैठे और बात कर रहे हैं उनसे, और मैं कह रही हूँ कि सर मैं कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता,
1: सीधे ब्रेक
0: मुझे
1: मिल रहा है बट
0: बिल्कुल
1: आप जाना चाहती हैं पढ़ने के लिए। जी
0: मुझे आता ही नहीं कुछ, मैंने सिर्फ यही सीखा है कि अपने मास्टर्स के लिए अच्छा काम करना है, मैंने कभी टेक्निकली सीखा ही नहीं कि

0: क्या जिसका ये काम ऐसा
1: हाँ, तो
0: होता
1: उसमें
0: है,
1: दिए
0: ये
1: जलाने में मैं भी
0: होती
1: होती थी, मेरे असिस्टेंट, उनके असिस्टेंट, वो भी भागते थे कि दिए जलाना है, पानी में भी दिए जल रहे हैं।
0: जी,
1: आपने जो
0: उसके साइड
1: सवाल
0: से ही
1: किया,
0: पट्टी
1: साइड
0: पे भी
1: में
0: जल रहे हैं। जी
1: जहां जहां वो जा रही है
0: हाँ
1: वो दिए जल रहे हैं,
0: जी
1: और उन दियों को हम जलाते थे, और एक डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी,
0: हाँ, और वो
1: तो वो
0: बहुत लाइट
1: चलकर,
0: नेट की
1: हाँ,
0: साड़ी है वो।
1: तो
0: जी
1: वो हमारा एंगल हम ऐसे रखते थे कि दिए लगे उनके बहुत करीब, बट वो होते थे बहुत दूर।
0: मेरा प्रश्न वही था कि हमें ऐसा
1: हाँ
0: लग रहा था कि वो बिल्कुल दिए के बगल से निकल
1: नहीं,
0: रही है और
1: वो
0: वो।
1: हमारा एंगल ऐसे रखते हैं कैमरा के,
0: जी
1: कैसा लगे कि है बहुत करीब,
0: जी
1: लेकिन वो है बहुत, हम जो भी फिल्म के सेट पे करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, हमारे जो लोग एक्सपर्टीज रखते हैं इस मामले, वो हमारे सेट पे होते हैं,
0: जी
1: और फायर के लिए बराबर से इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होता, फिल्म
0: डॉक्टर्स होते
1: सेट्स,
0: हैं, एम्बुलेंस
1: डॉक्टर्स
0: होती
1: होते
0: है।
1: हैं, सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के फिल्म के सेट पे काम किया जाता है। जैसे
0: जी
1: लोग आजकल रील बना रहे हैं, उनको
0: हाँ
1: भी ये समझना चाहिए कि आप देख के रील बनाते हो, लेकिन आप भी इसका ध्यान रखो कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। घर में रील बनाते हो, पीछे पर्दे लगे हैं, वो
0: हाँ
1: पर्दे जल जाए, घर में रहने वालों को नुकसान हो जाए,
0: इक्विपमेंट्स
1: सेफ्टी
0: और सेफ्टी नॉर्म्स के
1: बहुत
0: साथ में
1: ज़रूरी है,
0: ही
1: बहुत
0: काम
1: ज़रूरी
0: करना
1: है।
0: चाहिए।
1: तो इस गाने को बहुत ही प्यार से,
0: बहुत
1: कोमलता
0: रिच
1: से
0: सॉन्ग है,
1: दर्शाया गया,
0: बहुत प्यारा, बहुत
1: बहुत
0: सॉफ्ट, बहुत गीत है और बहुत प्यारा गीत है ये।
1: बिल्कुल
0: दिल में ऐसे लगता है सुनते सुनते कि हाँ कुछ हो रहा है, तो
1: बिल्कुल
0: जब कुछ हो रहा है तो वो गाना सुन लेना चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए इस प्यारी सी सूचना के साथ, जानकारी के साथ कि कैसे शूट किया गया ये गाना, जलते दिए आप सबके लिए।

0: अभी आपने फीमेल एक्टर्स का नाम लिया, ऐश्वर्या का नाम लिया आपने, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया,
1: जी
0: बहुत सारी एक्ट्रेस हैं. जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, इंटरनेट पे सर्च किया, ढूंढा आपको, और वो ढूंढते ढूंढते तो कभी कभी ऐसी चीज़ें जो होती हैं सोशल मीडिया वाली, वो भी बड़ी काम आ जाती हैं. तो वहाँ से ये भी जानकारी मिली कि लगभग जब हम पढ़ रहे थे तो 34-35 महिलाएं जो हैं, एक्ट्रेस जो हैं, अभिनेत्री जो हैं, उनको आपने बढ़िया डांस करवाया है, बढ़िया कोरियोग्राफ किया है. तो पूजा जी हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, विपाशा हैं, परिणीति हैं, माधुरी हैं, रेखा हैं, रेखा जी को भी
1: रेखा
0: आपने
1: जी को
0: सिखाया है. तो मैं जानना चाहती हूँ, या हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं, बात तो ये बड़ा वैसा प्रश्न है, कौन है जो बड़ी सरल सी है और बड़ी आसानी से सीख जाती है और बड़े प्यार से कर लेती है?
1: आपने अभी और पुराने सबका नाम एक साथ ले लिया।
0: नहीं, आप अलग से बता
1: मैं
0: सकती हैं. जी
1: हर एक के बारे में बताती
0: जी
1: हूँ।
0: जी जी
1: रेखा जी
0: आए
1: हमारी उड़ाओ जान,
0: जी
1: उनसे बेहतर कौन हो सकता है। उनके साथ मैंने सुपर नानी एक फिल्म की थी इंदिर कुमार जी की,
0: जी
1: मैं नई नई कोरियोग्राफर थी,
0: जी
1: और जब उनको पहली बार देखा मेरे पैर ठंडे हो गए, हाथ ठंडे हो गए, बिकॉज उनकी अदायगी,
0: आज भी उतनी ही
1: हाथ
0: खूबसूरत,
1: भी उतनी
0: पचहत्तर
1: ग्रेसफुल,
0: तेहत्तर 74 बरस की उम्र में भी वही अदायगी.
1: आज भी वो स्टेज पे खड़ी हो जाए बस यूं देख ले तो
0: हाँ
1: दिल के अंदर तीर घुस जाते हैं,
0: हाँ
1: वैसी है वो। और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया, और उनके साथ मैंने वो फिल्म की,
0: जी
1: उसमें डांसिंग नंबर भी था एक, और
0: जी
1: बहुत प्यार से किया। मेरी उस साल नई शादी हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से बना के एक मंगलसूत्र मुझे पहनाया
0: आह, क्या बात है.
1: और अपने हाथ से एक लेटर दिया लिखकर। इसे मैं कहती हूँ अचीवमेंट है, ठीक है। उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा बहुत ग्रेसफुल है,
0: अच्छा
1: बहुत ग्रेसफुल है, उसमें वो बात है
0: अच्छा
1: जो हम कहते हैं ना अदायगी, नज़ाकत,
0: हाँ
1: यू नो वो है। परिणीति इज ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल,
0: यस
1: ग्रेसफुल। मैं तब कहती हूँ ना, परिणीति के साथ अक्षय कुमार, परिणीति का एक गाना किया था कीमती, एक सॉन्ग था मेरा, बहुत ग्रेसफुल। जहाँ आपके पास डांस नहीं करना है, खड़े रह के कुछ बोलना है, कुछ गाना है, वहां पे आपकी नज़ाकत और आपका ग्रेस पता चलता
0: इसे
1: है।
0: अंग्रेजी में मिनिमल कहते हैं, या मतलब कमतर में बेहतरीन करके
1: बिल्कुल
0: निकल जाना.
1: बिल्कुल,
0: जी
1: आपको ज्यादा शोर शराबा, जंप वंप करने की जरूरत नहीं है। आप बस, आपका क्लोजअप लगा और आपने सिर्फ कैमरा को देखा और एक लाइन गा दी। इसे कहते हैं अदायगी,
0: हाँ
1: जो परिणीति में है, सोनाक्षी में है। सोनम इज रियली गुड, सोनम प्रूव्ड इन प्रेम रतन धन पायो, शी वर्कड रियली हार्ड विथ मी। अगर मेरा नाम परिचय इस दुनिया को और इस इंडस्ट्री को पता चला तो प्रेम रतन धन पायो फिल्म थी,
0: बिल्कुल
1: और उसमें मेरी हीरोइन थी सोनम कपूर,
0: सोनम
1: शी वर्क
0: कपूर.
1: रियली हार्ड। रात को दो
0: हाँ
1: दो बजे तक रिहर्सल किया, और शी, क्योंकि मैं अपनी अदायगी को कैमरे के सामने तो दिखा सकती नहीं हूँ,
0: हाँ
1: बट मैं अपनी एक्ट्रेसेस के साथ, अगर वो मेरे साथ मेहनत करने तैयार है तो उनके साथ मेहनत करके अपने आप को उनके जरिए कैमरा पे दिखा सकती हूँ। जो जलते
0: बहुत
1: दिए में आप
0: सॉफ्टनेस
1: देखिए,
0: के साथ में उन्होंने
1: बिल्कुल
0: डांस किया जी.
1: शकुंतला बन गई थी वो,
0: हाँ
1: बिल्कुल उस
0: हाँ
1: गाने
0: ऐसा
1: में,
0: ही,
1: यही था।
0: दुष्यंत का ही इंतजार रह गया था. शी वॉज
1: शी
0: वेरी
1: इज
0: गुड,
1: वेरी ग्रेसफुल।
0: बहुत बहुत बहुत प्यारा किरदार उन्होंने.
1: जितनी भी मेरे साथ, अभी मैं एक नई फिल्म कर रही हूँ शर्वरी,
0: अच्छा
1: नई लड़की, आज की लड़की है, बहुत ग्रेसफुल है वो भी। तो होता क्या है, जब आपका प्रोफाइल बनता चला जाता है तो लोग आपको सर्च करते हैं और फिर कहते हैं, ओह आपने इतनी ग्रेसफुल गाने की है, मुझे भी करवा दीजिए।
0: सही बात है,
1: यू नो
0: कहेंगे लोग.
1: बस उसी की वजह से मेरा एक जो

0: प्रोफाइल बना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरिंग क्लासिक एंड गुड वर्क जो बहुत ज़रूरी होता है वही है. तो ये जितनी भी लड़कियों का आपने नाम लिया जिनके साथ मैंने काम किया, दे वर्क हार्ड विथ मी एंड दैट्स हाउ दे हैव.
1: इनके कोई नखरे नहीं होते थे कि तुम मुझे ये मत कराओ, वो मत कराओ, मैं ऐसा नहीं करूँगी, वैसा नहीं करूँगी? जैसे माधुरी दीक्षित हैं, वो अपने आप में परिपक्व हैं नृत्य के लिए, ऐश्वर्या राय हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ सीखा हुआ है नृत्य में, तो इन लोगों का कुछ ऐसा अपनी फरमाइश नहीं होती है?
0: सी, जैसे माधुरी दीक्षित की बात की
1: जी
0: आपने, मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ.
1: जी
0: उनके साथ जब असिस्टेंट डेज में मैं एक पुकार फिल्म का गाना कर रही थी,
1: एक ही जरा जरा
0: वो भी किया, और एक गाना था जो फिल्म में नहीं डाला, गणेश मास्टर जी कर रहे
1: जी
0: थे.
1: जी
0: जब वो मेरे सामने आए और मुझे उनको करके दिखाना था और पहली बार मैंने अपनी प्रेरणा को अपने सामने देखा तो मैं रो पड़ी. शी केम, शी हग्ड मी एंड शी गॉट टू नो दैट आई एम अ बिग फैन. शी सेड, अगर मेरी अच्छी फैन है तो मुझे करके दिखाइए गाना पूरा. और मैंने उनको पूरा गाना डांस करके दिखाया. शी सेड, मिरर लाओ, मुझे शबीना को कॉपी करना है.
1: क्या बात है
0: हाँ, ये होता है अचीवमेंट.
1: जी.
0: और मैं बिल्कुल शून्य थी, क्योंकि माधुरी दीक्षित ने कभी लोगों को बदल के अपने परफॉर्मेंस नहीं किया. उन्होंने जितने कोरियोग्राफर के साथ काम किया, ये है लेजेंड होने की एक बहुत बड़ी निशानी. आप कब लेजेंड बनते हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज होती है.
1: उन्होंने हर कोरियोग्राफर को
0: उन्होंने
1: गुरु
0: अगर
1: मान के
0: माधुर
1: उसके जैसा ही
0: उन्होंने
1: काम
0: सरोज
1: किया
0: जी को अगर निभाया स्क्रीन पे, तो उन्होंने जय बोराडे को निभाया.
1: जी.
0: आपको पता है जय बोराडे ने उनके साथ बहुत बड़ी फिल्म की थी जो सूरज बड़जात्या की थी, उसका नाम था हम आपके हैं कौन.
1: जी बहुत
0: उन्होंने निभाया
1: खूबसूरत
0: उनको, उन्होंने उनको निभाया, गणेश आचार्य जी को निभाया. बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल जो गाना है,
1: जी
0: मैं असिस्टेंट थी, वो भी उन्होंने किया,
1: जी
0: माधुरी दीक्षित जी ने. तो उन्होंने मेरे साथ जब वो गाना असिस्टेंट में किया, बड़ी मुश्किल भी, शी नेवर सेड के मुझे चेंज करना है. शबीना ने बहुत अच्छा किया, शबीना मुझे बताओ कैसे किया, मुझे ऐसे करना है. जब एक दिग्गज कलाकार आपको ये कहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है.
1: जी
0: और वही चीज़ लेकर चल रही हूँ अपने कोरियोग्राफी के पीरियड में मैं. टचवुड, अभी तक कोई ऐसी हीरोइन नहीं आई जिन्होंने ये कहा कि ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है. क्योंकि मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ उनको. और मेरे डायरेक्टर जैसे सूरज बड़जात्या, जलते दिए, साड़ी पकड़ के एक मोमेंट है, चलना है. सूरज जी ने कहा, सोनम मुझे यही चाहिए. जब तो आपका डायरेक्टर आप पे भरोसा करता है
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: एक्टर फिर खामोश हो जाता है.
1: हाँ
0: और सलमान खान, उन्होंने
1: हाँ
0: जब वो गाना देखा, मैं और मेरा असिस्टेंट जो मेरा एसोसिएट कोरियोग्राफर है, मेरा छोटा भाई है, वो सगा भाई है,
1: जी
0: वो भी मेरे साथ रह रहे कि वो भी एक एक्टरों की तरह परफॉर्म करता है.
1: अरे वाह
0: हम दोनों ने जब करके दिखाया तो सलमान खान जी ने एक बात बोली कि मुझे पता चल गया मुझे कैसा करना है, मुझे इसकी तरह करना है. सोनम तू देख ले तुझे क्या करना है. तो सूरज जी ने बोला कि शबीना.
1: जी
0: तो वहाँ पे कभी कभी जब एक्टर कुछ बोलने जाता है तो आपका हीरो, स्टार, मेगा स्टार या आपका डायरेक्टर आपके साथ होता है तो फिर सब कुछ बैलेंस होके चलता है. और मेरे मामले में यही चीज़ मेरे साथ ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि जब ग्रेसफुली मैं करके दिखाती हूँ तो एक्टर लोग को लगता है, मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, आपका 50% भी हो जाए तो बहुत होगा.
1: हाँ,
0: उसके लिए आपको करना पड़ेगा, पहले
1: और उनको वहां तक लाना पड़ता
0: लाना
1: है,
0: पड़ेगा
1: मेहनत
0: आपको.
1: करनी पड़ती है.
0: उनके कैरेक्टर को मैं करके दिखाती हूँ, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं एक फिल्म एक वक्त में करती हूँ ताकि उस
1: हाँ
0: कैरेक्टर को जी पाऊँ, उसकी तरह बन पाऊँ, उसके जैसे लचक लाऊँ, उसके जैसे. वरना कैरेक्टर कुछ और कर रहा है, कोरियोग्राफर अगर कुछ और दिखा रहा है तो वो कैरेक्टर जी नहीं पाएगा फिल्म के अंदर बराबर से.
1: मतलब एक फिल्म जब बन रही होती है तो उसके पीछे एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक DOP और उसके कई सारे लोग, इनके पीछे
0: सारे
1: इनके असिस्टेंट,
0: एचओडीज
1: एक कोरियोग्राफर और उसके कई सारे असिस्टेंट, उन किरदारों को खुद में जी रहे होते हैं.
0: बिल्कुल.
1: और तब कहीं जाके वो अकेला अभिनेता या अभिनेत्री नहीं जी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उस
0: तभी
1: किरदार को
0: प्रेम
1: जी रहे
0: रतन
1: होते
0: धन
1: हैं.
0: पायो बनी है. मैंने वो ही फिल्म की 1.5 साल और कोई फिल्म को हाथ नहीं लगाया. ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, लेकिन उसके पीछे राज यही है कि पूरी फिल्म जब मैं अकेली कर रही हूँ, ये
1: जी
0: पूरी फिल्म मेरी अपनी फिल्म है,
1: जी
0: इसका कोई भी कोना, कोई भी म्यूजिक मेरे हाथ से ना निकल जाए. और उस कैरेक्टर को मैं मैथिली को जीने लगी
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: सोनम का कैरेक्टर
1: जी
0: है. फिर मुझे प्रेम को भी जीना है, फिर मुझे सूरज बड़जात्या जी को जीना है,
1: वो दो छोटी बहनों को भी जीना है
0: उनको भी
1: बीच
0: जीना
1: में
0: है, हर एक कैरेक्टर को जीना है.
1: जी.
0: तो फिर उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी तो ये ऐसी फिल्में बनती है. अगर आप मेरा करियर स्पैन देखो, जितने साल मैंने काम किया है, मैंने मल्टीपल फिल्में क्वांटिटी में नहीं की है, मैंने क्वालिटी में की है.
1: तो ये बढ़िया बात आपके साथ चल रही है, और इसके बीच मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूं, क्योंकि इतनी अच्छी बात आपने बताई है, और शायद हमारे श्रोता भी इस बात को सुनकर समझ पा रहे होंगे. वहां तक
0: बिल्कुल
1: पहुंच, मैं तो सेट तक पहुंच चुकी थी, तो हमारे श्रोता भी सेट तक पहुंच ही रहे होंगे
0: बिल्कुल.
1: थे, तो ये लग जा गले तो सुनाना बनता है.
0: उफ, प्लीज.

0: तो आपका पसंदीदा गीत, और ये कहूँ पूरी यूनिवर्स का पसंदीदा गीत, मदन जी ने क्या बढ़िया इसमें संगीत
1: बिल्कुल।
0: दिया है, क्या बढ़िया इस गीत को गाया गया है और क्या फिल्माया गया है।
1: मैं फिल्माने पे अगर कुछ बोल पाऊँ
0: हाँ
1: इस
0: हाँ
1: पर,
0: बिल्कुल
1: अगर
0: जी,
1: आप इस गाने को फिर से मेरे मेरे इस
0: आपके
1: इंटरव्यू
0: नजरिए
1: के
0: से।
1: बाद अगर आप वापस से जितने आपके शो होता है वो भी देखें, तो उन्हें समझ आएगा कि इस गाने को ब्लैक एंड व्हाइट पे शूट किया गया। कोई सोच सकता है कि हर एक शॉट मूवमेंट में है, वहाँ पे कैसे शूट किया होगा, हर एक शेडो के साथ। कैमरा का जब एंगल चलता है, कई बार हाथ में कैमरा लेके डीओपी ने शूट किया होगा, लेकिन उसकी स्मूथनेस, उसकी अदायगी देखिए। वो एडिट पे संभाला हुआ गाना नहीं है, वो वैसे शूट किया गया है। इसको पिक्चराइज इतना बढ़िया किया गया है कि मैं हर गाना आज भी शूट करने से पहले लग जा गले देखती जरूर हूँ,
0: अच्छा
1: क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आप शेडो क्रिएट कर रहे हो चेहरे के ऊपर।
0: हाँ
1: जंगल में वो गाना शूट हो
0: हाँ
1: रहा है और दो लोग
0: लाइट
1: हैं,
0: इफेक्ट्स इतना खूबसूरत आ रहा
1: बिल्कुल
0: है जी,
1: दो ही लोग हैं और कुछ नहीं है,
0: कुछ नहीं है
1: और दोनों हर फ्रेम में है,
0: और बहुत ज्यादा लाइट्स भी नहीं दिखाई
1: लाइट्स
0: गई
1: भी
0: हैं
1: नहीं है।
0: बैकग्राउंड में, क्योंकि वो
1: तो
0: जंगल का है।
1: उसको वो जो सूदिंग वो गाना अगर सुनने में प्यारा है, तो देखने के बाद भी लोगों ने उसको उतना ही पसंद
0: जी
1: किया है।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ पे कोरियोग्राफर आता है बीच में, कि
0: तो ऐसे
1: कोरियोग्राफर एक
0: गानों में भी
1: म्यूज,
0: कोरियोग्राफर का काम
1: बिल्कुल
0: होता है,
1: बिल्कुल
0: सिर्फ
1: होता
0: नाचने के लिए नहीं बाकी।
1: है, बिल्कुल होता है। आपने अगर अभी मेरा एक गाना सुनाया है जलते दिए,
0: जी
1: और आप ये गाना देखिए, आई
0: जी
1: वॉज इंस्पायर्ड बाय लग जा गले
0: जी
1: फॉर शूटिंग माई सॉन्ग जलते दिए।
0: जी
1: तो बींग अ सेंसिबल कोरियोग्राफर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शूट सच सॉन्ग्स विथ योर डायरेक्टर।
0: जी
1: डायरेक्टर नॉर्मली मूवमेंट वाले शॉट नहीं लेते, लेकिन म्यूजिक की डिमांड होती है,
0: कि मोमेंट हो।
1: मोमेंट हो, कैमरा कॉम्प्लीमेंट करे जो लग जा गले में हुआ है।
0: जी
1: कैमरा इज कॉम्प्लीमेंटिंग एवरी इमोशन ऑफ साधना जी और
0: अरे
1: मनोज कुमार जी,
0: बहुत खूबसूरत गीत है।
1: और कैरेक्टर्स देखो उसके जो जी रहा है कोरियोग्राफर उस गाने में। इसी को मैं कहती हूँ कि अपने कैरेक्टर को जीना एक कोरियोग्राफर को आना चाहिए।
0: तो इतनी अच्छी बात के बाद तो ये गाना बनता है, तो जल्दी से सुना देते हैं ये लग जा गले।

जानी मनी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
2: परेशान हूं मैं।
1: विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय बदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
3: हमारी जो डिसऑर्डर्स है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
5: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
5: और
6: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त तथा विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक छात्र संगठन है। उन्होंने मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और

0: विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये संगठन अपनी सेवाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाकर शहरी बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, काश 24 और काउंसलिंग फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
1: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। पार्टी सांसद तरुण चुग ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर, वकील, व्यापारी और अन्य लोग अपनी सुरक्षा के लिए माफियाओं को जबरन वसूली की रकम देने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज टेंडोग लेहो रम फाट के अवसर पर सिक्किम के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि ये त्यौहार लेप्चा समुदाय की समृद्ध संस्कृति और विरासत तथा उनकी भूमि के बीच अटूट संबंध का एक सुंदर उत्सव है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति के इस संगीतमय कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में कभी खुशी कभी गम फिल्म का गीत। संगीत संदेश शंडलिया का है। गीत के बोल लिखे हैं अनिल पांडे ने।

ये गीत अभी आपने सुना कच्चे धागे फिल्म से। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विथ मी योर आरजे चेतन। मेडिकल हिस्ट्री में अहम रोल प्ले करते हैं रेगुलर हेल्थ चेकअप। डॉक्टर्स कहते हैं कि रेगुलर हेल्थ चेकअप से न सिर्फ किसी बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़कर उसका इलाज किया जा सकता है, बल्कि ये किसी व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री को भी बताने में भी काफ़ी मदद करती है। हेल्थ चेकअप के

द्वारा डॉक्टर को मरीज का इलाज करने में अच्छी समझ मिलती है। साथ ही उसे डॉक्टर मरीज की बॉडी और उसके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छी तरह से समझ पाता है। इसके आधार पर डॉक्टर मरीज को दवाइयाँ और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की सलाह देता है। लोग क्यों नहीं कराते रेगुलर हेल्थ चेकअप? अगर आम आदमी की बात करें तो वो अपने बजट को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। आम आदमी के रेगुलर हेल्थ चेकअप न कराने के पीछे उसका बजट एक कारण है। कई बार लोग हेल्थ चेकअप के फायदे के बारे में जागरूक तो होते हैं, लेकिन वो इसलिए इसे रेगुलर बेसिस पर नहीं कर पाते क्योंकि वो उनके हेल्थ प्लान में शामिल नहीं होता है। दरअसल अधिकतर हेल्थ प्लान पैथोलॉजी टेस्ट जैसे ही ब्लड और यूरिन टेस्ट, हार्ट इमेजिंग टेस्ट लाइक एक्सरेज एंड अल्ट्रासाउंड, किडनी टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट को शामिल नहीं करता है। ऐसे में लोग अलग से इन्हें कराने से कतराते हैं।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। तो दोस्तों, अब सुनिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करने के फायदे। अपने बीमार होने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। खतरनाक स्वास्थ्य स्थितियों और जानलेवा बीमारियों का जल्दी पता लग जाता है। बीमारी का पता लगने पर इलाज और उपचार में मदद मिलती है। मौजूदा स्थितियों की बारीकी से निगरानी करके जटिलताओं के जोखिम को सीमित किया जा सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद मिलती है। महंगी चिकित्सा सेवाओं से बचकर स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम किया जा सकता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप से डॉक्टर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, जो इलाज को आसान बनाती है। नई चिकित्साओं और तकनीक की जानकारी मिलती है। तो इतने फायदे हैं दोस्तों, और बहुत कुछ भी सीखने को मिलता है दोस्तों अपने हेल्थ के बारे में। तो ध्यान से सुनिए लम्हे प्रोग्राम चेतन से।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। एक महिला को परिवार की रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाता है, क्योंकि वह हर जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात काम करती है और घर के हर सदस्य की देखभाल, हर चीज और हर किसी की देखभाल करती है। एक महिला घर की हर जरूरत और अनुरोध को पूरा करने के लिए दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करती है। कई बार इस वजह से महिलाएं अपने सेहत को भी नज़रअंदाज कर देती है, इसलिए एक महिला को विशेष देखभाल और समय पर कुछ स्वास्थ्य परीक्षण और जांच कराने की आवश्यकता होती है, वे अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रह सके और सेहतमंद रहे। रूटीन ब्लड टेस्ट संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने में मदद करता है। ये टेस्ट एक महिला के समग्र शारीरिक स्वास्थ्य की जांच करने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। नियमित अंतराल पर परीक्षण करवाने से महिलाएं देख सकती है कि समय के साथ उनका शरीर किस तरह से बदलता है और उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचना निर्णय लेने के लिए जागरूक होना है। रूटीन ब्लड टेस्ट में आमतौर पर ब्लड प्रेशर टेस्ट, एनीमिया परीक्षण, ब्लड शुगर टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, विटामिन डी सहित अन्य टेस्ट शामिल है। एक महिला साल में 2 बार इन रक्त परीक्षण को करना चाहिए। मैमोग्राम मूल रूप से महिलाओं के स्तनों का एक्सरे होता है। मैमोग्राम स्तनों कैंसर के लक्षण को पता लगाने में मदद करता है। यह महिलाओं में कैंसर से संबंधित मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। एक महिला को आमतौर

पर 40 साल की उम्र के आसपास अपना मैमोग्राम करवाना शुरू कर देना चाहिए और फिर हर एक या दो साल के बाद इसे दोहराना चाहिए। कुछ डॉक्टर आपको 50 साल की उम्र तक मैमोग्राम करने की सलाह दे सकते हैं। ये परीक्षण एक महिला के स्तनों में होने वाले सौहार्दपूर्ण परिवर्तन जैसे गांठ, असामान्य त्वचा और अन्य की पहचान करने के लिए किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को यह परीक्षण नहीं कराना चाहिए। कैंसर संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों की जांच के लिए पेल्विक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों। 21 साल की उम्र के आसपास में एक बार पेल्विक टेस्ट करवाना चाहिए। एक बोन डेंसिटी टेस्ट एक महिला के शरीर के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कूल्हे, एड़ी और कलाई में हड्डी के द्रव्यमान को मापती है। BMD ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक है। ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें उनकी हड्डियां भंगुर और कमजोर हो जाती है और टूटने के लिए अति संवेदनाशील हो जाती है।

और अन्य की पहचान करने के लिए किया जाता है। गर्भवती महिला को यह परीक्षण नहीं कराना चाहिए। कैंसर संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों की जांच के लिए पेल्विक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों। 21 साल की उम्र के आसपास में एक बार पेल्विक टेस्ट करवाना चाहिए। एक बोन डेंसिटी टेस्ट एक महिला के शरीर के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कूल्हे, एड़ी और कलाई में हड्डी के द्रव्यमान को मापती है। BMD ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक है। ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें उनकी हड्डियां भंगुर और कमजोर हो जाती है और टूटने के लिए अति संवेदनाशील हो जाती है। विभिन्न मशीनों का उपयोग करके बोन डेंसिटी टेस्ट किया जा सकता है। इस सभी स्क्रीनिंग टेस्ट को हर महिला को समय समय पर जरूर करवाना चाहिए, जिससे सेहत की उचित देखभाल के साथ चिकित्सकीय परामर्श लिया जा सके और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने RJ चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media.

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
1: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
2: आज के सुहाना सफर प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। नमस्कार। आज इस प्रोग्राम में जिस पर्सनैलिटी से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, उन्हें भारतीय सेना की पहली महिला कैडेट लेडी कैडेट नंबर 001 होने का गौरव प्राप्त है। इसके साथ साथ उन्होंने नॉन मेडिकल शाखा में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और सेवाएं देने के बाद आजकल रिटायर हो गई हैं। रिटायर होने के बाद भी उनका जो सफ़र है थमा नहीं है, रुका नहीं है, लगातार जारी है। बहुत से काम कर रही हैं, जैसे लीडरशिप ट्रेनर हैं, शिक्षाविद हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज इस प्रोग्राम में हमने सोचा कि इन्हें बुलाएं, इनसे बातें करें और इनके ये शानदार जानदार करियर के बारे में, सफर के बारे में जानें। तो आइए मिलते हैं मेजर प्रिया झिंगन, रिटायर्ड। तो मेजर प्रिया झिंगन जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद अनिल जी। आई हैव नेवर सेड कि मैं रिटायर्ड हूँ, आई विल बी अ मेजर ऑलवेज। तो मैं अपना नाम मेजर प्रिया झिंगन फिनिश्ड।
2: जी जी जी। तो हमने ऑफिशियली आपको इंट्रोड्यूस करवाया है जी। आप तो देखने में भी रिटायर्ड नहीं लगती हैं, मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा और यही जज्बा है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव सोच है कि आप अपने आप को रिटायर्ड नहीं कहती हैं जी। लेकिन परिचय तो ऑफिशियल होता है
3: जी, आई अंडरस्टैंड।
2: तो इसलिए श्रोताओं को आपके परिचय में हमने मेजर प्रिया झिंगन रिटायर्ड कहा
3: जी।
2: लेकिन आप दिल से नहीं मानती हैं, बहुत अच्छी बात
3: बिल्कुल
2: है। मेजर प्रिया झिंगन जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए।
3: मेरा जन्म शिमला में हुआ था, हिमाचल प्रदेश शिमला में। मेरी स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ से लॉ पढ़ा है। तो सारी मेरी पैदाइश और एजुकेशन, अपब्रिंगिंग हिमाचल प्रदेश में हुई है। मेरे पापा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे और मेरा एक भाई, एक बहन, हम सब। तो मेरी बहुत ही ब्यूटिफुल चाइल्डहुड रही है। उसके बाद फौज का सफर, उसके बाद

0: आज चालू हुआ था, आपको बताते हैं उसके बारे में।
1: जी जी जी, आपने कहा आप शिमला से हैं।
0: जी,
1: और शिमला कहाँ से? शिमला तो बहुत बड़ा।
0: शिमला बहुत बड़ा है, लेकिन हम हैं छोटा शिमला से।
1: अरे वाह, छोटा शिमला से आप बिलोंग करती हैं, और जो पूरा प्रोफाइल है उसे देखें तो आपने जिंदगी में काम बहुत बड़े बड़े किए हैं।
0: हाँ, ये सही बात है कि छोटे शहर के लोग बड़े बड़े काम करने में मशहूर हैं।
1: और आपने ये बताया कि आपके पिताजी पुलिस ऑफिसर थे, उन्हें देखते हुए वर्दी में आपको लगा कि मुझे भी आर्मी ज्वाइन करनी।
0: बिल्कुल, पहले तो अनिल जी मेरा प्लान यही था कि मुझे पुलिस ही ज्वाइन करनी है। तो जब पापा आते थे वापस ऑफिस से, तो मैं उनकी फेल्ट, उनकी बेल्ट, उनके जूते, यूनिफॉर्म पहन के शीशे के सामने बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करते थे कि आई एम अ ऑफिसर।
1: देखो पापा में कैसी लग रही
0: है। आई वुड प्रिटेंड इन द मिरर कि आई एम अ पुलिस ऑफिसर।
1: देखो मैं पुलिस ऑफिसर। हाँ, तो पापा को भी दिखाती थी आप?
0: पापा को मुझे ऐसा याद नहीं है, ये मेरा अपना ही इंटरनल सपना चला हुआ था।
1: तो अपने बहन भाइयों को, मम्मा को?
0: नहीं, मुझे नहीं ऐसा कुछ याद कि किसी के साथ इसको।
1: एक्चुअली हम इस प्रोग्राम में कुछ याद करवाने की कोशिश भी करते रहते हैं।
0: नहीं, हमने कभी ऐसे इसको डिस्कस नहीं किया।
1: नहीं किया, अच्छा।
0: लेकिन हाँ, पापा को हम बोलते थे हमारे साथ जब माल पे चलोगे तो आप प्लीज यूनिफॉर्म में चलना, क्योंकि हमें अच्छा लगता था कि बस यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, व्हाट इट स्टूड फॉर। तब भी वो दिमाग में था कि व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, द यूनिफॉर्म।
1: यूनिफॉर्म आपको लुभाती थी?
0: जी, एकदम एकदम।
1: तो आपको उसके देख कर कुछ होता था कि कुछ मैं भी ऐसा करना चाहता।
0: बिल्कुल।
1: आर्मी का जो सपना है, ये कौन से इस साल में शुरू हुआ?
0: जब सपना शुरू हुआ, आई वॉज इन क्लास 9, नवी कक्षा में थी। दिस शुड बी 1983।
1: शिमला में थी?
0: हाँ जी, हम शिमला में ही थे। तो हमारे स्कूल में, लोरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल में, गवर्नर आई थी। तो वो जब गवर्नर आए, उनके साथ उनका एक आर्मी ऑफिसर ADC वो आया साथ में
1: जी।
0: तो उनकी यूनिफॉर्म देख के, तो पुलिस की यूनिफॉर्म भूल के अब आर्मी की यूनिफॉर्म के ऊपर दिल आ गया टोटली। तो हम सब गर्ल्स थे, उनको देखे जा रहे हैं, सब लड़कियां उनको देख रही हैं। सब लड़कियां कहने लगी कि भाई आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर। मैंने सोच लिया है, मैंने शादी करनी है तो अब आर्मी ऑफिसर से।
1: मेरे सपनों का राजा आर्मी ऑफिसर।
0: तो मैंने वहां पे खड़े होके, जब ये सब लोग कह रही थी, आई सेड एक्सक्यूज मी गर्ल्स, आई एम गोइंग टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर
1: जी।
0: तो ये सपना, अगर कोई कहते हैं ना, इसकी शुरुआत फौज के फौजी यूनिफॉर्म पहनने की कहां से हुई, तो वो ये मोमेंट था,
1: ये शुरू हुई
0: 1983।
1: अच्छा, वो पल कब आए जब आपने आर्मी का पेपर दिया होगा, आर्मी के लिए ज्वाइन किया होगा?
0: जी, तो ऐसा है कि अब सपना तो देख लिया, लेकिन ये सपना एक असंभव सपना था, क्योंकि कोई प्रोविजन नहीं थी फॉर वुमेन टू ज्वाइन द आर्मी। कोई महिलाओं के लिए था ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं था,
1: कोई सोच नहीं थी।
0: सिर्फ मेडिकल में थी, डॉक्टर्स थी, नर्सेस थी, लेकिन ये था ही नहीं।
1: तो ये या इतनी बात थी कि जीवन साथी आर्मी ऑफिसर होना चाहिए,
0: ये मैंने तो ये भी नहीं, मैंने नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं सोचा।
1: या ये, उस वक्त ये सोच थी
0: जी,
1: इससे ज्यादा और कुछ नहीं था कि जो महिलाएं हैं कि वो ज्वाइन करें आर्मी को,
0: कैन ज्वाइन ओनली एज एन ऑफिसर्स वाइफ। हाँ, तो दिमाग में अब ये सपना तो हो गया। उसके बाद स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज, जब कॉलेज खत्म होने वाला था, तो तब उन दिनों में मैगजीन रहा करती थी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज
1: जी।
0: तो वो देख रहे थे, क्योंकि तब सोच रहे थे अब क्या करना है क्या करना है। तो उसके अंदर एक एडवर्टाइजमेंट देखी, जहां पे देयर वाज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर यंग मेन टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी
1: जी।
0: मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार इसको पढ़ा जाए अच्छे से। तो उसको पूरा पढ़ा, तो देखा सारे टिक हो रहे हैं, सब कुछ टिक हो रहा है, हाइट, एज, एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस, सब कुछ फिट हो रहा है, बट आई एम नॉट अ यंग मैन। तो ये तो बड़ी गलत बात लगी मुझे।
1: यू आर यंग वुमन।
0: यस, मुझे लगा ये कुछ ठीक नहीं है, इसका कुछ किया जाए, पर क्या किया जाए। मुझे फौज के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, कोई मेरे रिश्ते में रिश्तेदार, कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था।
1: लेकिन आपको स्ट्राइक किया कि व्हाई नॉट वुमेन?
0: यस, आदमियों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने देश की रक्षा करे, और हम बैठे हैं घर में, हमें क्यों ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही
1: है? ये कौन से सन की बात है?
0: दिस शुड बी लेट 80s। तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना जिन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट दिए, इन्हीं को वापस पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।
1: अच्छा,
0: तो मैंने अपनी नोटबुक में से एक पेज फाड़ा और एक चिट्ठी लिख दी। तो ये एडवर्टाइजमेंट थी ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
1: उस समय के,
0: जी, जो कि थे जनरल SF रॉड्रिग्स
1: जी।
0: तो मैंने एक चिट्ठी लिख दी उनको और सब लिख दिया उसके अंदर कि मैं बचपन से आई वॉज फिजिकली वेरी फिट, हिमाचली होते ही हैं हमको चलना दौड़ना।
1: आज भी आप फिट लग रही हैं, माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं।
0: थैंक यू। तो उन्हें लिखा अपने बारे में, और फिर ये जरूर लिखा नीचे कि सिर्फ मैं नहीं, इतनी सारी और महिलाएं होंगी जो फिट हैं आपकी फौज के लिए, जिनका दिल करता है कि वो भी अपने कंट्री को सर्व करे, तो आप ये अपॉर्चुनिटी हमें क्यों नहीं देते।
1: अच्छा, चिट्ठी में और क्या था? वैसे छोटी सी चिट्ठी।

0: हाँ बस सिर्फ सिर्फ देखिए
1: बस आपका सवाल ये था कि हमें मौका क्यों नहीं,
0: हाँ हमें भी मौका दीजिए क्यों नहीं। तो मुझे नहीं लगता था नंबर वन ये चिट्ठी कभी पहुंचेगी, नंबर टू ये चिट्ठी कोई पढ़ेगा, नंबर थ्री ये चीफ तक पहुंचेगी, नंबर फोर वो कभी वापस रिप्लाई करेंगे। लेकिन अनिल जी
1: वो सब कुछ हुआ,
0: वो सब कुछ हुआ,
1: क्या बात।
0: और दो हफ्ते के अंदर अंदर मुझे आर्मी हेडक्वार्टर से जवाब आया, जनरल रॉड्रिग्स का,
1: भारतीय सेना है
0: जी, जनरल रॉड्रिग्स का इंक साइंड लेटर आया और उन्होंने कहा कि ही वाज वेरी हैप्पी के इतने इंथुजियास्टिक गर्ल्स हैं और बड़े खुश हुए वो ये देख सुनकर कि हम चाहते हैं कि हम भी भारतीय फौज का हिस्सा बने। तो उन्होंने लिखा कि प्रिया तुम अपनी पढ़ाई अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, अभी ये होगा लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा।
1: लो आपको तो पंख लग गए।
0: पंख तो लग गए लेकिन ये अब टाइमलाइन की बात थी कि कितना हाँ। टाइम लगेगा। तो मैंने फिर वो एडवर्टाइजमेंट में दोबारा,
1: कौन सी ईयर की बात है,
0: दिस इज 89 की बात है। तो मैंने वापस एडवर्टाइजमेंट में देखा कि अगर आप लॉ पढ़ते हैं तो आप भारतीय फौज 28 साल की उम्र तक भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई मस्ट बी 21 दैट टाइम
1: एज ए लॉ ग्रेजुएट।
0: हाँ जी, एज ए लॉ ग्रेजुएट। तो मुझे लगा कि भाई ये दिस इज द सेफेस्ट वे, तो इसलिए हम हिमाचल यूनिवर्सिटी में गए और जाके हमने लॉ कर लिया।
1: मतलब अपने सपने के लिए आदमी कुछ भी करता है,
0: कुछ भी। मतलब मेरा ये सपना इतना स्ट्रांग था, जैसे जुनून था एक, कि कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूं।
1: लेकिन यूनिफॉर्म पहनी आर्मी की।
0: बिल्कुल।
1: फिर वो समय कब आया जब आपने पेपर दिया और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई?
0: जी, तो मैंने लॉ खत्म कर लिया और जब लॉ में भी मुझे लोग पूछते थे कि आप लॉ क्रिमिनल करेंगी के सिविल करेंगी इसके आगे, तो आई उससे मिलिट्री लॉ, तो हंसते थे मेरे ऊपर कि क्या बोल रहे हो तुम, मिलिट्री में तो कोई लॉ, मिलिट्री लॉ तो एप्लीकेबल नहीं आपको। तो लॉ खत्म हो गया और उसके बाद पापा ने कहा कि चलो भाई अब आप ज्वाइन करो किसी एडवोकेट को, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी। तो ऐसे मुझे तो ये करनी नहीं है, मुझे तो लॉ, मुझे प्रैक्टिस करनी नहीं है। फिर क्यों की लॉ? क्योंकि मुझे फौज ज्वाइन करनी थी, फौज
1: में तो हाँ,
0: तो फौज ज्वाइन करनी थी, लॉ तो बाय चांस किया है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा अभी तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, आपको वेट भी कर रहे हो तो ऐसे घर में बैठ के थोड़ा ना वेट करोगे,
1: कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा।
0: हाँ, आप करो, ज्वाइन करो। तो हमने वहाँ के एडवोकेट जनरल को ज्वाइन किया, अप्रेंटिस बने उनके। और पर मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे प्रैक्टिस में बिल्कुल कोई शौक नहीं था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो फिर हुआ ऐसे कि मुझे 6-7 महीने हो गए प्रैक्टिस करते और एक दफ़ा हम कोर्ट में बार रूम में बैठे हुए थे और न्यूज़पेपर देखा और न्यूज़पेपर के सेंटर पेज में एक आर्मी ऑफिसर, लेडी आर्मी ऑफिसर का स्केच था और उसके ऊपर हेडिंग दिया हुआ था आर्मी द वुमेन बेकन्स यू। तो ये पहली दफा उन्होंने महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे,
1: रे ऑफ होप।
0: यस, रे ऑफ होप, तो ये तो दरवाजा ही खुल गया था, क्या पूरा। हाँ, होप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जैग ऑफिसर्स के लिए सिर्फ दो एंट्रीज थी
1: ना,
0: तो मुझे ऐसे लगा
1: कॉम्पिटिशन भी होगा ना।
0: जी, ऑफ कोर्स।
1: तो यहाँ से उस दरवाजे से आपकी एंट्री हो गई।
0: जी,
1: अब आर्मी में आप गई हैं तो जाहिर सी बात है ट्रेनिंग भी होगी।
0: जी,
1: तो ट्रेनिंग के बारे में बताइए। ट्रेनिंग, अब बीइंग अ लेडी, और कुछ फर्क तो होगा, आपको महसूस हुआ होगा?
0: तो ऐसा है, मैंने अपने आप को बिल्कुल ट्रेन करके रखा था। आई वाज रेडी फॉर द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। पहले, इसके पहले हम एसएसबी के लिए गए थे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, जहाँ पे भी आपका फिजिकल फिटनेस देखा जाता है। आई वाज एब्सोल्युटली फिट, इनफैक्ट मैंने अपने जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे अंडर टाइम किए और उनको रिपीट करना भी शुरू कर दिया था।
1: एसएसबी पहली बार में ही क्लियर कर लिया?
0: जी, फर्स्ट टाइम।
1: कमाल है।
0: और अनिल, आपको ये सोचिए कि हमारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं थे, कोई पढ़ के नहीं गए, कोई प्रिपेयर करके नहीं गए कि वहां पे
1: नहीं
0: क्या
1: होता, क्या एसएसबी,
0: हाँ,
1: होता क्या,
0: पता नहीं है क्या है। लेकिन वही ना, मतलब आपका जब आपको दिलो दिमाग से आपको कुछ चाहिए तो आप अपना यू विल गिव योर बेस्ट। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में भी ऐसा ही था। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में सिर्फ बदलाव ये हुआ कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेडी कैडेट नंबर 1 की। तो जो भी था, हम एक लाइन में खड़े होते थे, मेरे साथ और वी वर 25 लेडी कैडेट्स, 25 थे।
1: अच्छा, 25 में से आपका पहला नंबर था, रोल नंबर 1।
0: जी,
1: तो रोल नंबर 1 मिलने में कोई खास कुछ आपने किया जिसके लिए लेडी कैडेट नंबर 1 बनी?
0: मुझे इसके
1: या मेरिट में थी।
0: आई नो दिस मच कि हाँ, मेरिट में थे, इसीलिए आपकी लिस्ट बनती है। पर एनीवे, जब हम वहाँ पे पहुंचे तो मुझे बताया गया कि आप लेडी कैडेट नंबर 1 है, और मैंने ना कभी सोचा ना ध्यान दिया कि क्यों हूँ मैं लेडी कैडेट नंबर, एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग टू वेयर द यूनिफॉर्म मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
1: उसका कारण ये था कि आपने ही ये बीड़ा उठाया।
0: आई वुड लव
1: उसका

0: उसका ये नतीजा है, उसका ये फल है।
1: मुझे आई वुड लव टू बिलीव दैट, पर मैं इसको 100% मतलब ये नहीं कह सकती। अगर मैंने लेटर ना लिखा होता, हो सकता है मैं तब भी लेडी कैडेट नंबर वन होती, या हो सकता है लिखने के बावजूद भी ना होती। तो इसके ऊपर कोई इतनी मैम कॉमेंट आई डोंट थिंक वो है।
0: चलिए हम मान लेते हैं।
1: अच्छा ठीक है, जो भी कोई एक्टिविटी है, बी इट शूटिंग, बी इट स्विमिंग, बी इट ऑब्स्टिकल कोर्स, जो भी है, सबसे पहले मुझे करना है और उसके बाद मेरे पीछे वाले करेंगे। तो जोर से रिपोर्ट करते हैं, लेडी कैडेट नंबर वन प्रिया जिंदल रिपोर्टिंग सर, और उसके बाद करो। तो मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं यहाँ पे चूक गया, कोई भी गड़बड़ हुई मुझसे, तो जो बाकी लोग हैं मेरे 24 पीछे हैं, उनके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल है, हमें फर्स्ट टाइम डाइविंग बोर्ड पे लेके गए, 5 meters डाइविंग बोर्ड, और शिमला में तो मैंने कभी स्विमिंग पूल भी नहीं देखा था, तो ये यहाँ पे जा पे उसमें जंप करना था, तो मेरे लिए वो एक चैलेंज था। लेकिन क्योंकि ये भी पता था कि अगर नहीं किया तो बाकी सब क्या सोचेंगे, और मैंने छलांग मार दी अंदर बिना सोचे समझे कि अगर मुझे तैरना आता है, नहीं आता, कौन बचाएगा, पर इट वॉज डू और डाई। तो छलांग मार दी, उन्होंने मुझे नीचे से निकाल दिया, लेकिन बाकी 24 ने भी उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक छलांग मार।
0: उन्हें लगा कि आप कर सकती हैं तो हम भी करते हैं।
1: और
0: मतलब
1: हम...
0: लेडी कैडेट नंबर वन होने की जिम्मेदारी आप पे ज्यादा थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: शुरुआत आपसे होती थी और आपको ये लगता था कि इस जिम्मेवारी का निर्वाह मुझे बिल्कुल सही तरीके से करना है।
1: बिल्कुल,
0: मैं जो करूंगी उसका असर बाकी 24 जो कैडेट्स हैं उन पर पड़ेगा।
1: और नॉट ओनली बाकी 24, हम 25 ने, जो हम 25 थे, हमारे ऊपर पूरे देश का नजरें थी, पूरे देश की नजरें थी कि ये कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। तो हमने सोच रखा था कि हम तो अच्छे से करके दिखाएंगे, चाहे इतनी शक्ति हो, चाहे इतनी मेंटल पावर हो कि नहीं, वी विल गिव इट आर ऑल, वी विल प्रूव आवर सेल्व्स कि हम कर सकते हैं।
0: इसी का नाम तो महिला सशक्तिकरण है।
1: बिल्कुल,
0: और यही
1: बिल्कुल
0: शक्ति है जिसको हम सब सलाम करते हैं। और देखिए आज ये जो तमाम बातें आप हमें बता रही हैं इस प्रोग्राम में हमारी महिलाएं लिसनर्स भी हैं, और मुझे लगता है कि जो अपना करियर बनाना चाहती हैं इस फील्ड में, उनको आज बहुत मोटिवेशन मिल रहा है।
1: जी,
0: आप एज ए मोटिवेटर के तौर पे जो आपकी बातें हैं तो आपकी अपनी, लेकिन आप जिस तरह से बता रही हैं वो सबको मोटिवेट कर रही हैं, हमें ये लगता है।
1: जी,
0: तो उनके सफर में भी ये काम आने वाली है। तो ये तो हो गई आपकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद हमने आपके प्रोफाइल में ये पढ़ा कि आपको पासिंग आउट परेड में रजत पदक भी मिला।
1: जी,
0: उन पलों के बारे में कुछ याद आता है, कैसा लगा आपको जब आपका नाम जो है वो अनाउंस हुआ?
1: जी,
0: ये पदक प्रिया झिंगन जी को जा रहा है।
1: जी,
0: रजत।
1: तो जब ये मिला तो जैसे बोलते ना, आपका सपना साकार हो गया। मुझे अच्छे से याद है कि जब परेड हो रही थी और मेरे पास सॉर्ड थी और मैंने उसको राइट साइड घुमाया सल्यूट में, तो मेरी नजरें मेरी मम्मी पापा से मिली।
0: अरे वाह।
1: और मेरी जिंदगी का वो एक ऐसा मोमेंट है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उनकी आंखों में इतना प्राइड था, इतना प्यार, इतना तो क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त, वो डायरेक्टली मैंने फील किया। और मुझे लगा कि आज, क्योंकि बचपन में आई वॉज अ वेरी नॉटी चाइल्ड, कि आज दे विल बी प्राउड ऑफ मी, आज मैंने उनकी जो भी मेहनत थी वो सफल की है, आज उन्हें लगा कि हाँ भाई हमारे बच्चे ने कुछ कर दिया।
0: उनको ये भी लगा होगा कि बेटे ही सपना पूरा नहीं करते।
1: बिल्कुल,
0: बल्कि बेटी भी सपना पूरा करती है अगर उसे माहौल मिले और बेटी की चाह हो और उस राह पर चलकर वो सब कुछ हासिल कर लेती है।
1: जी, तो अनिल जी, मुझे तो मेरे मम्मी पापा ने कभी बेटी की तरह ट्रीट ही नहीं किया। इनफैक्ट मेरा बोलने का ढंग भी ऐसे कि मैं अपने आप को ऐसे ही बोलता हूँ।
0: अभी भी आप कह रही हैं।
1: हाँ, तो इसलिए मुझे जब बात करते वक्त मुझे सोचना पड़ता है कि बोलती बोलना है। तो उन्होंने मुझे सारा मौका दिया, हर
0: पर हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं बेटी नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं अपने आप को बेटी नहीं समझती, मैं बेटा समझती हूँ। ऐसी क्या बात है बेटों में जो बेटी में नहीं है?
1: नहीं, ऐसा
0: यू शुड फील प्राउड ऑफ इट।
1: एब्सोल्युटली, लेकिन जब आप छोटे होते कि आपको ऐसे यू फील कराया जाता है कि आप बेस्ट हो, तब बेटा बेटी नहीं समझ में आता, तो ऐसे लगता है कि आई एम द बेस्ट। और हाँ, बोलने का तरीका ऐसा था।
0: आज आपको लगता नहीं आज समय जो है बदल गया, बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं? क्या आज ये चीज, ये सोच होनी चाहिए?
1: सोच तो कभी भी नहीं होनी चाहिए।
0: ये उस समय की है जब आप छोटे थे, उस वक्त माहौल ऐसा था जहां बेटों को ज्यादा तरजीह दी जाती थी, बेटियों को नहीं दी जाती थी। मुझे लगता है कि आज के दौर में तो माँ बाप के लिए बेटी और बेटा दोनों समान है।
1: आई एम श्योर मेरे वक्त में भी ऐसा ही था। पर ये है, हाँ, कई परिवार ऐसे थे जहाँ पे बेटियों को फौज में अलाउड नहीं किया था, बेटों को जाने दिया था, लेकिन

0: परिवारों में आज तक भी ये है। मैं किसी को जानती हूँ जिन्होंने अपने बेटी को फौज में जाने से मना कर दिया था और उनका बेटा जो उससे छोटा था, जो उससे लेस क्वालिफाइड था, उनको जाने दिया था।
1: तो आपके परिवार को हम सलाम करते हैं उस दौर में
0: जी,
1: जहां उन्होंने अपनी बेटी प्रिया को अपने पैशन से प्यार करने के लिए रोका नहीं,
0: बिल्कुल, सिर्फ
1: बल्कि उसे आगे बढ़ने का मौका दिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो प्रिया जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, इनफैक्ट बहुत मजा भी आ रहा है आपकी बातें सुनकर इस प्रोग्राम में, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जिस मेहमान से बात करवाएं उसके पूरे जीवन के बारे में थोड़ा ही सही वो शामिल जरूर करें
0: जी।
1: यहां तक तो आपका जो है आर्मी का सफर रहा, और आप ये बताइए आप रिटायर कब हुई? आप रिटायर नहीं लगती हैं, मैं पहले कह
0: नहीं, ठीक है। तो ऐसा है, जो ये हमारी एंट्री थी, इट वाज कॉल्ड WSES, वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम, जो सिर्फ 5 साल के लिए थी, और ये एडवर्टाइजमेंट में लिखा था, हमें पता था कि हम सिर्फ 5 साल के लिए जा रहे हैं। 5 साल हमने बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद आर्मी रियलाइज कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने हमको 5 साल और दे दिए। तो 1993 में हम कमीशन हुए थे और 2003 में हमें रिलीज कर दिया। समझ ही नहीं आया कि इसके आगे जिंदगी में करना क्या है,
1: करना क्या है,
0: क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तो इसीलिए पैदा हुआ हूँ, यही मेरी मिशन है और यही मुझे यही करना,
1: मुझे आर्मी नहीं छोड़नी है, मुझे आर्मी को
0: इसके अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं आता, मुझे यही करना है।
1: क्योंकि आपने कहा कि मैं अपने आप को रिटायर वैसे ही नहीं मानती हूँ।
0: एब्सोल्युटली। पर सच तो ये था कि हमें रिलीज पेपर्स मिल गए, तो वो कुछ हफ्ते मेरी जिंदगी के बड़े ट्राइंग टाइम्स थे, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि आगे करना क्या है। लेकिन फौज आपको अडेप्टेबिलिटी सिखाती है, आपको पता है कि बढ़ना तो है, खड़े नहीं रह सकते हो, रुकना नहीं है, चलो रुक नहीं सकते हो आप। तो बस फिर उसके बाद हर न्यू स्टेशन पे, हर न्यू प्लेस पे मैंने अपने आप को अपस्किल किया, मैंने अपनी पढ़ाई और आगे की, मैंने जर्नलिज्म किया।
1: इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले हम यहाँ अब रुकते हैं। ये आपका, आपके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है ना, वहाँ पर हम आएंगे। उससे पहले आपने तमाम आर्मी के सपने के बारे में बताया, ज्वाइनिंग के बारे में बताया, ट्रेनिंग के बारे में बताया, और मुझे लगता है कि आपकी उस एक चिट्ठी ने, जो आपने तब के आर्मी चीफ को लिखी थी, उस चिट्ठी ने महिलाओं के लिए रास्ते खोल दिए।
0: बिल्कुल।
1: दरवाजा आपने खोला, रास्ते आर्मी ने खोल दिए सबके लिए
0: जी।
1: तो इसका श्रेय आपको जाता है।
0: थैंक यू।
1: तो यहां हम रुकते हैं। मेजर प्रिया जी, आपके पसंद का एक गाना मुझे लगता है कि शामिल हो पाएगा, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं आपसे करने के लिए, तो बताइए अपनी पसंद का गाना।
0: तो ये आप सोचो कि बड़ा फौजी गाना है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है,
1: मोटिवेट करता है आपको
0: जी।
1: आज
0: हाँ,
1: भी है ना।
0: लक्ष्य फिल्म का एक सॉन्ग है, कंधे से मिलते हैं

0: प्रोग्राम सुहाना सफर में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मेजर प्रिया झिंगन, सेवानिवृत्त, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि प्रिया जी रिटायर्ड लगती नहीं आज भी आप बिल्कुल फिट लगती हैं
1: जी।
0: और इसका राज क्या?
1: माय डिसिप्लिन, मैंने अपना फौजी जो रूटीन था वो छोड़ा नहीं है
0: आज तक, नहीं छोड़ा।
1: दौड़ने का, भागने का, स्विमिंग का, ये सब
0: ये आपकी दिनचर्या में शामिल है।
1: जी जी जी, बिल्कुल।
0: आज भी जो आर्मी का डिसिप्लिन आपने सीखा अपने दौर में, अपनी सर्विस के दौरान, उसको आज भी आपने अपना कर रखा हुआ है
1: जी।
0: तो प्रिया जी, अब प्रोग्राम का समय तो बहुत कम रह गया है, लेकिन बातें बहुत हैं, तो जल्दी जल्दी आपसे और बातें भी जानना चाहेंगे। जहां जहां आप पोस्टेड हुई
1: जी,
0: अपने आप को अप स्किल करती रही
1: जी,
0: तो वो स्किल्स कौन सी आपने अपने आप के लिए तैयार की?
1: उस टाइम मेरी शादी हो गई थी और माय हस्बैंड वाज सर्विंग, तो उनकी सबसे पहले पोस्टिंग हुई।
0: अच्छा, वो भी आर्मी बैकग्राउंड के?
1: जी जी जी, तभी जी। तो हर जगह नया स्टेशन हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया। उसके बाद मैंने सिक्किम एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में काम किया 2 साल के लिए। हम वापस जलंधर आए, वहां पे मैंने एक MBA इंस्टीट्यूट में काम किया एज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग। मैंने लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सीखी और उसमें सिखाना शुरू किया दिल्ली में, इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग।
0: ये उस दौर में आपने सीखा और आज कौशल को बढ़ावा देने के लिए, स्किल को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है
1: जी। तो मैंने भी उसके बाद लॉरेंस स्कूल सनार ज्वाइन किया एज एन इंग्लिश टीचर। इसके पहले मैंने अपना BEd किया और वहाँ से पैंडमिक के टाइम में हम लोग आई केम टू चंडीगढ़, और यहाँ आके हमने देखा कि यहाँ पे लीडरशिप की बहुत कमी थी ड्यूरिंग द पैंडमिक। तो हमने एकेडमी स्टार्ट किया, इसके साथ साथ एक एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपनी जो मेरे हस्बैंड ने चालू की थी। हम इन दोनों को मर्ज करके एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि अब हम स्कूल के कॉर्पोरेट्स के सारे लोगों को लेके जाते हैं फॉर लीडरशिप एंड एडवेंचर ट्रेनिंग।
0: उसमें आपके हस्बैंड ही रहते हैं कि आप भी साथ रहती हैं?
1: हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एडवेंचर,
0: दोनों बिजी रहते हैं सारा दिन।
1: हाँ जी।
0: और मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में भी जानने को मिला आपके बारे में, किस तरह से मोटिवेट करती हैं, किस सब्जेक्ट पर करती हैं मोटिवेट आप?
1: देखिए, कभी कभी आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी जिंदगी को एक मिसाल के तौर पे दूसरों के सामने रख के बता सकते हैं कि देखो, अगर मैं एक छोटा शिमला से आई, कहाँ कहाँ तक की चीज़ें कर पाया हूँ, तो इट इज़ पॉसिबल फॉर एनीबडी टू डू एनीथिंग। हर इंसान हर कुछ कर सकता है, उसको रोकने वाला भी एक ही है और वो है खुद हम अपने आप को रोकते हैं। तो अगर आप बच्चों को मोटिवेट कर सके, उन्हें बचपन से नहीं तो स्कूल में, कॉलेज में ये समझा सके अपना उदाहरण देख के कि आप कुछ भी कर सकते हैं,
0: अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी
1: तो
0: कर
1: आप
0: सकते
1: क्यों नहीं। कोई ऐसे मेरे में इतनी कोई स्पेशल वो कुछ भर के नहीं, ऊर्जा भर के नहीं रखा था, ये ऑर्डिनरी लोग ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं।
0: लेकिन आपके दिमाग में एक क्लैरिटी थी कि आपने करना क्या है,
1: तो ये क्लैरिटी के बारे में दूसरों को उजागृत करने के लिए आई डू मोटिवेशनल लेक्चर्स। तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, पर जनरली वेकिंग अप टू लाइफ, बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ और टेकिंग अप अपॉर्चुनिटीज, ये अलग अलग सारे हैं जो आपको अपने बेस्ट वर्जन बनने में मदद करते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर।
0: तो प्रिया जी, आप लेक्चर भी देती हैं, लोगों को मोटिवेट भी करती हैं और हर तरह का काम आप कर रही हैं जिसके लिए लोगों का विकास हो, उनमें कहीं ना कहीं अपना भी विकास जो होता रहता है, क्योंकि विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी रुकती नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ नया शामिल होता रहता है
1: जी।
0: तो क्या आप लिखती भी हैं?
1: जी हाँ, लिखते इन द
0: सेंस लोगों के लिए लिखा भी है,
1: लोगों के लिए लिखा है। मैंने अपनी जो पूरी कहानी है जिंदगी की, मेरे पैदा होने से लेके अब तक की, एक किताब मैंने लिखी है।
0: समप की आपने?
1: जी हाँ, समप। उसका नाम है मार्चिंग ऑन। उसका नाम ये मार्चिंग ऑन इसलिए कि चाहे मैंने वर्दी अब नहीं पहनी हुई, लेकिन मैं अभी भी
0: परेड जा रही है।
1: जी हाँ, परेड जा रही है। और जो आपने ये बात की है कि सक्सेसफुल आप तभी होते हो जब आपके साथ साथ आपकी सोसाइटी और आपका देश भी सक्सेसफुल हो, वही है सक्सेस।
0: बहुत बड़ी बात आपने कही है। आपकी बातों से एक बात जो मैंने महसूस की है इस पूरी बातचीत में, हमारे श्रोताओं ने भी की होगी, वो ये बात हमने महसूस की है कि आपने केवल अपने लिए काम नहीं किया, अपने लिए आप नहीं जिए, बल्कि खुद को बनाते हुए, संवारते हुए अपने समाज के लिए आप क्या कुछ कर सकती हैं उसका भी पूरा पूरा आपने योगदान दिया है और आज भी उसे आप निभा रही हैं। तो आप जाने से पहले हमारे श्रोताओं के नाम, सुहाना सफर सुनने वालों के नाम,

0: वो ये संदेश देना चाहें, खास तौर से लड़कियों के नाम, महिलाओं के नाम?
1: मैं ये कहना चाहूँ कि जो आज की हमारी जेनरेशन है, आपके पास चुनौतियाँ तो बहुत हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। बिलीव इन योर सेल्फ और हैव एन इम्पॉसिबल ड्रीम और उसे पूरा करने की क्षमता रखिए।
0: तो आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और बल्कि हम भी मोटिवेट हो गए हैं। तो आप इस प्रोग्राम सुहाना सफर में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत ही सुहाना सफर था मेरे लिए भी। थैंक यू।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगा?
1: मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा पहला विजिट है।
0: श्रोताओं, आज के सुहाना सफर प्रोग्राम में हमारे साथ रही मेजर प्रिया झिंगन, रिटायर्ड। इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता रमन भगत, प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी अरुण बाबा ने। अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया है। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक प्रमुख संगठन है। उन्होंने मुंबई फोर्ड क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नाविकों, नौवहन कंपनियों, बंदरगाहों, सेवा प्रदाताओं और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों को पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। भारत ने

0: स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति कर रहा है। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कोर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
1: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हूती विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: श्रोते हुण सुनदे हां एक फिल्मी गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफी दी ते फिल्म है जंगली।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली IIT में विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल नारनौल से तिरंगा मैराथन को झंडी दिखाकर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 17 अगस्त तक चलने वाले कार्यक्रमों का आगाज करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और कल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया और हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने पंचकुला के मदर टेरेसा साकेत आर्थोपेडिक अस्पताल में लिफ्ट के लिए आधारशिला रखी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती हैं और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे

0: क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की यह पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में भी बात की। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल नारनौल से तिरंगा मैराथन को हरी झंडी दिखाकर इन कार्यक्रमों का आगाज करेंगे। लगभग 10 किलोमीटर लंबी इस मैराथन में तकरीबन 35,000 युवा हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ आएंगे। प्रतिभागियों को लगभग 25,000 राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित किए जाएंगे ताकि वे अभियान के दौरान अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित हों। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने इन कार्यक्रमों के आयोजन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी जिलों के प्रशासन को अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप देने को कहा है ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना मजबूत हो, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले और विशेष रूप से युवा पीढ़ी देश के इतिहास एवं लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ सके। कुरुक्षेत्र में तिरंगा यात्रा 10 अगस्त को निकाली जाएगी। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने आज कुरुक्षेत्र में बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा शाम 3 बजे पूजा मॉडल स्कूल से शुरू होकर शहीद स्मारक पर संपन्न होगी। श्री सुभाष सुधा ने शहरवासियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें।
2: ये तिरंगा यात्रा बिल्कुल छूने वाली यात्रा होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नाथ सिंह सैनी ठीक 3 बजे तिरंगा यात्रा शुभारंभ करेंगे। हजारों की तादाद में लोग उसके अंदर आएंगे। क्षेत्र के निवासियों से अपील करूंगा कि देश के हितों के लिए आप सब तिरंगा यात्रा में आए।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से भी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। उल्लेखनीय है कि UPI के जरिए लेन देन पर शुल्क लगने की खबरों ने उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता का आज नवगठित हांसी जिले में पहली बार आने पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा, पूर्व वित्त मंत्री कैबिनेट अभिमन्यु सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुश्री अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद वे सभी जिलों में जा रही हैं और इसी कड़ी में आज उनका हांसी जिले में प्रवास है। पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर उन्होंने बताया कि गुरु रविदास जी के 650वां प्रकाशोत्सव को भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रही है।
3: आने वाले जो पार्टी के हमारे कार्यक्रम है इसमें गुरु रविदास जी का जो 650वां प्रकाशोत्सव है उसको भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रही है। उसी कड़ी में हमने 29 जुलाई जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। संत गुरु रविदास जी की टीचिंग्स थी कोई छोटा बड़ा नहीं है, समाज में सभी लोग बराबर है। एक सामाजिक समरसता का, सामाजिक सद्भावना का जो देश उन्होंने दिया वो जन जन तक पहुंचे।
0: उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गुरु रविदास जी के प्रकाश उत्सव कार्यक्रमों को 5 चरणों में मनाया जाएगा। पहले चरण में प्रत्येक रविदास मंदिर या दूसरे मंदिरों में दीप उत्सव के कार्यक्रम से इसका शुभारंभ किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से 134 कलशों में वाराणसी की रज को कलश वंदन यात्रा के माध्यम से भारत में 134 स्थानों के लिए रवाना किया। हरियाणा को मिले कलश को गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर में स्थापित किया गया। वहां से कलश की पवित्र मिट्टी 27 जिलों में पहुंचाई गई है। हर गांव में इस कलश यात्रा का भव्य स्वागत हो रहा है और सभी समाजों को लोग बढ़ चढ़कर इन यात्राओं में भाग ले रहे हैं। आखिरी चरण में जालंधर से समरसता यात्रा चलेगी और वाराणसी पहुंचेगी। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और कल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी में अलग अलग स्थानों पर तूफान और भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है, जबकि चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अम्बाला में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तकनीकी सहायक दीनदयाल शर्मा ने बताया कि यह बारिश धान की फसल के लिए लाभकारी है। पर्याप्त बारिश होने से खेतों में नमी बनी रहेगी, जिससे किसानों को सिंचाई पर कम निर्भर रहना पड़ेगा।
4: धान की खेती के लिए बारिश बहुत जरूरी है, तो अभी जो बारिश हो रही है उससे हमारा फर्टिलाइजर वगैरह भी कम यूज होगा और बीमारी वगैरह भी नहीं आएगी। सूखे की जो समस्या रहती है वो भी खत्म हो जाएगी और अच्छी यील्ड आएगी। ग्रोथ है जो वो एकदम से बढ़िया ग्रोथ आएगी।
0: हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आज पंचकुला स्थित मदर टेरेसा साकेत आर्थोपेडिक अस्पताल में मरीजों के लिए लिफ्ट की आधारशिला रखी। लिफ्ट लगाने पर 73,31,000 रुपये की लागत आएगी और इसे 6 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। राज्यपाल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लिफ्ट निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप तैयार की जाए तथा गुणवत्ता के उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली आईआईटी में विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल नारनौल से तिरंगा मैराथन को झंडी दिखाकर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 17 अगस्त तक चलने वाले कार्यक्रमों का आगाज करेंगे। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
5: अच्छा बच्चियो, तुहानु सारे नु पता है ना 10 अगस्त नु स्कूल आना क्यों जरूरी है?
6: हां जी मैडम जी, क्योंकि उस दिन पेट दे कीड़ियां तो राष्ट्रीय मुक्ति दिवस है। तीस सानू आन दे कीड़ियां नु खत्म करन लई दवाई दित्ती जाएगी।
5: ते जेडे बच्चे रह जानगे उनानु 17 अगस्त नु मॉप अप दिवस दे दिन दवाई दित्ती जाएगी।
6: अच्छा मैडम जी।
5: हां जी, दवाई दे नाल नाल आंत दे कीड़ियां तो बचन लई ध्यान रखो के खुले च कदी भी शौच ना जाओ। खाना खान तो पहला अते शौच जान तो बाद हमेशा हाथ साबण नाल धोवो। अपने हाथ दे नाखून छोटे रखो अते आस पास सफाई रखो। याद रखो, जेडे बच्चे दे आंत विच कीड़े हुंदे ने ओ जो भी खांदा है उसदे शरीर नु नहीं लगदा, इस करके बच्चा कमजोर रह जांदा है। बच्चियो, ए सारियां गल्लां याद रहणगियां ना तुहानू?
6: हां जी मैडम जी।
7: आंत दे कीड़ियां तो छुटकारा होवे सेहतमंद भविख साडा। नेशनल हेल्थ मिशन सेहत ते परिवार भलाई विभाग पंजाब वल्लों जनहित विच जारी।
8: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश विच 90 उड़ रहे खेतर नौजवानों लिए नवे मौके प्रदान कर रहे ने। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली विच 866 नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र सौंपे। काउंटर इंटेलीजेंस सीआई फिरोजपुर ते बीएसएफ ने सांझे ऑपरेशन विच 2 व्यक्तियों नूं 30 किलोग्राम तो वध हीरोइन समेत गिरफ्तार करदिया सरहद पार नशीले पदार्थों की तस्करी के एक वड्डे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। मौसम विभाग वालों सूबे च अज ते भलके लई भारी मीह का येलो अलर्ट जारी। आईपीएल की तर्ज से शेरे पंजाब 2020 लीग की शुरुआत का ऐलान। मैच 30 अगस्त तो 13 सितंबर तक मोहाली विखे खेडे जाणगे। हुण खबरां विस्थार नाल। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ

बालटाल तो पवित्र गुफा तीरथ वल यात्रा आम वांग जारी है। सवेर तो करीब 2500 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए ने। जेड़े यात्री पहला ही दर्शन कर चुके सन उन्होंने बालटाल तो जम्मू वल जाण की इजाजत दी गई है। पंजाब भर में कई थावां कल रात तो रुक रुक के हल्की तो दरमियानी बारिश जारी है। दिन भर सूबे के वख-वख हिस्सों में बदलवाई बनी रही। मौसम विभाग ने कहा कि अजे ते भलके सूबे में किसी किसी थां ते भारी बारिश हो सकती है, जिसलिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पिछले 24 घंटे में पंजाब के बठिंडा च वध तों वध तापमान 34 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। हरियाणा के करनाल में वध तों वध तापमान 35.6 डिग्री सैलसीयस रहा। चंडीगढ़ में वध तों वध तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस सी। पंजाब नूं आईपीएल दी तर्ज ते 2020 लीग मिलण जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शेरे पंजाब 2020 लीग की शुरुआत का ऐलान किया, जिस विच 6 फ्रेंचाइजी टीमां शामिल ने। इस लीग नूं पंजाब का अपना आईपीएल करार दिंदिया मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 फ्रेंचाइजी टीमां विच शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, रमनदीप सिंह ते गुरनूर बराड़ समेत पंजाब के स्टार क्रिकेटर खेडणगे।

0: तो आईपीएल दी तरस ते 2020 लीग मिलन जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शेरे पंजाब 2020 लीग दी शुरुआत दा ऐलान कीता, जिस विच 6 फ्रेंचाइजी टीमां शामिल ने। इस लीग नूं पंजाब दा अपना आईपीएल करार दिंदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 फ्रेंचाइजी टीमां विच शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, रमनदीप सिंह ते गुरनूर बराड समेत पंजाब दे स्टार क्रिकेटर खेडणगे। इह लीग 3 अगस्त तों 13 सितंबर तक मोहाली दे पंजाब क्रिकेट एसोसीएशन स्टेडियम विच खेडी जाएगी। 9 अगस्त नूं होण वाली नीलामी विच पंजाब दे 450 तों वध खिडारी हिस्सा लैणगे। आखिर च खास खबरां इक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश विच नवे उभर रहे खेतर नौजवानों लई नवे मौके प्रदान कर रहे ने। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली च 866 नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र सौंपे। काउंटर इंटेलीजेंस सीआई फिरोजपुर ते बीएसएफ ने सांझे आपरेशन विच 2 व्यक्तियों नूं 30 किलोग्राम तों वध हीरोइन समेत गिरफ्तार कीता है। मौसम विभाग वालों सूबे च अज ते भलके लई भारी मीह दा येलो अलर्ट जारी। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन शाम 7:30 बजे होएगा। नमस्कार।
1: अच्छा बच्चियो, तुहानू सारे नू पता है ना 10 अगस्त नू स्कूल आना क्यों जरूरी है?
2: हां जी मैडम जी, क्योंकि उस दिन पेट दे कीड़ियां तो राष्ट्रीय मुक्ति दिवस है। ते सानू आन दे कीड़ियां नू खत्म करन लई दवाई दित्ती जाएगी।
1: ते जेड़े बच्चे रह जानगे उन्हां नू 17 अगस्त नू मॉपअप दिवस दे दिन दवाई दित्ती जाएगी।
2: अच्छा मैडम जी।
1: हां जी, दवाई दे नाल नाल आंत दे कीड़ियां तो बचन लई ध्यान रखो के खुले च कदी भी शौच ना जाओ। खाना खान तो पहला अते शौच जान तो बाद हमेशा हाथ साबण नाल धोवो। अपने हाथ दे नाखून छोटे रखो अते आस पास सफाई रखो। याद रखो, जेड़े बच्चे दे आंत विच कीड़े हुंदे ने ओ जो भी खांदा है उस दे शरीर नूं नहीं लगदा, इस करके बच्चा कमजोर रह जांदा है। बच्चियो, ए सारियां गल्लां याद रहणगियां ना तुहानू?
2: हां जी मैडम जी।
3: आंत दे कीड़ियां तो छुटकारा होवे सेहतमंद भविख साडा। नेशनल हेल्थ मिशन सेहत ते परिवार भलाई विभाग पंजाब वल्लों जनहित विच जारी।
4: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवारों की छत ते सोलर पैनल लग चुके हैं। तुसी भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in। सूर्य घर।
6: हुणे तुसीं सुन रहे सी प्रादेशिक खबरां। साडे अगले ऐलान दा इंतजार करो।
7: ए आकाशवाणी है ते तुसीं सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज ते। ते हुण पेश ने कुछ पंजाबी गीत। सब तो पहला सुनदे हां सुरजीत भुल्लर ते सुदेश कुमारी दीआं आवाज़ां च ए गीत।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान जीवन दान।
1: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूं। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ पराशर फाउंडेशन की पहल है, जो अंगदान, उत्तक दान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ। आज हम किडनी डोनेशन और किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, वो उपाध्याय फैमिली है, जो किडनी रेसिपिएंट हैं, वो हैं कर्नल उमाशंकर उपाध्याय जी, और जो डोनर हैं, उनकी बेटी तरुणा उपाध्याय हैं, और साथ ही में उमाशंकर उपाध्याय जी की वाइफ भी हमारे साथ है, जिनका नाम वीना है। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सो कर्नल उपाध्याय जी, आप शुरू से हमारे श्रोताओं को बताइए कि कब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत कैसे आई।
3: मैं कर्नल उपाध्याय हूँ। मैंने जो है करीब 32 साल नौकरी मिलिट्री के अंदर किया, और उसके बाद करीब 14 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया जी। तो जब फौज के अंदर था और मेरा एनुअल मेडिकल होता था, उसे सब कुछ सही रहता, लेकिन जब मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया तो वहाँ लाइफ के चैलेंजेस बहुत थे। दैट रिजल्टेड इन कि मेरी शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो गई। ये 2004 से मेरी शुगर लेवल डिस्टर्ब होने लगी, और ये मेरा क्रिएटिन लेवल जो था पहले हमेशा लिमिट के अंदर ही रहता था, लेकिन वो धीरे धीरे 1.1 से लेकर के और 9 तक
2: बेसिकली धीरे धीरे डायबिटीज ने किडनी पर अपना इम्पैक्ट होने चालू किया।
3: तो जब ये मेरा क्रिएटिन लेवल बढ़ने लग गया तो थोड़ा हम अलर्ट हो गए भाई कि क्यों ये क्रिएटिन लेवल बढ़ रहा है। लेकिन जब ये 9 हुआ तो फिर मेरा बेटा आया, मेरा मिला मेरे को, उसने बोला कि अपन डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, डज अंडरस्टैंड। तो हम लोगों ने कंसल्ट किया कोई डॉक्टर से, 2-3 डॉक्टर को हमने कंसल्ट किया, सब ने ये बताया कि देखिए आपका क्रिएटिन लेवल जो है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो

0: है कि आप डायलिसिस पे चले जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर एक हमारे रिलेटिव थे जो भी डॉक्टर थे, तो उनको भी मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझ में काफ़ी कॉन्फिडेंस डालते हुए बोला कि आपको ज़्यादा दिन डायलिसिस नहीं करना पड़ेगा। उनकी बात को भी मैंने काफ़ी वेटेज दिया और हम डायलिसिस के लिए तैयार हो गए और मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो गया। लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये बंद हो जाएगा, वो चीज़ नहीं हुई। लेकिन जब डायलिसिस शुरू हो गया तो कंट्रोल में आ गया नेचुरली, बिकॉज ऑफ डायलिसिस इफेक्ट। उसके बाद धीरे धीरे डायलिसिस जो चलता रहा, एंड फाइनली जो है जब 3 महीने के आसपास, आप समझिए मेरा 20 नवंबर 2022 को ट्रांसप्लांट प्लान किया गया। मैंने अपना ट्रांसप्लांट जो है नानावती हॉस्पिटल मुंबई में किया, और हमारे जो डॉक्टर थे केस पूरा हैंडल किया वो थे डॉक्टर जतिन कोठारी।
1: मैं यहाँ पर वीना जी से एंड तरुणा जी से पूछना चाहूँगा कि जब डॉक्टर्स ने बताया कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, फाइनल ट्रांसप्लांट इज द सॉल्यूशन, तो इसके पहले कभी आपने ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ सुना था कि ऐसा कुछ हो जाता है और सब कुछ रिवर्स हो जाती है चीज़ें?
2: सर, जब 2020 में फादर के किडनीज का इन अ वे गिव अप स्टेज हो गया वो, तो उस पीरियड में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने दवाइयों पे इस चीज़ को अरेस्ट करने की कोशिश की। हमें बहुत उम्मीद थी कि शायद दवाइयों से ये चीज़ क्योर हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। 2020 से 2021 का जो पीरियड था उसमें दवाइयों ने स्टेबल तो रखा पर कंट्रोल मतलब सॉल्व नहीं कर सकती थी ये दवाइयाँ। पर उससे कुछ 12 साल पहले मुझे एक फ्रेंड मिली जिनका ट्रांसप्लांट हुआ था। वो 26 साल की उम्र में थी, उनको अक्यूट किडनी डिजीज के वजह से ट्रांसप्लांट करना पड़ा। उनके ब्रदर ने उन्हें किडनी डोनेट की। उनका वो एक्सपीरियंस और उनकी सक्सेस ट्रांसप्लांट प्रोसेस के थ्रू जो हुई, जहाँ वो आज एक बहुत स्टेबल केपेबल इंसान है अपनी लाइफ को लेकर, एंड उनके जो डोनर ब्रदर हैं वो भी हैं, वो एथलेटिक्स करते हैं, वो काम पे जाते हैं, सभी चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि शायद ये एक नेचुरल स्टेप है। और वो जो अवेयरनेस थी मेरे हाथ में उनकी लाइफ की वजह से, उसने मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया। पर मेरे फादर की उम्र 67 ईयर्स थी उस समय, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या उस उम्र के पर्सन को आप सर्जरी के थ्रू लेके जा रहे हैं? ना बड़ा प्रूफ पॉइंट है क्या मेडिकल साइंस के पास कि ये किडनी जो आप दोगे भी, पहले तो सर्जरी प्रोसीजर सही हो पाएगा कि नहीं?
1: रूट कॉज इज प्रेजेंट देयर।
2: जी,
1: जो डायबिटीज था, डायबिटीज आपके फ्रेंड के केस में शायद नहीं।
2: तो बहुत सारे सवाल थे हमारे जहन में कि इस एज पे ये प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं। नंबर वन, क्या ये उनको वो लाइफ देगा कि नहीं देगा? और दूसरा सवाल जो सबने मेरे सामने रखा था कि उस वक्त मेरी उम्र 39 इयर्स थी, तो मुझसे सवाल पूछा जा रहा था कि तुम्हारे आगे 40-50 साल की जिंदगी है, तुम ये कैसे स्टेप ले सकते हो? तुम्हारे पेरेंट ने, तुम्हारे फादर ने तो अपनी जिंदगी जी ली है, व्हाई वुड यू वांट टू गो एंड डू दिस? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे और मेरी फैमिली दोनों के सामने बार बार बार बार रखे जा रहे थे। द गुड वॉज कि जिन्होंने भी ये प्रोसीजर किया था वो इतने वेलकमिंग थे, उन्होंने मुझे अनजान होने के बाद भी पूरी नॉलेज देने की कोशिश की। पर मैं एट द सेम टाइम ये बताना चाहती हूँ कि हमारे इंटरनेट पर या हमारे सोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं है कि एक इंसान को डिसीजन पावर मिल सके फ्रॉम द नॉलेज विच इज अवेलेबल ऑनलाइन। तो आई थिंक एक बहुत क्रिटिकल रोल है हमारे आगे, बोथ डॉक्टर्स एज वेल एज जो शायद इस प्रोसेस को सक्सेसफुली ले रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए वही एक चीज थी जिसने मुझे बढ़ावा दिया।
1: पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं इस चीज में। जो पेशेंट्स या फैमिलीज इस चीज से सफर कर रही हैं, उनको एक्चुअल पेशेंट्स देखकर ही पूरा उनको वो कॉन्फिडेंस आता है।
0: पेशेंट को समझते थे, उसकी प्रॉब्लम को समझते थे और उसको करेक्ट गाइडेंस देते थे।
1: वीना जी ने बताया कि फाइनली आपने डिसाइड कर लिया था एंड देन आप उस चीज पर अड़ गई थी कि हाँ, मुझे अगर ये मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं। बट स्टिल हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, मैं कॉम्प्लिकेशंस ही बोलता हूँ इसको
2: जी।
1: लेकिन जो अदर सोसाइटी मेंबर्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इन सब चीजों से। तो क्या आपके केस में कुछ ऐसे कमेंट्स, कुछ ऐसी चीजें आई थी?
2: आपने जो पॉइंट इस वक्त दिया है ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है हमारे सामने और शायद दुनिया भर में है ये
1: जी।
2: कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे से कुछ लेना नहीं चाहता, सिर्फ देना चाहता है, ये एक गिवन फैक्ट है। और मेरी सिचुएशन में भी ऐसा ही था, और शायद एज अ गर्ल चाइल्ड मेरे लिए थोड़ा ज्यादा था कि रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कई सीनियर डॉक्टर्स सभी आगे आए और उन्होंने मुझे विद गुड इंटेंट समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा ये फैसला दोनों तरफ से नुकसानदेह हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे फादर को आगे लाइफ मिलेगी, और बी ये भी नहीं है कि तुम एक किडनी के साथ सरवाइव करोगे कि नहीं।

0: पर एट द सेम टाइम जिस चीज को मैंने वेटेज दी वो ये थी कि मेरे पास में प्रूफ पॉइंट था, एक अवेयरनेस थी, नॉलेज थी, और मैंने एक्चुअली लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट एंड सक्सेस देखी थी. यू नो, लिटरली टनल के एंड पे वो जो लाइट एग्जिस्ट करती है वो कितनी ब्राइट है और डज इट इवन शाइन. पर मैंने उसको इतना ब्राइट देखा था कि मुझे पूरा विश्वास था कि इस चीज में प्रूफ है. पर मैं यहाँ नहीं रुकी, मैंने उन सभी बातों को कंसिडर किया और मैंने अपनी नॉलेज और अपनी इन्फॉर्मेशन को और आगे बढ़ाया, उनसे और अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की कि एंड टू एंड एक्चुअली क्या चीजें हैं जो सक्सेस क्रिएट कर सकती हैं. नंबर टू था जहां लोगों के इमोशंस थे, और एक ऐसा वक्त था एग्जैक्टली ट्रांसप्लांट के पहले, ये बहुत हावी हो चुका था मेरे ऊपर, जहां हर कोई मुझे सिर्फ मना करने के अलावा कुछ कह ही नहीं रहा था. कई लोग नाराज हो गए थे मुझसे कि तुम जो स्टेप ले रहे हो वो सुसाइडल है और इस तरीके की बातें. वो एक मोमेंट था जब मैं लिटरली, जिनको मैं अपना भगवान मानती हूँ, मैं उनके सामने खड़ी थी और मुझे ये सवाल अपने अंदर एक आंसर चाहिए था कि जो मैं करने जा रही हूँ, मोर देन माई सेल्फ, क्या ये फादर की फ्यूचर लाइफ के लिए सही भी है कि नहीं है. और उस वक्त एक ही आवाज अंदर से आई कि सारे जीवन हम अपने भगवान के सामने खड़े होकर दो हाथ से जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेशनशिप्स का आप ख्याल रखिए, उनकी लंबी उम्र की हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है. और मुझे एक अंदर से आवाज महसूस हुई जिसने ये कहा कि आज तुम्हारे हाथ में मौका है, जो भगवान कर सकते हैं वही तुमको भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर दो किडनी है, दो आंखें हैं, तो क्या तुम करेज रखते हो वो स्टेप लेने के लिए? और अगर आज तुम्हारे अंदर वो करेज नहीं है तो फिर शायद कभी भगवान के द्वार पर खटखटाना मत कि मेरे पेरेंट्स की लाइफ लंबी होनी चाहिए, उनकी हेल्थ होनी चाहिए.
1: मेरा ये क्वेश्चन पूछने का यही मोटो था कि बहुत सारे लोग अनवेरिफाइड जानकारी लेकर अपना मन बदल देते हैं या अपने परिवार के लिए आगे नहीं आते, बहुत सारी भ्रांतियों का शिकार रहते हैं कि मुझे ये हो जाएगा, मेरी लाइफ कैसी रहेगी. ऐसी जानकारी ना पढ़ के आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुके. डोनेशन के बाद आपको कभी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशंस फेस करनी हो जो सिर्फ डोनेशन की वजह से हुई थी?
0: सर, डोनेशन जिस तारीख पे डोनेशन हुआ उसके 3 दिन तक मैं हॉस्पिटल में थी बिकॉज ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर. मेरी ओपन सर्जरी हुई थी, 10.5 इंच का इंसिजन था. 3 दिन के बाद मेरा डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से और 22 दिसंबर 2022 को ऑपरेशन हुआ. 25 तारीख को मैं घर लौटी हूँ. उस तारीख से लेके है मैंने आज तक एक भी मेडिसिन नहीं ली. तो मैं सभी श्रोताओं से ये कहना चाहती हूँ, जो भी आप आज मेरी आवाज सुन रहे हैं, ऑर्गन डोनेशन आपके लिए भगवान की तरफ से एक एम्पावरमेंट समझिए. हम सभी में वो शक्ति है, हम सभी में वो ताकत है कि हम एक और लाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं. और मैं अपनी जिंदगी से आपको ये प्रूफ पॉइंट दे सकती हूँ कि ना ही ऑर्गन डोनेट करने की वजह से आपको कोई डिजीज होगी, कोई तकलीफ होगी. जो भी आप अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और अपना जिस तरीके से आप ख्याल रखते हैं, 2 किडनीज, वही आप अपनी विद 1 किडनी भी कर सकते हैं. ये हमें गॉड का गिफ्ट है. ऑर्गन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपने आप ही एक्सपैंड होकर अपनी कैपेबिलिटी को परफॉर्म करते हैं, आपकी बॉडी को इनेबल करते हैं. यस, एज एन इंडिविजुअल इट इज ऑन यू कि आप अपने लाइफ और अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करते हैं, जिसमें मैं नंबर 1 कहूंगी कि आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप डायबिटीज की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो अपने आप में एक पेंडेमिक है.
1: इनफैक्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही फेस किया है कि जो एक नॉर्मल इंसान है जिसका ट्रांसप्लांट से कोई रिलेशन नहीं है या डोनेशन से कोई रिलेशन नहीं है, वो अनहेल्दी है, और जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है या जिन्होंने डोनेट किया है वो ज्यादा हेल्दी लाइफ लीड करते हैं, बिकॉज दे आर अवेयर. वो उन सब चीजों से वो देख चुके होते हैं, तो वो ज्यादा अवेयर है अपनी हेल्थ को लेकर, स्पेसिफिक है वो ज्यादा हेल्दी लाइफ लीड. तो एनीवे, यहाँ पर श्रोताओं से मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज का शो हम यही खत्म करते हैं. जैसा तरुणा ने आपसे अपील करी ऑर्गन डोनेशन के बारे में जानने की, तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है ऑर्गन डोनेशन को लेकर, तो उसका आंसर ढूंढिए. इंटरनेट पर भी ये जानकारी मौजूद है और आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं. हम आपको सारी जानकारी देंगे, बट अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए, क्योंकि इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि जब मन में कोई शंका आती है या कोई सवाल आता है तो वो सवाल मन में ही रह जाता है, उसका आंसर भी नहीं ढूंढा जाता और किसी से वो सवाल पूछा भी नहीं जाता. और जितना ज्यादा हो सके अंग दान के लिए जागरूक बने. तो करुणा जी ने भी बिल्कुल सही कहा था कि जो भगवान के पास पावर है वो आपको भी वही पावर दी. तो इसी के साथ मैं आज का शो यहाँ पर खत्म करता हूँ. अगले एपिसोड में हम फिर से एक बार हाजिर होंगे एक नई कहानी लेकर.
2: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में.
3: दोस्तों, अंगदान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर संपर्क कर सकते हैं. अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।
3: हुणे तुसीं सुन रहे सी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑर्गन इंडिया।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 MHz ਤੇ।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: पेश है प्रोग्राम विशेष जयमाला, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज का जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार।
1: फौजी भाइयों की जगह अगर आपको शांति दूत कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि आपने अगर हर पल रक्षा की है तो उस परचम की है, उस झंडे की है जिसे तिरंगा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में इस तिरंगे के तीन रंग शांति, प्रेम और अहिंसा के प्रतीक हैं, और आप इसी प्रतीक की रक्षा करते हैं।

तपते हुए रेगिस्तान से लेकर रगों में खून जमा देने वाली बर्फीली पहाड़ियों तक, कश्मीर से कन्याकुमारी आपके दम से है। क्योंकि संकट की घड़ी में कभी यूं भी हुआ है कि शिवजी ये नहीं, फिर भी सर से बहती हुई खून की गंगा है, जो एक जवान का हाथ कटा दूजे के हाथ तिरंगा है। तो फौजी भाइयों, आज नमस्ते की जगह आप अपने मनोज का प्रणाम स्वीकार करें। समय कम है और जयमाला में फूल काफी हैं। सबसे पहला जो फूल पेश कर रहा हूं, शायद उसमें से आपको गुलाब की खुशबू आए, क्योंकि जहां गुलाब की बात होगी वहां स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात होगी, और जहां जवाहरलाल नेहरू की बात होगी वहां भारत की बात होगी। तो मैं भी बिस्मिल्ला भारत के गीत से करता हूं।

बरसों बाद इस जयमाला के धागों का सहारा लेकर आप तक पहुंचा हूं, और इन बरसों में क्या कुछ नहीं हुआ। देश में सूखा पड़ा, सैलाब आए, हड़तालें हुई, दूसरे देश से रिफ्यूजियों का काफिला आया भी, लौटा भी, जंग सीमा पे भी लड़ी गई और घर में भी। इन्हीं बरसों में अनुशासन ने एक लावारिस बच्चे की तरह घर का रास्ता भूलकर एक आवारा बच्चे की तरह गली कूचों में खो गया। और भटके हुए को राह रास्त पर लाने के दो ही रास्ते हैं, प्यार और सख्ती। जब प्यार का नाजायज फायदा उठाया गया तो सख्ती संजीवनी बन गई। एमरजेंसी ने चमत्कार कर दिया। अब स्कूल कॉलेज बंद होते हैं और ना ही अस्पताल और फैक्ट्रियों में हड़तालें। और ये सब हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सूझबूझ, नेक नीति और दूरंदेशी का नतीजा है। आज अगर दुनिया के किसी देश में महंगाई बढ़ना रुकी है तो वो सिर्फ हमारा देश है, और किसी देश में भाव ज्यादा से ज्यादा गिरे हैं तो वो हमारा देश है। और भाइयों, जब चारों दिशाओं में आपको सुख चैन नजर आने लगे ना, तो मन मस्त हो जाता है। फिर सुबह बनारस अपने आप अच्छी लगने लगती है, शामे अवध और शबे मालवा अपने आप यूं गुनगुनाने लगती हैं।

फिल्म रोटी कपड़ा और मकान बना रहा था, एक गीत के सिलसिले में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ रोज बैठते। सिचुएशन के हिसाब से संतोष आनंद ने कई अंदाज से वो गीत लिखा जो मुझे पसंद था, मगर ना जाने क्यों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल खुश ना हो पाए। तो मैंने एक दिन लक्ष्मी से पूछा, भाई बात क्या है? तो लक्ष्मी ने जवाब दिया कि एक बार सिचुएशन फिर से दोहरा दीजिए। मैंने कहा, भाई आसान सी बात है, लड़की लड़के का गीत है जो फिल्म में दो तीन बार आएगा, और इस गीत में उन लम्हात को समेटना है जिन्हें फिल्म के वो दो किरदार भूल नहीं सकते। बस लक्ष्मीकांत ने शब्द भूल को पकड़ लिया। संतोष आनंद की सारी मेहनत बेकार, मेरी अपनी पसंद रद्दी की टोकरी में। लक्ष्मीकांत ने दूसरे दिन धुन में सिर्फ इतना गाया, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। बस फिर संतोष विचार के समंदर में गोता लगाकर गीत निकाल लाया। जिस्मानी और दिमागी मेहनत का अंजाम इतना खूबसूरत नहीं होता जितना दिली मेहनत का होता है, और यह गीत जो इतना खूबसूरती से कामयाब हुआ, इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संतोष आनंद की दिली मेहनत है।

0: जयमाला कार्यक्रम में ये समय है एक अंतराल का।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
3: देव दर्शन धूप।
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
3: देव दर्शन धूप।
4: एड्स HIV ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
5: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स

0: और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: अच्छा बच्चियों, तुहानु सारे नु पता है ना 10 अगस्त नु स्कूल आना क्यों जरूरी है?
3: हां जी मैडम जी, क्योंकि उस दिन पेट दे कीड़ियां तो राष्ट्रीय मुक्ति दिवस है। ते सानू आन दे कीड़ियां नु खत्म करन लई दवाई दित्ती जाएगी।
2: ते जेड़े बच्चे रह जानगे उना नु 17 अगस्त नु मॉप अप दिवस दे दिन दवाई दित्ती जाएगी।
3: अच्छा मैडम जी।
2: हां जी, दवाई दे नाल नाल आंत दे कीड़ियां तो बचन लई ध्यान रखो के खुले च कदी भी शौच ना जाओ। खाना खान तो पहला अते शौच जान तो बाद हमेशा हाथ साबण नाल धोवो। अपने हाथ दे नाखून छोटे रखो अते आस पास सफाई रखो। याद रखो, जेड़े बच्चे दे आंत विच कीड़े हुंदे ने ओ जो भी खांदा है उस दे शरीर नु नहीं लगदा, इस करके बच्चा कमजोर रह जांदा है। बच्चियो, ए सारियां गल्लां याद रहणगियां ना तुहानू?
3: हां जी मैडम जी।
4: आंत दे कीड़ियां तो छुटकारा होवे सेहतमंद भविख साडा। नेशनल हेल्थ मिशन सेहत ते परिवार भलाई विभाग पंजाब वल्लों जनहित विच जारी।

कवि की कल्पना, उसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं। प्रदीप जी ने एक गीत में लिखा है, एक कर्ज मांगता हूं मेरा बचपन उधार दे दो। हाय कितनी मासूम मांग है। ये लाइन मुझे बचपन के दिनों में घसीट के ले जाती है, मुझे मेरे गांव ले जाती है। मेरा गांव है जंडियाला शेर खां, जिला शेखुपुरा, जो पाकिस्तान में है। मेरे गांव ने, मेरे जंडियाला शेर खां ने इस दुनिया को एक बड़ा ही अनमोल तोहफा दिया है। घबराइए मत, जिक्र मेरा नहीं इस बात में, वो तोहफा हीर है, पीर वारिस शाह की रचना हीर। ये मेरा सौभाग्य भी है और अभिमान भी कि मैं उस गांव का हूँ जिस गांव के अजीम शायर वारिस शाह थे। तो उन्हीं की रचना का एक हिस्सा पेश है जिसे एक कैफी आजमी साहब ने ये कहकर तर्जुमा किया कि किस्सा वारिस शाह का है, बयां मेरा है।

0: श्रोताओ, आज का जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं फिल्मकार मनोज कुमार।
1: फिल्म शोर के गीत जिसने बहुत शोर मचाया, उसी गीत ने बनने में भी बहुत शोर मचाया, बहुत तंग किया हमें। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आप उसमें हारमोनियम बदलते, मगर धुन थी कि बनने का नाम ना लेती। दो तीन हफ्ते यही सिलसिला चलता रहा, वो बाजे बदलते, ढोलक बदलते, हारे हुए जुआरी की तरह कट फर सीट की तरह जगह भी बदलते, मगर धुन थी कि सात स्वरों में छुपकर आंख मचोली खेल रही थी। कि एक दिन दोपहर में उनका फोन आया कि जल्दी आइए, मैं पहुंचा तो वो एक खिलौना नुमा बाजा लेकर बैठे हुए थे। कहने लगे, ये छोटा सा बाजा मेरे बेटे का है, मैं मायूस होकर इसी को ले बैठा था। बैठा था कि धुन बन गई। तो साहब, ये गीत संगीत कला, कला का कोई रूप कोई अंग सिर्फ मेहनत का नहीं आमद का मोहताज भी होता है। वो छोटे से हारमोनियम पर बनी हुई धुन किस कमाल का जादू कर गई। गीत है
2: एक

एक आदमी सुबह उजाला होने से पहले नदी किनारे सैर के लिए जाया करता था। एक दिन नदी किनारे उसका पांव पत्थरों से भरी थैली से टकरा गया। उस समय उसका बचपन जाग गया। वो वहां बैठकर एक एक पत्थर नदी में फेंकता और फिर उस पत्थर की आवाज सुनता। पत्थर फेंकते फेंकते सवेरा होने लगा। सूरज ने आकाश से झांका। वो आखिरी पत्थर फेंक ही रहा था कि उसका हाथ रुक गया। वो पत्थर पत्थर नहीं, हीरा था। तो अंधेरे में उसने अपने हाथ से कई हीरे खो दिए। जीवन में भी यही होता है, कब क्या खो जाए, कब क्या मिल जाए, कौन जाने। एक दिन हम फिल्म सन्यासी की शूटिंग कर रहे थे। सीन जरा गंभीर किस्म का था कि किसी साथी कलाकार ने शूटिंग देखने वाले मेहमानों पर एतराज किया। प्रोडक्शन में से कोई चिल्लाया, मेहमान चले गए। जाहिर था कि उन्हें बाहर जाना अच्छा नहीं लगा। शूटिंग खत्म हुई तो बाहर निकाले हुओं में से एक सज्जन बैठे हुए थे। मुझे कहने लगे कि भैया आपको कुछ सुनाना है। मैंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ। कहने लगे सुन लीजिए, शायद थकावट दूर हो जाए। उनके कहने में इतनी सादगी थी कि मैं सुनने पर मजबूर हो गया। उन्होंने कुछ सुनाया, मैं उछला, सुनते ही उछला। फिर मैंने फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोनलाल कंवर जी को बुलाया और कहा कि इनसे कुछ सुनिए, इनका नाम विशेष शर्मा है। उन्होंने वो गीत सुना और सुनते ही कहने लगे,

0: संकट छाया है।
1: फौजी भाइयों, चलते चलते अपनी जिंदगी की कुछ अमर यादों में से एक याद सुनाना चाहता हूँ। कई बरस पहले की बात है, मैं एक फिल्म की शूटिंग करके लौट रहा था। एक स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो वहाँ पहले से ही आपकी यानी के एक मिलिट्री की ट्रेन खड़ी थी। अपने मुल्क के देश के गबरू जवानों को देखा तो मेरा सीना फूल गया। मैं अपनी खिड़की से और वो अपनी खिड़की से एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे। हालचाल पूछ ही रहे थे कि उनकी ट्रेन चल पड़ी। उस वक्त मैंने एक जवान से पूछा, कहाँ जा रहे हैं? खिड़की से गर्दन बाहर निकाल कर हंसते हुए उसने कहा, मंजिल की तरफ। और फिर जहां तक वो नजर आता रहा, मैं उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता रहा देखता रहा। उसी एक जवान के चेहरे, खिले हुए चेहरे और मजबूत इरादे में मुझे अपने देश के लाखों जवानों का चेहरा नजर आया, जैसे कि वो सब मिलकर ये कसम खा रहे हों।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जयमाला। इसे आज प्रस्तुत किया अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार ने। यह कार्यक्रम विविध भारती के संग्रहालय से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: सुनो कहानी इस श्रृंखला में आज आपको सुनवाते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का पहला भाग। वाचक स्वर अमरकांत दुबे, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
2: जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। अब मित्रता का मूल मंत्र भी तो यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमेराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबियां मांझी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण को भी विश्राम न लेने पाता था क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे, उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वो कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है, बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमेराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य में ही न थी तो कैसे आती। मगर जुमेराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे, उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहननामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता था। हलके का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अलगू का मान उनके धन के कारण था तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने हुए थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी मौसी थी, उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी लेकिन उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो मिल्कियत अपने नाम लिखवा दी थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। खूब स्वादिष्ट भोजन पदार्थ उन्हें खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई,

पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थीं। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया मानो मोल ही ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां उतरती ही नहीं। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। आखिर में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा मेरा तुम्हारे साथ निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहां फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई ये थोड़े ही समझता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरण को जाल में जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वो बोले, हाँ हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी ये रात दिन की खटखट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी ना हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रहीं। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हां करके टाल दिया, किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी, तो किसी ने कहा, कब्र में पांव लटके हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस है कि मानती नहीं। अरे अब तुम्हें क्या चाहिए, रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो, तुम्हें अब खेती बारी से क्या काम है। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसा स्वादन का अच्छा अवसर मिल गया। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल, इतनी सामग्री एकत्रित हो तब हंसी क्यों ना आवे। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू बोले, मुझे बुलाकर क्या करोगी, गांव के कई आदमी तो आवेंगे ही। खाला बोली, अपनी विपत्ति तो सबके आगे रो आई, अब ना आने का अख्तियार उनको है। अलगू ने कहा, यो आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। क्यों बेटा? खाला ने कहा। अलगू बोले, अब इसका क्या जवाब दूं, अपनी खुशी? जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, लेकिन ललकार सुनकर वो सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई जवाब न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था, उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू सब का प्रबंध भी किया था। हाँ, वो स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ दूर पर बैठे थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी तब यहां भी

पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी, नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। अब ये निर्णय करना असंभव सा था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकल रहा था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज कर रहा था तो कोई रो रहा था। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी, इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूं, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझमें कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्यों एक बेकस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, वो बोले, जुम्मन मियां, किसे पंच बत्ते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे लोग ही दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, खाला जान जिसे चाहें उसे बदें, मुझे कोई उचर नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? मुझे भी तो कुछ मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहे बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वो बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूं। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, लेकिन भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अब अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे, वो कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हो गए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, अलगू ये सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों 3 साल हुए, खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी, मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी मां के समान समझता हूं, उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं, जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं, उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र भी नहीं है, नहीं तो मैं भूल कर भी झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे करें। अलगू

0: चौधरी को हमेशा ही कचहरी में काम पड़ता था, इसलिए वो पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया, अभी ये अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी।
1: सुनो कहानी, इस श्रृंखला में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का पहला भाग। वाचक स्वर था अमरकांत दुबे का, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग हम लेकर आएंगे अगले शनिवार इसी समय।
2: सुनो कहानी।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सूबेदार से, आवाज़ जी डी कौर की थी। गीत के बोल यंगवीर रोहताश गैक्सिनिया की और संगीत ऋत्विक तलशिलकर और राजमावीर का था। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओ रोमियो से, आवाज़ें सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत विशाल भारद्वाज का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: Nothing na na na na na nothing na

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सितारे ज़मीन पर से। आवाज़ें शंकर महादेवन और अमिताभ भट्टाचार्य की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। समय है एक छोटे से अंतराल का, शेष कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सितारे ज़मीन पर से। आवाज़ें शंकर महादेवन और अमिताभ भट्टाचार्य की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। समय है एक छोटे से अंतराल का, शेष कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
3: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण

0: और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म धड़क 2 से, आवाज अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ गरिमा के और संगीत श्रेयस पुराणिक का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म शहजादा से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की थी। गीत के बोल आईपी सिंह और श्लोक लाल के, संगीत प्रीतम का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
4: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

गीत आपने सुना फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो से, आवाज सुनिधि चौहान और दिव्य कुमार की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत संदेश शांडिल्य और वाइट नॉइस कलेक्टिव का। थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
2: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
3: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और

0: एनएफएसयू फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
2: 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य

0: सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
1: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीमबेटका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
3: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद

0: दुष्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म वॉर से। आवाज़ विशाल ददलानी और वेनी दयाल की थी। गीत के बोल कुमार के और संगीत विशाल एंड शेखर का।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय मदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई

0: हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
1: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।

0: श्रोताओं, यह गीत आपने सुना फिल्म सुपर 30 से। आवाजें प्रेम अरेनी, जनार्दन धात्रक, दिव्य कुमार और चैताली परमार की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत अजय अतुल का।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बाहर

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से, आवाज़ देव नेगी और पायल देव की थी। गीत के बोल वायु के और संगीत विशाल शेखर का।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
2: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हार्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म पद्मावत से, आवाज नीति मोहन की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ गरिमा के और संगीत संजय लीला भंसाली का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब

0: सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
0: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प गीतकार के बारे में बातें करने जा रहे हैं। तमाम बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब क्या करें, इस गीतकार का नाम ही बावरा है। जाहिर है कि बावरेपन की बहुत सारी निशानियां होंगी इनकी इस दास्तान में।

आज के फनकार कार्यक्रम आज गुलचन बावरा पर केंद्रित है, एक ऐसी जुनूनी शख्सियत पर जिन्होंने अपनी शर्तों पर काम किया और फिल्म संसार में जबरदस्त नाम कमाया।

0: तारीख है जी, मेरा जन्म 13 अप्रैल 1938 को जिला शेखुपुरा में हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में है। साखी वाले दिन मैं जन्मा था, कुछ साल पंजाब में रहे, उसके बाद पार्टीशन हो गया। ये तकदीर का ही खेल है कि जब पाकिस्तान बना और उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान में आए, तो मैं तो अपने माता पिता खो चुका था। लकीली देखिए, हमारी एक बहन है कौशल्या देवी, जो जयपुर में रहती थी।
1: पढ़ाई लिखाई के बाद गुलचन बावरा को शौक लग गया लिखने का और वो चले आए मुंबई।
0: जब मैं आया था बम्बई में 1955 में, तो मुझे लगता है बम्बई की पॉपुलेशन 10 लाख थी, और आज इतनी पब्लिक को देखना, उनसे वाकफियत करना, उनसे बोलना।
1: लेकिन मुंबई वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं आए थे, वो तो आए थे गायक बनने के लिए। आपको बता दें कि गुलशन बावरा को रेलवे में नौकरी मिल गई थी और कोटा में उनकी पोस्टिंग हुई, और उसके बाद वो चले आए मुंबई। सन 1955 में वो मुंबई आए, रेलवे में क्लर्की करते और बाकी समय में फिल्मों में लिखने के लिए और गायकी के लिए जद्दोजहद करते।
0: बम्बई ऐसी नगरी है कि यहाँ पर आदमी अगर 6 दिन रह जाए, 7वें दिन उसको कोई ना कोई काम मिल जाता है और बम्बई उसको अपना लेती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत देता।
1: यही वो दिन थे जब रेलवे में माल गोदाम की नौकरी के दौरान उन्होंने देखा कि पंजाब से आई मालगाड़ी गेहूं के एक के बाद एक बोरे उतारे चली जा रही है। गेहूं की इस जबरदस्त पैदावार को देखकर गुलशन बावरा के मन का जो गीतकार था वो कह उठा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये कविता उन्होंने अपनी डायरी में लिखकर रख ली और मनोज कुमार को उन्होंने दिखाई, जो उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और गुलशन बावरा के दोस्त भी थे। मनोज कुमार को ये कविता याद रह गई। आगे चलकर जब उन्होंने फिल्म उपकार बनाई, तो इस कविता को एक नामी गीत में

0: गुलशन बावरा का नाम गुलशन बावरा कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है।
1: बात यूं है, जब मैं नया नया दिल्ली से आया था तो मेरा कुछ रहने या कपड़ों का स्टाइल कुछ ऐसा था जो दिल्ली वाले नीले पीले कपड़े और पहना करता था, तो लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे। गीत लिखा चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को।

0: बेटा डा, तो जब वो गीत रिकॉर्ड हुआ उसके साथ ही मेरा दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। तो एक दफा कल्याण जी भाई के घर में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ था, तो उसने बोला एक तीसरा गाना लिखना था भजन, तो उसने उसको बोला कि ये गाने तुम उसी से ही लिखवाओ जिसने ये दोनों गाने लिखे। तो बोले ये सामने बैठा हुआ है लड़का, इसी ने लिखा है वो गाना। तो बोले झूठ मत बोलो कल्याण जी भाई, आपका जोक मारने का स्टाइल है, तो ये क्या लिखेगा, ये तो पिक पॉकेट पॉकेट बावरा। तो उस फिल्म में शैलेंद्र और हर्षद के भी गीत थे, तो उन्होंने रविंदर भाई से पूछा कि रवीन भाई ये कल्याण जी करेक्ट बोल रहे हैं कि ये गाने इसी ने लिखे हैं? बोले हाँ बिल्कुल इसी लड़के ने लिखे हैं। तो बोले अगर ये गाने इसने लिखे हैं तो मैं इसका ही नाम दूंगा बैनर पर और लिखूंगा गुलशन बावरा, ये बावरा सा लगता है, उस हिसाब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया।
1: तो भाई वहीं से गुलशन कुमार मेहता बन गए गुलशन बावरा। सबसे पहले गुलशन बावरा ने सन 1959 में कल्याण जी वीरजी शाह के संगीत निर्देशन में अपना पहला गीत लिखा जिसे लता मंगेशकर ने गाया। वो गाना था ये।

सन 1961 में गुलशन बावरा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी ताकत से फिल्मों में गाने लिखने लगे। गुलशन बावरा ने सबसे ज्यादा काम आरडी बर्मन के साथ किया। पंचम के साथ उनकी दोस्ती बड़ी ही मशहूर रही है। गुलशन बावरा ने एक एल्बम भी जारी किया जिसमें वो पंचम से जुड़ी दोस्ती की और गाने बनने की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें गुलशन बावरा ने बताया था कि एक दिन बारिश का समय था और पंचम का उनके पास फोन आया। उन्होंने फोन पर गुलशन बावरा को एक धुन दी जो थी चाबू चाबू चिया चिया चाबू चाबू चिया। गुलशन बावरा ने कहा, ये क्या है, इस पर मैं क्या गाना लिखूं? तो पंचम ने कहा कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे घर पर आता हूं। दरवाजा खटका और पंचम गुलशन बावरा के घर में घुसते हुए गाना गाने लगे। मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग बनाना अंजू, गीत क्या है, धुन क्या है, तू समझ गया गुल्लू, अब जल्दी से लिख दे गाना गुल्लू। और वो गाना

तरह से बड़े ही सुंदर और मस्ती भरे माहौल में गुलशन बावरा और पंचम ने कुछ अनमोल गाने दिए। गुलशन बावरा को दो बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सन 1974 में जंजीर फिल्म के इस गाने

0: फिल्म उपकार के इस गाने के लिए।
1: ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती।
0: जरा हाथ की सफाई फिल्म का ये गाना सुन लीजिए और ये सोचिए कि गुलशन बावरा ने किस तरह के मजेदार और सुरीले गाने दिए फिल्म संसार।

बाबरा बहुत लंबे समय तक लिखते रहे, यहाँ तक कि अजय देवगन के अभिनय वाली हकीकत फिल्म का ये मशहूर गाना सुनिए जो उनके बाद के दौर का गाना है।

वैसे आपको बता दें कि गुलशन बावरा पर्दे पर भी नजर आए फिल्म जंजीर के इस गाने में जो शख्स हारमोनियम बजाता हुआ थिरक रहा है वो गुलशन बावरा ही है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्म संसार को बहुत ही मस्ती भरे और अनमोल गाने देने वाले गीतकार गुलशन बावरा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आप

0: और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।

0: एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। इश्क की दुनिया में मौसम कभी सिर्फ मौसम नहीं होता, कभी बारिश की सर्द उजली नन्ही सी बूंद अपने महबूब की याद बनकर पलकों पर ठहर जाती है। ऐसे में चांदनी भी शरारते कर उसके चेहरे पर नूर की रोशनी बन उसे बे इंतहा खूबसूरत बना देती है। उसकी खामोशी उसकी नज़रें बयां कर देती हैं और मैं चुपचाप उसकी नज़रों को पढ़ लिया करता। पहले दिल के करीब इतना कोई नहीं आया था, कहीं उससे मुझे इश्क तो नहीं हुआ है।
1: आपके हसीन रुख

मौसम इश्क का एहसास फिजाओं में बिखरी खुशबू संग और भी जज्बाती हो गया। उनकी एक झलक से पलकों ने झपकना ही छोड़ दिया था। उसकी कजरारी नजरों का हौले से कुछ कहना और दिल का मचलना, इन मदमस्त हवाओं की शोखियों ने भी तो कानों में धीमे धीमे से कुछ ऐसा कहा कि आसमान पर बिखरे बादल किसी ख्वाब की तरह नजर आने लगे। ऐसे में दिल हसीन जज्बातों को महसूस करने लगा।

उसने भी मुझे किस कदर सताया है। मेरे इशारों को समझकर भी ना समझने का ये अंदाज भी बड़ा कातिलाना है। न जाने किस नाम से तुमने मुझे पुकारा, इश्क प्यार मोहब्बत, कोई जुल्म तो नहीं, ये तो मोहब्बत की बारिश की रवानगी, जानने की नज़ाकत और दिल की धड़कनों का मधुर संगीत है। इसे तो ख्यालों में ख्वाबों में आने का बस एक बहाना चाहिए।

हर लफ्ज़ इश्क का कहता है, हर धुन दिल में उतर जाती है, तलाशती है उसे जिसमें चाहत की खुशबू है, बेहिसाब रंग है, एहसास है। कभी मुस्कुराती हैं आंखें तो कभी छलकती हैं, कभी दिल झूम कर गा उठता है, बरस उठता है इन बादलों की तरह। चंचल शोख अदाओं की मस्तियाँ लहरों की तरह मचलने को बेताब रहती हैं, किसी के खिलने किसी के हंसने से महक उठती है सांसों की लय भी, कहीं सितार बज उठते हैं तो कहीं चांदनी सी निखर उठती है।

रिमझिम फुहारों को बनाकर साज, ये दिल भी गुनगुनाने लगा है। तुम संग साथ हो तो बारिश में भी मज़ा आने लगा है। ये खिले गुलाबों से नर्म फूलों की तरह, तुम्हारी हंसी मुझे एहसास हो चला है कि तुम्हें तारीफ की चाहत है। तभी तो ये नज़ाकत भरे अंदाज, ये आंचल का लहराना, ये कदमों से लिपटी पायल के घुंघरुओं का बजाना, हर मंजर मोहब्बत का एक नया अफसाना बयां करने लगा है।

0: समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ।
1: तो अब छाए गीत के इस खूबसूरत शुरू की महफिल से मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत, एक प्यार भरे नमस्कार से विदा लेती हूँ, शुभ रात्रि।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: हुन पेश है प्रोग्राम सुरसांझ। प्रोग्राम सुरसांझ लेके हाजिर है तुहाडी रेडियो सखी हरप्रीत हांडा। मेरी प्यार भरी नमस्कार श्रोतियों, प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं सतिंदर सरताज के गाए गीत नाल।

0: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास।
1: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
0: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
1: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
0: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
1: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
0: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
2: श्रोतियों ब्रेक तो बाद लेके आए हैं सलीम दा गाया गीत।

0: एड्स HIV ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण

0: और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोते हुण सुनदे हां मदन मद्दी दा गाया गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।

0: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।